0: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
0: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
1: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
0: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
2: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, और चल रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेती किसानी पर चर्चा, और मैं हूं आपके साथ आपका आशीष। दोस्तों, धरती माँ की गोद में पसीना बहाकर जो अन्न उगाता है वही हमारे देश का असली हीरो है, हमारा किसान। हम बात करेंगे खेती से जुड़ी नई तकनीकों की, मौसम की, फसलों की देखभाल की, सरकारी योजनाओं की, और उन छोटी छोटी बातों की जो खेती को आसान और फायदेमंद बना सकती है। दोस्तों, समय बदल रहा है और खेती का तरीका भी। पहले जहां सिर्फ परंपरागत खेती होती थी, तो वहीं अब किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती, और मिट्टी परीक्षण जैसी चीजें किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। अगर किसान भाई समय समय पर मिट्टी की जांच करवाएं, तो उन्हें ये पता चलता है कि खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। इससे खाद का सही इस्तेमाल होता है और खर्च भी कम आता है। और जैविक खेती, आज बाजार में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, यानी अच्छी सेहत के साथ अच्छी कमाई भी। जहां तक बात खेती में बीज और बुआई की है, तो मुनाफे की फसल खुद उग जाएगी अगर आपका बीज सही तरीके से बोया गया है। कई बार जानकारी ना होने की वजह से किसान भाई उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते जो खासकर उनके लिए बनाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना है। अगर आपने अभी तक इन योजनाओं की जानकारी नहीं ली है, तो अपने नजदीकी कृषि विभाग या जन सेवा केंद्र पर जरूर संपर्क करें। दोस्तों, जानकारी ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है।
5: तो श्रोताओं, बात खेती किसानी की हो रही है, हम आपको तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, तो क्यों ना वो भी बात सुन ली जाए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने देश के अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया था कि कैसे इस देश का अन्नदाता इन योजनाओं से आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं।
6: अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। 4,00,000 करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए नई योजनाएं शुरू की है, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले, इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, ये KCC की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले इन सबको खूब लाभ उठा रहा। केसीसी से इस साल किसानों को 10,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की, आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओ बने हैं। हमारी सरकार ने खाद्य तेलों पाम ऑयल से जुड़ा मिशन भी शुरू किया है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहाँ के किसानों की आय भी बढ़ाएगा।
4: तो सुना आपने देश के प्रधानमंत्री का क्या कहना है। श्रोताओं, खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है, ये हम सभी जानते हैं। कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा, लेकिन सही तैयारी से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बीज हमेशा प्रमाणित खरीदें। फसल में रोग दिखाई दे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें और पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आजकल मौसम की जानकारी मोबाइल पर भी आसानी से मिल जाती है। और तो और, तकनीक का फायदा उठाइए और खेती को मजबूत बनाइए। दोस्तों, एक किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो पूरे देश की उम्मीद जगाता है, वो पूरे देश की उम्मीद उगाता है। इसीलिए कहता हूँ, अब समय है हमारे श्रोताओं की बात सुनने का। अब देखिए, बहुत सारे लोग हमें अलग अलग जगहों से प्रश्न करते हैं। रामपुर से स्वरूप जी कहते हैं, पानी की कमी की वजह से खेती मुश्किल हो रही है। जबकि हापुड़ से गीता देवी कहती हैं, महिलाएं भी अब खेती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ तक कि मुरादाबाद से किशन कहते हैं कि खेती तो बहुत अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों, खेती सिर्फ मेहनत नहीं, परिवार और समाज की ताकत भी है। आप हमें बता सकते हैं क्या आपके गाँव में खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे। किसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, फिर भी हर सुबह नई उम्मीद के साथ खेत में उतरता है। और यही हौसला भारत की असली ताकत है, क्योंकि वो अन्नदाता है। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों। धरती माँ हर पसीने की कीमत जरूर चुकाती है। जब खेत हरे भरे होते हैं, तभी तो देश खुशहाल होता है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपके साथ आपका आरजे आशीष और आप सुन रहे हैं खेती किसानी पर चर्चा। अपने खेतों से प्यार कीजिए, नई जानकारी अपनाइए और मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान। मिट्टी की खुशबू मेहनत की निशानी, देश की शान है अपनी किसानी। और इसी तरह की खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां पाने के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। और जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको अपने देश की खेती किसानी की परिपाटी और हरे भरे खेतों से जुड़े हुए इस गीत के साथ। नमस्कार।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
1: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
2: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
1: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके साथ मैं हूं आशीष, और
1: आज हम आपको एक जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। आप जिले के किसी भी गांव में रहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर गांव में लगभग स्वास्थ्य महकमे की तरफ से एक आरोग्य मंदिर स्थापित किया जाता है, और इस आरोग्य मंदिर में व्यवस्थाएं उनके इलाज से संबंधित, दवाओं से संबंधित मिलती है। और अगर यहां से किसी गंभीर बीमारी से आप ग्रसित हैं तो आपको एक मार्गदर्शन भी मिलता है कि आप अपना हायर सेंटर्स में कहां पर इलाज करवा सकते हैं। और जिले के अंदर अगर देखें या ब्लॉक के अंदर देखें, पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, ऐसी जगहों पर आप जा सकते हैं। लेकिन आरोग्य मंदिर कैसे काम करता है, यहां पर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स रहते हैं उनकी टीम में कौन कौन रहता है, किस किस दिन पर आरोग्य मंदिर खुलते हैं, यहां पर इलाज से संबंधित क्या प्रक्रिया होती है, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं सीएचओ राहुल कुमार वर्मा जी, जिनसे हम बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आरोग्य मंदिर कैसे काम करता है। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: कैसे काम करता है एक आरोग्य मंदिर?
2: सर, आरोग्य मंदिर जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षा योजना के तहत हर 5,000 की पॉपुलेशन पे खोले गए हैं, और यहाँ इसका खुलने का समय रहता है 9 बजे प्रातः से 4 बजे तक रहता है। इसमें जो है हम लोग 12 प्रकार की जांचें करते हैं, जिसमें से खून की जांच हो गई, और शुगर की, मलेरिया, डेंगू, और बेसिकली जो है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं और डायबिटीज के, इनकी हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं पूरी आबादी, पूरे क्षेत्र की, और जो भी हाइपरटेंशन के मरीज हमें प्राप्त होते हैं उनको हम हायर सेंटर के लिए रेफर करते हैं। वहाँ जो भी MBBS डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनको अपने फॉलोअप में लेके दोबारा से रीसेंट कर देते हैं, तो उनका हम लोग ट्रीटमेंट एक सुचारू रूप से चला पाते हैं, जिससे भविष्य में उनको कोई एक मेजर दिक्कत ना पैदा हो। और इसके अलावा में जो भी सामान्य कैंसर होते हैं, जैसे ओरल कैंसर है, या जो भी गर्भाशय का है, या ब्रेस्ट कैंसर है, उसको एनम जो है दीदी देखती है, बाकी हम भी ओरल कैंसर वगैरह की स्क्रीनिंग यहाँ पे की जाती है। और जो भी एक नॉर्मल सी बीमारियां हैं, फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, और हेडेक वगैरह, इनकी दवाइयों का भी हम लोग यहाँ प्रबंधन करते हैं,
1: ठीक है।
2: या और किशोरावस्था की जो भी एलिजिबल कपल्स है उनकी काउंसलिंग, और जो भी बच्चे हैं उनको मतलब हम लोग यहाँ योगा सेशन वगैरह इनका करवाते हैं।
1: तो एक आरोग्य मंदिर में इतनी तरह की आपको व्यवस्थाएं स्वास्थ्य से जुड़ी मिलती हैं, ये जो आपने बताया, कुल कितने लोग इसके लिए सुनिश्चित किए जाते हैं एक आरोग्य मंदिर में?
2: ये आरोग्य मंदिर का ये डिपेंड करता है कि कितना पॉपुलेशन वो कवर करता है। अच्छा। और उसके साथ में जो भी क्षेत्र के हर गांव की एक आशा मतलब चयनित होती है, जिसका लिमिट पॉपुलेशन 1,000 की आबादी पे चयन किया गया है, तो वो पॉपुलेशन मतलब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितनी आबादी को कवर करता है उस डिपेंड, उसके आधार पे हम वो टीम से होते हैं। जैसे कि 5 गांव अगर है तो 5 आशाएं होंगे, बाकी वहाँ पे कितनी एनम्स जो है पोस्टेड हैं। तो हमारे यहाँ जो है एक मैं हूँ राहुल कुमार वर्मा, और 2 एनम्स है पोस्टेड
1: जो नियमित यहाँ पर
2: जी रेगुलर आती है, और उनका जो भी क्षेत्र में काम होता है टीकाकरण सत्र का, या जो भी क्लिनिक डे वगैरह या अन्य मीटिंग्स वगैरह वो अटेंड करते हैं,
1: ठीक है। और आरोग्य मंदिर हफ्ते में कितने दिन तक खुलता है?
2: जी, सभी मतलब सोमवार से शनिवार इसका ओवरऑल टाइम जो है 9 बजे से 4 बजे तक हमेशा खुलता है।
1: अच्छा। और अगर मान लीजिए आरोग्य मंदिर बंद है संभवतः किसी दिन किसी कारण से, तो क्या इस बात की जानकारी आप अपने ग्रामीण स्तर पर लोगों तक पहले पहुंचाते हैं कि इस दिन बंद रहेगा?
2: बंद रहने का नहीं चांस होता है, अगर मैं किसी कारणवश छुट्टी पे हूँ तो वो यहाँ पे एनएम सिस्टर जो होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। अगर इनके साथ हम दोनों लोग नहीं है तो आशा बहन जी जो होती है वो यहाँ सूचित करते हैं, वो रहते हैं कि आज यहाँ नहीं मिलेंगे या कल मिलेंगे,
1: ठीक है। अच्छा, रविवार को बंद रहता है?
2: जी, सिर्फ रविवार को या जो भी गजेटेड हॉलीडेज है।
1: और अगर रविवार को किसी को कोई समस्या आती है स्वास्थ्य से जुड़ी, तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था फिर?
2: तो उसके लिए हमारे यहाँ नियरेस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ 24/7 सेवाएं जो है प्राप्त होती है, तो आदमी वहाँ कंसल्ट कर सकते
1: हैं, ठीक है। आरोग्य मंदिर में जो लोग आते हैं अपने इलाज के लिए, क्योंकि देखिए आरोग्य मंदिर सिर्फ जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं वही नहीं, और भी बहुत सारे आरोग्य मंदिर हैं जहाँ पर लोग अपने इलाज के लिए पहुँचते हैं, तो आप ऐसे में जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं उनसे क्या संदेश देते हुए बताना चाहेंगे कि आप आरोग्य मंदिर की सेवाएं लेने के लिए आप आगे आएं, ज्यादा से ज्यादा उनको ये इलाज संबंधित सेवाएं मिलें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी, मैं राहुल कुमार वर्मा, समस्त क्षेत्रवासी और मतलब जो भी जहाँ पे भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे चयनित प्रतिनिधि हैं या जो भी हमारे कैडर के लोग हैं, तो उनका सभी क्षेत्रवासी सहयोग करें। वो किसी कारण से आपके क्षेत्र में पहुंचते हैं, आपके दरवाजे पे पहुंचते हैं, तो आप उनका जो है सहयोग करें, ये अपेक्षा करता हूं। बहुत सारे मतलब हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो आपके सहयोग के बिना हम हर टास्क को पूरा कर पाना संभव नहीं है। बहुत सारे हैं चीजें, जैसे कि इस समय गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड का जो साप्ताहिक वो चल रहा है अभियान, तो उसमें हमें आपसे सहयोग की अपेक्षा रहती है, या जो भी है सभी मतलब जो भी प्लान सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं वो आपसे ही जुड़े होते हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग, और मेरा निवेदन है सभी से कि आप लोग सभी का सहयोग करें।
1: अच्छा, आयुष्मान कार्ड का जिक्र किया आपने, तो आयुष्मान कार्ड आरोग्य मंदिर पर अगर कोई व्यक्ति आता है जिसको बनवाना है, हम चाहेंगे थोड़ा इस बारे में भी जानकारी दें कि वो यहाँ पर आकर अपने कौन कौन से दस्तावेज लाए, या कैसे उसका आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में उसको हम डाल सकते।
2: आयुष्मान कार्ड बनाने का 3 स्टेप है, मींस जो है जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं 70 वर्ष से अधिक, ठीक है, उसके लिए सिर्फ उनका आधार कार्ड पे 70 वर्ष का आयु पूर्ण हो गया हो, तो और भी कोई मानक की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड पे उनका एज अगर 70 साल पूरा हो गया है तो उनका जो भी गोल्डन कार्ड बन जाएगा। उस दूसरे स्टेप में जो है किसी भी फैमिली में अगर 6 लोग हैं, राशन कार्ड पे 6 प्रतिनिधि हैं, तो उनका भी आयुष्मान।

0: अब इसमें एक सवाल है कि 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए तो क्या 6 से कम भी नहीं होने?
1: 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से अधिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी,
0: अच्छा,
1: 6 से कम
0: मिनिमम
1: तो, जी मिनिमम जो है संख्या 6 रखी गई है,
0: ठीक है,
1: तो उनका सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। बट ये कंडीशन इसमें ये रहती है कि 6 वो कार्ड जो है वो 5 लाख की मतलब लिमिटेशन होती है, तो वो 5 लाख की धनराशि जो है वो 6 लोगों पर डिपेंड।
0: अच्छा, मान लीजिए ऐसा हो कि परिवार में तो 6 सदस्य हैं
1: जी,
0: लेकिन 2 सदस्य कहीं बाहर रहते हैं
1: जी,
0: वो बहुत कम उनकी फ्रीक्वेंसी होती है अपने घर आने की, तो ऐसी कंडीशन में भी कोई दिक्कत है या बन जाएगा?
1: लगभग हर क्षेत्र में मतलब हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत हैं, तो मैं अपेक्षा करता हूँ अगर कोई बाहर फंसा हुआ है तो वो वहाँ अपने नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र पे संपर्क करके वो बनवा सकता है वो, या स्वतः ही जो है एक ऑप्शन आता है प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना करके, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके स्वतः वो अपना कार्ड जनरेट कर सकता है।
0: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि स्वतः ही कार्ड लोग अपना, अगर आप जरा से जागरूक हैं या जो जन सेवा केंद्र बने हैं वहां जाकर अगर आप करवा सकते हो, या आप थोड़ा सा भी अगर इंटरनेट फ्रेंडली हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से आप चला लेते हैं तो आप स्वतः ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि बता दें थोड़ा सा ये प्रक्रिया क्या रहती है।
1: एक प्ले स्टोर में जो है एक ऐप आता है, उसमें हम लोग डालेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कर, ठीक है, उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसमें 2 ऑप्शन आता है, बेनिफिशियरी एंड ऑपरेटर का मोड का 2 ऑप्शन आता है,
0: तो
1: कोई भी एक आम नागरिक है वो बेनिफिशियरी का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना कार्ड जनरेट कर सकता है। सिर्फ उसमें आधार कार्ड का ऑप्शन डालना है और कैप्चा मांगेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक थोड़ा सा भी आप लगभग सभी के यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल है अटैचमेंट में है, तो वो अपना कार्ड।
0: और ये प्रक्रिया लगभग कितने समय में पूरी हो जाती है?
1: मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है।
0: अच्छा,
1: बस जी। और थर्ड ऑप्शन में बताना भूल गया, जो भी आयुष्मान कार्ड के लिए वैध है, तो जो भी वरिष्ठता के क्रम में जिनका उम्र 60 साल है, जो भी वृद्ध है हमारे 60 साल की उम्र हो, राशन कार्ड पे वो 2 लोग हैं सिर्फ, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों की उम्र अगर 60 साल से ऊपर है तो वो पात्र हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। उम्र का थोड़ा सा वो डिफरेंस रहता है, अगर वो हस्बैंड 60 या 61 साल के हैं, या जो माता जी है उनके घर में वो 59 साल के हैं, तो वो पोर्टल उनको नहीं लेगा। दोनों की उम्र कंडीशन ये है कि दोनों लोगों की उम्र 60 से ज्यादा हो, वो राशन कार्ड में सिर्फ 2 ही अभ्यर्थी हों, उस जरिए से उनका आयुष्मान कार्ड जनरेट किया जाता
0: है। ऐसे ही आभा को लेकर भी हम देखते हैं कि लोग अभी बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, तो क्या आप भी अपने स्तर पर आभा को लेकर, आभा आईडी को लेकर भी जागरूक करते हैं?
1: जी बिल्कुल बनाते हैं। आभा मतलब ये है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट करके, तो जैसे हमारा एक बैंक में अकाउंट वगैरह रहता है, उसी प्रकार से ये स्वास्थ्य अकाउंट है। इन फ्यूचर इसका बहुत ही अहम रोल रहेगा स्वास्थ्य व्यवस्था में। आप कहीं भी जाएंगे तो आपका रिकॉर्ड उस आभा नंबर के जरिए संचय कर लिया जाएगा, तो भविष्य में बहुत सारे हमारे दस्तावेज मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं
0: जी।
1: तो उसको लेके कोई असुविधा नहीं होगी। आपने जहाँ कहीं भी 2025 में या उससे पूर्व में इलाज कराया होगा तो आसानी से हम लोग
0: पूरी मेडिकल हिस्ट्री
1: उसमें संचय रहेगी, तो फाइंड आउट कहीं भी आप देश के किसी भी कोने में जाके उनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ किस समय आपने इलाज कराया था।
0: अब तो ORS का भी जिक्र हो रहा है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए पोर्टल पर, और आप अपनी जो कंसल्टेंसी है किसी डॉक्टर से वो ऑनलाइन जाए, जो भीड़ में खड़ा होना पड़ता था कि हम जाएंगे ओपीडी में लाइन लगाएंगे, उससे निजात पाने के लिए इसके
1: अहम मतलब ये योजना है हमारे यहाँ की टेली कंसल्टेशन। आयुष्मान भारत का जो टेली कंसल्टेशन की सुविधा है, मीन्स जो भी गंभीर बीमारी वाले जो भी क्लाइंट आते हैं या व्यक्ति आते हैं, तो हम उनका ऑनलाइन एक परामर्श हम पोर्टल के माध्यम से, जो भी MBBS डॉक्टर या एक पोर्टल हब होता है आमने सामने वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंसिंग करके वो करा सकते हैं, जिससे कि एक हम जो हमें ट्रीटमेंट की सलाह उचित परामर्श मिल जाता है हायर सेंटर से।
0: श्रोतागण हैं सुनने वाले या सोशल मीडिया पेज फॉलो करके इसके जरिए जागरूक होने वाले, उनको आप स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी आपसे मेरा निवेदन है कि सभी लोग जो भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी आपके दरवाजे पे पहुंचे, या कोई भी आशा वर्कर या एनम सिस्टर वगैरह पहुंचते हैं, तो आप सभी का सहयोग करें, ये आपसे अपेक्षा करता हूं।
0: बहुत धन्यवाद राहुल जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए। तो हमने आपके पास इतनी अहम जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। तमाम गांवों में लोग अभी भी कहीं ना कहीं अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर बहुत परिचित नहीं है, या बहुत जागरूक नहीं है, या उनको बहुत ज्यादा जानकारी इस बात की नहीं है कि कितने तरह का इलाज या किस किस तरह की जांच सुविधा वहां पर मौजूद है। इस तमाम जानकारी राहुल कुमार वर्मा जी, जो कि बतौर CHO कार्यरत है, उन्होंने दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
3: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर ये शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
6: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
7: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में दो दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
8: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान

0: के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मानसून, समय से चार दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
7: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
6: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
8: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। यार यहाँ इतने मच्छर कहाँ से आ गए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे रीना। आज हम बात करेंगे, उफ अरे भाई, यहाँ प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है, माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन लगता है कि जो हमारे यहाँ फूलदान है उनमें मच्छरों ने अपना घर बना लिया है और पार्टी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आज के कार्यक्रम की अपने सेहत सही लाभ कई की कड़ी की, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका बरसात के साथ साथ एक लंबा रिश्ता है।
1: नमस्कार आरजी रीना, किसका रिश्ता किसके साथ लंबा है भाई? अब हमारा रिश्ता भी आपके साथ, माफ करिएगा, हमारे अपने सामुदायिक रेडियो के साथ बहुत लंबा हो गया है।
0: नमस्कार भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने, आपका और सेहतिया भैया का रिश्ता पूरे सामुदायिक के साथ तो था ही, लेकिन रेडियो के साथ भी काफी लंबा हो गया है और उम्मीद है कि ये रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। आप हमें ज्ञान देंगी और हम उसका लाभ उठाएंगे, लेकिन मैं बात कर रही थी इन मच्छरों की ओर। एक मिनट देखिए, यह व्हाट्सएप पर एक CMO की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आया है,
1: जरा जोर से पढ़िए।
0: यह है, देखो, साफ करे ढके डेंगू को हराने के उपाय करे, राष्ट्रीय डेंगू डे की बधाई। और आज तो 16 मई है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस है, वाह।
1: अरे मुझे तो पता था, इसलिए मैं इसी विषय पर बात करने की तैयारी से आई हूँ। आप पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पर उससे पहले मैं बता दूं कि फोन पर जो आपके पास और बहुत सारे लोगों के पास ये सूचना पहुंची होगी, इसका मतलब यही है कि हम सब मिलकर ही डेंगू की बीमारी को खत्म कर सकते हैं।
0: और राष्ट्रीय डेंगू दिवस इसलिए मनाए जाते हैं कि डेंगू बुखार की घटनाओं को कम करे, जो कि सही तरीके से इलाज न होने पर गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अच्छा, तो आज का मेरा आपसे सबसे सिंपल सवाल है, डेंगू क्या होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं?
1: ये तो वाकई में बहुत सिंपल है, अब तो बच्चा बच्चा जानता है। डेंगू एक मच्छर के काटने से फैलने वाली वायरल बीमारी है, इससे फैलता है। HTP का नाम मच्छर, ये मच्छर दिन में काटते हैं और बहुत तेजी से आदमी को बीमार कर देते हैं।
0: अरे दिन में काटता है, हम तो समझते थे मच्छर रात में ही एक्टिव होते हैं।
1: नहीं नहीं, ये वाले मच्छर दिन में ही ज्यादा काटते हैं, खासकर सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 3 से 5 बजे के बीच। ये छोटा काला सफेद धारीदार मच्छर होता है और जब ये डेंगू वायरस वाला मच्छर काटता है तब आदमी 5 से 6 दिन के अंदर बीमार पड़ जाता है।
0: तभी तो मैं परेशान थी, सर्दियों में बहुत मच्छर थे, अब ये मच्छर भागने के नाम ही नहीं ले रहे हैं और फिल्ट भी किया। तो डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं भाभी?
1: डेंगू में तेज बुखार अचानक चढ़ जाता है, सिर दर्द, आंखों के पीछे जलन, बदन में दर्द, भूख कम लगना, शरीर पर चटके, उल्टी या मिचली, ये सब हो सकता है। अगर बीमारी बढ़ जाए तो नाक मुंह से खून बहुत ज्यादा, उल्टी, बेचैनी, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत, ये गंभीर लक्षण होते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
0: अरे तो क्या इसका इलाज हमारे पास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर है क्या, जहाँ लोग जाकर इलाज करवा सके?
1: क्यों नहीं, हमारे हर नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर डेंगू का टेस्ट होता है और जिस हिसाब से लक्षण दिखते हैं उसी हिसाब से इलाज होता है। पर ये भी जान लो कि डेंगू का कोई खास इलाज नहीं होता।
0: भाभी, जब डेंगू की कोई खास दवा नहीं है तो क्या लोग क्या करें?
1: डेंगू का कोई पक्का इलाज नहीं होता, पर इसका इलाज लक्षणों के हिसाब से होता है, जैसे बुखार कम करना, खूब सारा पानी पीना और अगर जरूरत पड़े तो खून या प्लाज्मा देना। और ये सब हमारे पास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के समक्ष स्वास्थ्य कर्मी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एस्प्रिन या इब्रोफेन नहीं लेना चाहिए, सिर्फ पैरासिटामोल की गोली चलेगी।
0: समझ गए भाभी, अब बताइए ये मच्छर पैदा कहाँ होते हैं?
1: ये मच्छर साफ पानी में पनपता है, जैसे कूलर, बाल्टी, फूलदान, टंकी, फ्रिज के नीचे, प्लास्टिक की बोतलें, पुराने टायर, जहाँ भी साफ पानी जमा हो जाए। और सोचो, इसके अंडे बिना पानी के भी 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं।
0: भाभी मैं भी यही कह रही हूँ कि ऑफिस के सारे गुलदस्ते बाहर रख देने चाहिए, क्योंकि हर घर में खतरा छुपा

0: बैठा है एकदम, इसीलिए हफ्ते घर के सारे पानी वाले बर्तन धोएं, कूलर खाली करो, आसपास सफाई रखो। इसे कहते हैं वीकली ड्राई डे। सबसे सस्ता और साधारण उपाय है, पानी जमा ही मत होने दो।
1: भाभी और क्या क्या उपाय होते हैं मच्छर को रोकने के लिए?
0: और अगर रास्ता और किफायती उपाय चाहते हो तो ध्यान से सुनो और गांठ बांध लो। डेंगू से बचाव के लिए हमें कई स्तर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले व्यक्तिगत सुरक्षा के तहत पूरे बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करना चाहिए और बच्चों को दिन में भी मच्छरदानी में सुलाना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा, पर आपने कई स्तर की बात की है तो बाकी के स्तर?
0: अरे तो पूरी बात तो सुनो। जैविक उपयोगों में पानी की टंकी और तालाब में गबूसिया जैसी मछलियाँ डालनी चाहिए जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है। साथ ही बायोसाइड का उपयोग भी करना चाहिए। पर्यावरण की भाल में छत, पोल्टिको और सनसेट की नियमित सफाई, पानी को ढककर रखना और नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।
1: ठीक है, पर इसमें हमारे रेडियो या सामुदायिक का भी कोई योगदान हो सकता है क्या?
0: फिर वही बात, पूरी बात तो सुनो। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जैसे रेडियो, पोस्टर और लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। और हाँ, सामुदायिक की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसमें मोहल्ले के लोग मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करें और एक जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें।
1: भाभी आप तो डेंगू की डॉक्टर निकली। गांव में कई लोग सोचते हैं कि बस बुखार है, दो दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसे में लोगों को क्या कहेंगे?
0: मैं तो बस इतना ही कहूँगी, मत सोचिए, चल दीजिए। हर तेज बुखार डेंगू हो सकता है, इसीलिए तुरंत नजदीकी AAM PHC CHC या आशा दीदी से संपर्क करो। जल्दी पता लगेगा तो इलाज भी आसान होगा।
1: और अगर किसी को डेंगू हो जाए तो घर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: डेंगू के मरीज की देखभाल करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मरीज को अधिक मात्रा में पानी पिलाना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। बुखार और दर्द के लिए केवल पैरासीटामोल दें, एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी दवाइयों से पूरी तरह बचना चाहिए क्योंकि ये हालत को और बिगाड़ सकती है। इलाज हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करें, खुद से कोई दवा ना दें। साथ ही यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मरीज के आसपास मच्छर ना पनपे जिससे बीमारी अन्य लोगों में ना फैले।
1: भाभी आपने जैसा कि बताया था कि इस श्रृंखला के बाकी एपिसोड की पोषण हर बीमारी से लड़ने का पहला हथियार होता है, तो डेंगू से लड़ने के लिए क्या क्या खान पान होना चाहिए?
0: हाँ, अब लग रहा है कि तुम मेरी बातें ध्यान से सुनती हो और पल्ले से बांध लेती हो। डेंगू के मरीज के लिए खान पीन का ध्यान कैसे रखे जाए इस बात का कुछ साधारण उपाय हैं। डेंगू में शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसीलिए सही खाना और भरपूर पानी पीना बहुत जरूरी होता है। इससे शरीर की ताकत भी बनी रहती है और जल्दी ठीक होने की मदद मिलती है।
1: अरे भाभी तो बताइए, तो क्या करना होगा हमें अगर डेंगू से ग्रसित हो जाए कोई तो?
0: हाँ हाँ बता रही हूँ, तुम भी ऐसे उतावली हो रही हो जैसे छोटे बच्चे चॉकलेट के लिए उतावले होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी खूब पीना चाहिए क्योंकि डेंगू में पानी की कमी हो जाती है। नारियल पानी पीना भी बहुत फायदेमंद होता है, इससे शरीर के नमक इलेक्ट्रोलाइट की भरपाई होती है। ORS यानी नमक चीनी का घोल या बाजार नहीं है तो आंगनवाड़ी से मुफ्त मिलने वाला पैकेट का ORS देना चाहिए जिससे शरीर में पानी और ताकत बनी रहे।
1: अरे भाभी तो बताइए, तो खाने का भी तो बताइए, इतना इंतजार करना पड़ेगा?
0: अरे बहन आज क्या हो गया है तुम्हें, इतना उतावलापन? खैर तो चलो अब बात करते हैं खाने की। तो डेंगू में ऐसा खाना चाहिए जो पचाने में आसान हो, हाँ, और शरीर को ताकत दे, जैसे फल पपीता, अनार, संतरा। जैसे फल बहुत फायदेमंद होते हैं, इसमें विटामिन सी होता है जो प्लेटें बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। हरी सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सहजन के पत्ते, इनमें ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते हैं। दूध, अंडा, चिकन, मछली और पनीर, ये सब चीजें शरीर के अंदरूनी घाव भरने में मदद करती है। दलिया, खिचड़ी, खिचड़ी, मूंग की दाल जैसे चीजें जो पचाने में हल्की हो और ताकत भी दे।
1: तो इतना सब कुछ बता ही दिया है, तो ये भी बता दीजिए भाभी कि किस किस चीजों से बचना चाहिए।
0: तले भुने तेल मसाले वाले खाने से परहेज करना चाहिए, ये पेट को और कमजोर बना देता है। बाजार की मीठी चीजें और पैकेट वाले खाना नहीं खाना चाहिए। चाय, कॉफी या शराब जैसी चीजें बिल्कुल नहीं, ये शरीर को और सुखा देती है और बीमारी बढ़ सकती है।
1: हाँ हाँ बताइए बताइए, मैं तो आपसे जितनी भी ज्ञान लूँ ना उतना ही कम है, संकोच बिल्कुल भी नहीं करती मैं।
0: अच्छी बात है, फिर ये भी सुनती जाओ, पपीते के पत्ते का रस कुछ अस्पतालों का कहना है कि ये प्लेटें बढ़ाने में मददगार हो सकता है, लेकिन अभी और रिसर्च की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, इससे शरीर को ताकत मिलती रहती है और भूख भी बनी रहती है। और सबसे जरूरी है अच्छी नींद लो, पूरा आराम करो, तभी शरीर जल्दी ठीक हो पाएगा। पानी खूब पियो।
1: भाभी ये तो आप बहुत बढ़िया बता रही है, लेकिन एक बात और बताइए, डेंगू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कुछ डूज और डोज भी समझा दीजिए।
0: ये कुछ और जरूरी बातें भी ध्यान में रखो। डेंगू से बचाव के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद आवश्यक है। जिन बर्तनों में रोजाना पानी नहीं इस्तेमाल होता उन्हें हमेशा उल्टा करके रखना चाहिए ताकि पानी जमा ना हो। फूलदान, पौधों की तस्तरियां और फ्रिज के पीछे जमा पानी को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। अगर छत, आंगन या नालियों में पानी रुकता हो तो उसे तुरंत साफ करवाना चाहिए नालियों को खुला ना छोड़े, उन्हें ढक्कन से ढकें या मच्छरदानी जैसी चीजों का उपयोग करें। साथ ही मोहल्ले में साफ सफाई बनाए रखने के लिए अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करें, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वही कुछ बातों से बचना भी उतना ही जरूरी है। बरसात के बाद किसी भी बर्तन, गड्ढा या टायर में पानी जमा ना होने दें। बेकार पड़े कूलर या अन्य बर्तनों को हफ्ते तक बिना सफाई के ना छोड़ें। बुखार आने पर उसे हल्के में ना लें और इलाज में देर ना करें। अगर मच्छर दिखाई दे तो उन्हें नजरअंदाज ना करें, तुरंत उपाय करें। और सबसे जरूरी, सफाई को केवल घर तक सीमित नहीं रखना, घर के बाहर और आस पड़ोस की सफाई भी बराबर ध्यान दें।
1: वाह भाभी, आपने तो बहुत ही कमाल की बातें बताई, अब हर कोई ध्यान रखेगा क्या करना है और क्या नहीं। भाभी एक सवाल और, बिहार और यूपी में डेंगू के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना?
0: हाँ बहन, 2024 में बिहार में 10,157 केस थे और 16 मौत हुई थी। यूपी में 15,845 केस और 8 मौत हुई थी। ये बीमारी मजाक नहीं है, सबको मिलकर रोकना पड़ेगा।
1: आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। अब आखिर में डेंगू के खिलाफ एक संदेश दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
0: डेंगू से डरना नहीं, उससे लड़ना है। मच्छरों को पनपने मत दो, हर हफ्ते घर के कोने कोने में झांको और याद रखो, साफ गांव, स्वस्थ गांव।
1: बहुत बहुत धन्यवाद टीकन भाभी, आपने इतनी जरूरी बातें ऐसी अच्छे अंदाज में समझा दी। श्रोतागणों आप भी डेंगू से बचाव में अपना योगदान दें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, अब तक के लिए साफ आंगन की रखो पहरेदारी, डेंगू से मिले पूरी सुरक्षा की तैयारी।
2: FM मुरादाबाद से मैं हूँ आरजीना और आज हम आए हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ डेंगू से रिलेटेड उनके बारे में क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, तो आज हम आए हैं यानी कि एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करने के लिए। सर आपका नाम?
3: डॉक्टर अर्पित गोयल।
2: अर्पित गोयल, हाँ। सर तो ये बताइए कि डेंगू जैसे फीवर होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें डेंगू ही फीवर है?
3: डेंगू के लक्षण होते हैं बुखार होना, शरीर में दर्द होना, सर में दर्द रहना, शरीर में चकत्ते बढ़ जाना और उल्टी हो जाना, ये सब डेंगू के लक्षण होते हैं। वो हम थर्मामीटर के थ्रू पहले बुखार नापेंगे और फिर पता लगेगा कि बुखार कितना है, फिर इसका टेस्ट होता है। 2 से 7 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है कि जब हमारा बुखार और लक्षण रहते हैं। इसमें अधिकतर कोई ज़्यादा कोई दवा नहीं होती है, बुखार के लिए हमें नॉर्मल पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन के नाम से भी आती है जो दवा, वो देनी होती है बुखार कंट्रोल करने के लिए। खूब पानी पीना होता है, दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी पीना होता है और शरीर में दर्द के लिए दर्द की दवा दी जाती है। और इसको हम मेनली ये होता है मच्छर के काटने से, जो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है उसके काटने से होता है। तो इससे बचाव हम ऐसे कर सकते हैं कि हम घर में जो रेपेलेंट्स होते हैं, मॉस्किटो स्प्रे होते हैं, वो मार सकते हैं। और ये जो मच्छर है ये मोस्टली साफ पानी में पनपता है, तो हम जो जितना भी पानी इकट्ठा होता है हमारे घर में आसपास, वो पानी हम हटा सकते हैं, साफ सफाई रखें हम घर पे, और पेट्रोलियम जो होता है वो डाल के रखें, अगर कोई पानी का काफ़ी समय से हम साफ पानी अगर इकट्ठा हुआ हुआ है, यही सब हो। डेंगू का कोई ऐसा डेफिनेटिव कोई टीका भी कोई वो नहीं आई है वैक्सीनेशन, तो मोस्टली इसको हमें प्रिवेंट करना होता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है इसके ट्रीटमेंट।
2: अच्छा सर, क्या गंभीर डेंगू का कोई इलाज हो सकता है?
3: गंभीर डेंगू का भी इलाज होता है, वो हम टर्शरी केयर सेंटर पे हम देखते हैं उसमें क्या क्या पेशेंट को सिम्टम्स हैं, और इसमें मोस्टली प्लेटलेट काउंट हमारे काफ़ी गिर जाते हैं। अगर मरीज के प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम हो जाते हैं और उसको शरीर में कहीं से भी खून निकल रहा होता है तो हमें प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं मरीज को, या फिर 10,000 से कम होते हैं और शरीर में से कहीं से खून नहीं आ रहा था तब भी हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं मरीज को, वो मरीज की कंडीशन देख के और उस हिसाब से हमें पूरा इलाज देना होता है उसको।
2: जो हमारे लिसनर सभी हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि डेंगू से हमें कैसे बचना चाहिए?
3: डेंगू से बचाव के लिए हमें पहले तो घर में साफ सफाई और जो साफ पानी है उसको इकट्ठा होने से रोकना है। दूसरा, कभी भी बुखार जैसा लक्षण दिखता है तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, घबराना नहीं है, उसके लिए इलाज लेना है, खूब अधिक मात्रा में पानी पीना है, 3 से 4 लीटर हमें पानी पीना है दिन में, और अगर डेंगू आता भी है जांच में तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो जो तुम्हें दिक्कतें हैं उसका इलाज लेना है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 7 दिन होता है, 7 दिन के बाद मरीज ठीक हो जाता है और इससे कोई घबराने की दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है हमें, और इलाज लेना है और इलाज से ठीक हो जाएगा।
2: सर, मैंने बहुत से ऐसे मतलब आदमियों से मिली हूँ जिनको फीवर होता है और वो बोलते हैं कि मतलब इग्नोर मारते हैं इसको, कुछ नहीं होगा, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे?
3: इग्नोर नहीं मारना है हमेशा, कभी भी बुखार आता है पहले तो अगर शरीर टूट रहा है या ऐसा शरीर गर्म लग रहा है तो हमेशा आपको थर्मामीटर लेके या पास में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उधर जाके आपको पहले थर्मामीटर से बुखार नपाना है, उधर आपको दवा लेनी है, और अगर वहाँ पे जो NS1 एंटीजन टेस्ट होता है डेंगू का उसमें अगर डेंगू आता है तो भी घबराना नहीं है। अगर कहीं से खून आता है, कहीं शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं तो ज़रूर दोबारा से डॉक्टरों को आके दिखाना है और स्वास्थ्य की सेवा, प्राथमिक सेवा लेनी है उनसे, और घबराना नहीं है और हमें इलाज लेना है उसका सही तरीके से।
2: ओके, थैंक यू सो मच सर।
0: आइए हम सब मिलकर लेते हैं एक शपथ।
4: हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
4: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
4: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
7: क्या आप पुराने गर्दन, कमर, कूल्हा, कंधे के दर्द से परेशान हैं? तो संपर्क करें दर्द के विशेषज्ञ डॉक्टर निदा नसीम से। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद लेकर आया है क्रोनिक पेन रिलीफ कैंप 17 मई रविवार को। यहाँ मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा आधुनिक तकनीकी से इलाज, वो भी बिना सर्जरी के, जैसे अल्ट्रासाउंड, सी आर्म गाइडेड नर्व ब्लॉक, PRP थेरेपी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री और सभी जांचों पर 20% तक की छूट। समय याद रखिए, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। पता श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 9412504190।
8: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
9: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
8: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
9: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
8: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
9: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
5: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
6: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
7: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
6: पर पापा।
7: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
8: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
9: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
8: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
9: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
10: कॉल 7500153841।
11: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
12: हेलो जी, हेलो, सुबह के 9 चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। 89.6 FM आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आपने ट्यून इन कर लिया है। जी हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ, FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आप सुनते हैं आरजे आनंद को, जहाँ पर होती हैं बातें दिल से दिल तक। जी हाँ, चलिए आगे का सफर शुरू करते हैं दोस्तों।

वेलकम बैक है जी। सुप्रभात, शनिवार की सुबह है, बहुत खूबसूरत दिन है आज का और आज की तारीख बहुत ही प्यारी है। जी हाँ, आज 16 मई हो गई है। श्रोताओं, आप जो है अभी अगर नहीं जागे हैं तो जाग जाओ, क्योंकि मॉर्निंग हो गई है गुड। जी हाँ, सूर्य देवता भी निकल चुके हैं, एकदम नहा धो के प्रकट हो गए हैं फुल ऑफ एनर्जी के साथ। तो हमें भी अपनी एनर्जी को जो है हाई रखना है और सुपर डुपर डोज के साथ आगे बढ़ना है। वो जो सुपर डुपर वाली डोज है ना, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले एक बहुत

खूबसूरत बात कहते हैं, अच्छा समाज वही बनता है जहां लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी सोचते हैं। तो अगर आज की सुबह आप किसी ऐसे इंसान के लिए अच्छा सोच रहे हैं वाकई में जिसको आपकी ज़रूरत है, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है लेकिन एक जो टाइम है ना वो कभी वापस नहीं आता। तो टाइम अगर आपका अच्छा चल रहा है तो उस अच्छे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए जितना हो सकता है, किसी की मदद कीजिए और एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे विचार के साथ अपनी सुबह की शुरुआत कीजिए। आज के दिन की सकारात्मक ऊर्जाओं से भरी सुबह की आपको ये ब्यूटिफुल वाइब आपको दे रहा हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन से। जी हाँ साथियों, मेरा नाम आनंद है और 9:05 का समय 10 बजे तक रहूंगा आपके साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होंगी दिल से दिल तक। बड़े सारे प्यारे प्यारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़े हैं आज की इस खूबसूरत सुबह में। तो बिल्कुल हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन अभी जरा प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे खूबसूरत गीत के साथ और इस खूबसूरत से गीत के बाद जल्दी लौट कर आएंगे, फिर आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे आज के दिन के बारे में, आज के इस तारीख के बारे में, क्यों खास है, क्यों स्पेशल है, तमाम सारी बातचीत होगी मेरी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो बिंदास मॉर्निंग आनंद के साथ। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आप सुन रहे हैं आनंद को।

जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दिल तो आपका है ही और हम भी आप ही के हैं, और हमारा दिल तो हमेशा आपके लिए ही जो है धड़कता रहता है कि भैया कब अपने लिसनर्स से मिलेंगे, कब उनसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक जी वंस अगेन, सुप्रभात। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपने सामुदायिक रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6 MHz पे आप सुन रहे हैं। आज ही आनंद को सुबह से, ये जो सुबह प्यारी प्यारी सी जब होती है ना यार, तो बड़ी सारी उम्मीदें होती है हमारी, है ना, बहुत सारे सपने होते हैं हमारी आंखों में कि यार आज की सुबह तो हम ये चीज़ ज़रूर पूरी करेंगे। आज का हमारा ये मिशन है, आज का हमारा ये गोल है, तो जो भी आपने सोचा है आई होप वो पूरा हो, डेफिनेटली पूरा भी होगा। बस सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए और अच्छी सोच के साथ अपने पॉजिटिव कदमों को बाहर निकालिए मुस्कुराते हुए।

चलिए श्रोताओं बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में, आज के इतिहास के पन्नों के बारे में। क्यों खास है आज का ये दिन, 16 की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है इतिहास के पन्नों के लिए? तो दोस्तों आपको बताते चले, हर दिन का इतिहास बहुत ही खास होता है, हर दिन की तारीख अपने आप में बहुत ही स्पेशल होती है, वैसे ही आज की तारीख भी है। आपको बता दें, सन 2010 में आज ही के दिन 16 मई को सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी प्रतियोगिता में PTI पिछले विजेता भारत और दक्षिण कोरिया की भारी बारिश के कारण मैच ने जो है होस्ट होने पर संयुक्त जो है विजेता घोषित उनको किया गया था आज के दिन। और इसके अलावा आज का जो दिन है, आज की जो तारीख है, वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा चर्चित हो जाती है क्योंकि आज के दिन कुछ महान कलाकारों का भी हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं श्रोताओं। और सन 1999 में दीदेश का सन 2002 में ई में होने वाले शिखर सम्मेलन थिम्पू में कराए जाने की घोषणा की थी आज ही के दिन श्रोताओं। और ये जो थिम्पू में कराए जाने की घोषणा हुई थी वो आज ही के दिन हुई थी, यानी कि 16 मई को। बाकी आपको बताते चले, हर दिन की तारीख और हर दिन का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिलता है साथियों। आपको बता दें, 16 मई के दिन सन 1975 को सिक्किम आधारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना था आज ही के दिन श्रोताओं। और आपको बताते चले, सन 1996 को आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

तो श्रोताओं, ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, कुछ बेहतरीन जानकारियां जो हमने आपके साथ फटाफट से साझा कर दी आज की इस श्रृंखला में। आप आनंद के साथ सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आपको बता दें, मंगलेश डबराल जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था 1948 में, जो हिंदी के आधुनिक कविता से सम्मानीय और शीर्षक रचनाकारों में से एक रहे। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ। आपको बता दें, आज ही के दिन कर्मशी जो जेठा भाई हैं, उनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन सन 1902 में, जो भारतीय शिक्षाविद थे, इनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ श्रोताओं। और आपको बताते चले, गुलशेर खां शानी जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे, सन 1933 को इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन 16 मई को। बाकी श्रोताओं, आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। आई होप आपने पिछले घंटे हमारा जरूर प्रोग्राम सुना होगा, तो उसमें इसी विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की थी कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज के दिन क्यों मनाया जाता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी तमाम जानकारियाँ आपको मिली हैं। और ऐसी पूरे दिन आपको रंगारंग जानकारियाँ मिलती रहेंगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप बस कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। जैसे कि मैंने कहा, सिक्किम स्थापना दिवस भी आज सेलिब्रेट किया जाता है, तो सिक्किम का जो स्थापना दिवस है वो आज ही के दिन मनाया जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल आज के दिन से जुड़ी जानकारियाँ मैंने आपके साथ साझा करी इसी प्रोग्राम में, जहाँ बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आज की सुबह कुछ बोलना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। आप ज़रूर अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं 9837789686। ये मेरे स्टूडियो का वो नंबर है जिसके जरिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह, और अपने दिल की ताज़ा तरीन और बेहतरीन बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं ज़रा सी देर में लौट कर आऊँगा तो बात करूँगा आपके मैसेज की। जी हाँ, आप लोग जो ये संदेश प्यारे प्यारे पहुँचा रहे हैं, इनको भी हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। आनंद के साथ शनिवार की सुबह जुड़ चुके हैं आप बिंदास मॉर्निंग में, और यह है आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन ब्यूटीफुल रेडियो। जी हाँ, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आप आनंद के साथ हैं। एक और बेहतरीन गीत निकल गया है आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
8: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
9: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
8: पर पापा।
9: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
10: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

वेलकम बैक है जी। आपने ट्यून इन किया हुआ है एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद। जी हाँ श्रोताओं, इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। ये है आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो। दिस इज बिंदास मॉर्निंग।

0: क्या बात है जी, बिल्कुल। देखिए, चांद सिफारिश तो करता ही है, लेकिन हम जो है आपकी सिफारिश करने और आपसे ढेर सारी बातचीत करने चले आए हैं आपके रेडियो स्टेशन पे। जी हाँ दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर से बेहतरीन होंगे। शनिवार की सुबह आनंद के साथ हैं आप। ये है 16 मई की तारीख। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने तमाम सारे संदेश जो है सुबह सुबह हम तक पहुंचा दिए हैं, बहुत ही प्यारे मैसेज। हमारे पास ढेर सारे मैसेजेस की बौछार हो रही है। सबसे पहला मैसेज मेरे पास आया, हेलो नमस्कार आनंद जी, सुप्रभात। हमारी ओर से आपको आज के दिन की बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं। इनका नाम भी मंगल सिंह है। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है मेरे भाई आपका। अगला मैसेज हमारे पास आता है सहारनपुर से। इन्होंने लिखा है, आनंद जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड। और साथ में लिखते हैं, मैं सहारनपुर से बात कर रहा हूँ, जॉन रोजी एप्पल विलीज। ये प्यारे से श्रोता अपने पूरे परिवार के साथ जुड़ चुके हैं सुबह सुबह एफएम मुरादाबाद स्टेशन पर। बाकी हमारे पास मैसेज पहुँचा है यहाँ पर एक और बहुत ही खूबसूरत से हमारे प्रिय मित्र का, लेकिन उससे पहले जॉन रोजी पलविलीज पूरे परिवार के साथ जुड़े हैं। इन्होंने एक पिक्चर भी शेयर की है हमारे व्हाट्सएप पर। इसमें लिखा है, भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत लाइन। आगे लिखते हैं, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रसन्नता, यह जिसने हासिल कर ली उसका जीवन सार्थक हो गया। बहुत ही खूबसूरत साहब। एक संदेश पहुंचा है मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, मैं आपके गाने सुनता हूं, आप बहुत ही अच्छे गाने प्ले करते हैं, मेरा जो है मनपसंद का गाना भी आप बजाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। आपने नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन आपके नंबर की 4 डिजिट हैं 9924। अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपना संदेश तो पहुँचा रहे हैं, साथ ही साथ अपना नाम भी पहुँचाइएगा। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं आरजे आनंद जी? मैं कश्मीर से महराजुद्दीन बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए कश्मीर से भी मेरे प्यारे साथी जो है सुबह सुबह जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। अगला संदेश हमारे पास पहुंचता है रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से। हमारे लोकप्रिय श्रोता, बहुत ही पॉपुलर रेडियो लिस्नर है। जी हाँ, इनका नाम है बाबू अंसारी और ये लिखते हैं, कैसे हाल चाल है आनंद जी आपके? देखिए मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और लिखते हैं, इतने दिन से आप कहाँ गायब थे, सब खैरियत तो है ना? बिल्कुल जी, सब बहुत ही बढ़िया है, सब मज़े में है, सब खैरियत है। बस थोड़ा सा काम काज कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन हमारा स्टेशन लगातार आपको इंटरटेनमेंट देता है और ढेर सारी जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और संदेश पहुंचा है, जय श्री राम आनंद जी, आपके हालचाल कैसे हैं? मैं बबलू सैनी ग्राम कल्याणपुर पीतल नगरी से सुन रहा हूं आपको। काफी समय के बाद आज जुड़ा हूं आपके स्टेशन से। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं आप। जी हाँ कह सकते हैं। एक्चुअली ना दोस्तों क्या होता है, सुबह सुबह का रूटीन ऐसा वाला भाग दौड़ वाला बन जाता है ना, कि मतलब आप कितनी भी जल्दी कर लो लेकिन आपका लेट हो ही जाता है। सबको बहुत जल्दी मची होती है, और आजकल तो हमारे शहर में एक और बड़ी कॉमन समस्या होती जा रही है जाम की। स्पेशली काश नगर पर जब भी आप जाओ, वहाँ आपको सुबह शाम जाम मिलता ही मिलता है। तो मतलब चारों तरफ से जो गाड़ियाँ हो जाती है ना, इतना बीच में भसड़ मच जाती है, मैं आपको क्या बताऊँ। इनफैक्ट यही नहीं, अगर मैं बात करूँ खुशालपुर रोड की तरफ, वहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा रश देखने को मिलता है। स्टेशन रोड की तो बात ही मत करो भाई इस वक्त में, और गागन पे भी अच्छा खासा जाम मिलता है। लेकिन फिलहाल श्रोताओं, अगर आप कहीं ऐसे जाम में फंसे हैं तो ज़रूर हम तक ये अपडेट पहुँचा सकते हैं 9837896896 पर व्हाट्सएप करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी कुछ एड ब्रेक का टाइम है, उस छोटू से एड ब्रेक के बाद हम पुनः लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद। टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
5: जी हाँ,
6: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।

हमारा भी सलाम आपको पहुंच गया है जनाब। हाँ जी, कैसे हाल चाल है? मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल है? ट्यून इन किया है आपने एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। तमाम सारे श्रोता साथी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में, कर रहे हैं हमारे साथ ढेर सारी बातचीत। श्रोताओं, 9:40 का समय हो गया है। जो लोग निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पे, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। वीकेंड है, सैटरडे है, आई नो दैट, ये छुट्टी वाली फीलिंग सबको आ रही है, एंड ऑफकोर्स आनी भी चाहिए यार। आपको पता है ना, हमारी गवर्नमेंट ने 2 दिन वर्क फ्रॉम होम भी कर दिया है, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। जी हाँ, मतलब वीकेंड पे स्पेशली 2 दिन वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट करने की बात की गई है। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं भैया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम ने ऑफिस ही कर रहे हैं जी। बिल्कुल बात नहीं यार, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हर चीज़ का ना अपना एक अलग ही मज़ा होता है ना। आपको बताते चले अभी एक खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगता है कि आप तक शेयर करनी चाहिए। हमारे मुरादाबाद के जो विधायक जी हैं श्री रितेश गुप्ता जी, उनकी एक पिक्चर सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है उन्होंने कैप्शन भी दिया, और बहुत प्यारी फ़ोटो जो है, एक प्रेरणादायक फ़ोटो लग रही है। मुझे लगा कि इसके विषय में ज़रूर बात करनी चाहिए। जी हाँ श्रोताओं, अब इस वक्त वो जो है इंस्टाग्राम पे आप उनको देख सकते हैं, उन्होंने साइकिल चलाते हुए अपने कार्यालय की तरफ वो बढ़ रहे हैं साइकिल से। तो ये जो एक मैसेज कहीं ना कहीं गया है, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज, मुझे लगा आप तक पहुंचना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी आह्वान से प्रेरित होकर राष्ट्रहित में बचाव एवं संसाधनों के संचारण और संरक्षण की दिशा में उनका एक छोटा सा प्रयास, वो कहते हैं ना हमारा जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने लिखा है, आज हमारी जीवन शैली में किए गए छोटे छोटे जो छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव होते हैं ना, वो केवल वर्तमान को बेहतर बनाएंगे और आने वाली जो पीढ़ी उसको एक मैसेज भी देंगे। और खूबसूरत संदेश के साथ उन्होंने लिखा है, एक सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत जो इन्होंने कैप्शन दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। रितेश गुप्ता जी की कैप्शन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी पॉजिटिविटी आई, मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। और बहुत खूबसूरत लिखा है कि एक सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव भी रखेगा, और बिल्कुल सही बात है और बहुत ही खूबसूरत बात है। अगर आपके पास भी साइकिल है तो आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करें, और मुझे लगता है कि एटलीस्ट वीकेंड पे ही सही, बट आप साइकिलिंग ज़रूर करें, आपकी फिटनेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। और वैसे भी साइकिल चलाना तो बहुत ही अच्छा होता है यार, हमारा पुराना प्यार है साइकिल, साइकिल से ना हमें पुराना इश्क है ना, सही बात कहा ना मैंने। तमाम सारे श्रोता लगातार जो मैसेज कर रहे हैं उन सभी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपको बता दें, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से जो है खूबसूरत सजा हुआ सिक्किम राज्य आज उसकी स्थापना दिवस हम मनाते हैं।

बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और श्रोताओं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप भी जो है कोशिश करिए अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े से जो है आप भी जागरूक बने, बहुत ज़रूरी है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आई एम श्योर आप अपने जीवन में अपनी लाइफ को ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना पाएंगे। चलिए, शनिवार की सुबह बहुत ही खूबसूरत सा ये ब्यूटीफुल सा दिन है। और फिलहाल एक और पिक्चर बहुत वायरल हो रही है, रामपुर के बीजेपी जो विधायक हैं उन्होंने 4 ई रिक्शा खरीदी है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है आज की सुबह सोशल मीडिया पर। जी हाँ, आप वो शहर के कार्यक्रम और स्थानीय दौर के लिए इन्हीं ई रिक्शा का उपयोग करेंगे ऐसा कहा जा रहा है। और बहुत ही खूबसूरत मैसेज जगह जगह से हमारे पास पहुँच रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँच रहा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज एंड मीनिंगफुल थॉट के साथ जो है हम भी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। और आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में युवाओं को उद्यमी के रूप में विकसित कर रोजगार देने जो है बनने वाला है अपना उत्तर प्रदेश। इसमें कुछ योजनाएं तैयार की गई हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना की जो शुरुआत है वो शुरू हो गई है। अब इस योजना की वास्तविकता में उतरने के लिए बताया जा रहा है कि कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। योजना के तहत अब केवल उन युवाओं को ही लोन दिया जाएगा जो मतलब परियोजना रिपोर्ट या फिर DPR सौंपेंगे। और अभी तक जो है इस योजना के तहत तमाम लोगों को ऑनलाइन लोन भी मिला है, और मतलब लोन की जो सुविधा है इस योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रही, ताकि वो अपना खुद का जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकें। और मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन अगर इंसान मन में ठान ले, दिल से ठान ले, तो वो बिल्कुल हासिल कर सकता है। और श्रोताओं, हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जिसके माध्यम से हमें बहुत सारा लाभ मिलता है और हम अपने खुद की चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, चाहे हमारे घर की महिलाएं हैं या फिर हमारा आज का वो युवा जो कुछ करना चाहता है, जिसकी आंखों में कुछ चमक है, कुछ सपने हैं, उनके लिए ही बनी है ये योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर आप जानकारी सर्च करिएगा, और बाकी हमारे स्टेशन पर भी ये जानकारियाँ आपको मिलती रहती हैं। श्रोताओं, आपको पता है देश में जो है चाय का जलवा बिल्कुल अभी भी बरकरार है। 69% भारतीयों की पहली पसंद है चाय। जी हाँ श्रोताओं, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, लोग उठते ही 73% लोगों को जो है बैटी पसंद है। उसमें से 19% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल खुले में एकदम देसी चाय पीना पसंद करते हैं कि भैया बाहर आके, और 8% ऐसे लोग हैं जो ग्रीन टी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो 73% का आंकड़ा है ना, वो चाय का है। मतलब भारतीयों की फेवरेट तो है यार चाय, नो डाउट। चाय से हम सभी को बहुत मोहब्बत है, बहुत इश्क है। अच्छा, आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी, आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। 9837896896 स्टूडियो का नंबर है। वक्त हो गया है 9:45। और खूबसूरत सा बेहतरीन सा गीत मैं आपके रेडियो सेट पे निकाल रहा हूँ, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे आरजे आनंद को सुनती जाइए। और मैं तो बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई अच्छी सी खबर है जो मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो पूरे मुरादाबाद तक पहुँचे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मुझे मैसेज करना है 9837896896 पर। एक और बेहतरीन गीत इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे निकल गया है आपके रेडियो सेट पे, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत गाना है, उदित नारायण साहब ने गाया है, महालक्ष्मी नैयर की आवाज है। पैशन फिल्म का गीत निकाल दिया है मैंने आपके रेडियो सेट पे, इसे एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी होंगी इस गीत के बाद, जुड़े रहिए, सुनते रहिए।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965। बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखूना एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद, कॉल 9548088900।
3: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आपने ट्यून इन किया हुआ है FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। जुड़ चुके हैं आप आरजे आनंद के साथ। जी हाँ श्रोताओं, आपको बता दें वक्त हो गया है 9:54, और आज 16 मई की सुबह जो लोग अपने ऑफिसेज की तरफ भाग रहे हैं उनको ऑल द वे बेस्ट। यार मुझे पता है आपको बहुत जल्दी हो रही है, बट आप कानों में ईयरबड लगा के चल रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ जी। अच्छा आप गाड़ियों में भी सुन रहे हैं, चलिए बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपके सफर का साथी आनंद बन जाता है एवरी मॉर्निंग। फिलहाल तो अभी मेरी और आपकी मुलाकात कुछ टाइम से 9 बजे से हो रही है, तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मेरी आपकी मुलाकात अब एवरी मॉर्निंग 9 से 10 होगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। हाँ जी, श्रोताओं अक्सर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे पास ना OTP आता है। आप भी जानते हैं हमें अगर आजकल तो खैर बड़ा कंपलसरी हो गया, अगर आप अपना LPG सिलेंडर ले रहे हैं तो भी आपको OTP मांगा जाता है। कोई कुछ भी आप कोई बैंक से रिलेटेड काम करते हो तो OTP आता है। तो OTP बड़ा अहम रोल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना हमारे ज़िंदगी में आज के समय में। लेकिन मैं आज आपसे पूछने वाला हूँ OTP का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है ना। लास्ट टाइम हमने आपसे ATM का फुल फॉर्म पूछा था, हमने आपसे OK का फुल फॉर्म पूछा था। ये हमारे जो आसपास के सामुदायिक के लोग हैं ना, जो हमारी कम्युनिटी है आसपास की, मैं चाहता हूँ उनको भी एक्चुअली अगर नहीं पता है तो पता लगे। तो कितने लोग हैं जो OTP का फुल फॉर्म जानते हैं, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए। दिस इज माय क्वेश्चन आज की सुबह, लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय, आई वांट टू आस्क यू, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप मुझे प्लीज बताइए OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं कितने लोगों को पता है, व्हाट्सएप करिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है ये आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज इंटरनेशनल बॉयज डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। इसके अलावा आज जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। श्रोताओं, कुछ अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा करना चाहूंगा इस खास मौके पर। जी हाँ दोस्तों, आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूक करना है। अक्सर हमारे घर के आसपास पानी जमा हो जाता है और हम उसको अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही पानी मच्छरों को पनपने की वजह देता है और मच्छर वहीं पनपते हैं जहाँ पानी जमा होता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने घर के आसपास की नाली और अपने आसपास की घर का विशेष कर ख्याल रखें और साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि कहीं पानी ना जमा होने पाए और ये खतरनाक मच्छर बिल्कुल भी जन्म ना ले पाए। जी हाँ श्रोताओं, अक्सर हम अपने कूलर में हम देखते हैं अपने आसपास के जो हमारे प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें भी हम काफी पानी देते हैं, लेकिन वो पानी हम अक्सर बदलना भूल जाते हैं। कई बार हमारी छतों पर आजकल गर्मियां हैं तो हम पशु पक्षियों के लिए पानी रखते हैं और वो काफी समय तक रखा होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है ना, समय समय पर उस पानी को बदलना है और अगर कहीं पानी जमा है तो उसे वहां से हटाना है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बताते चले एक और खास चीज, पानी को बदलने के साथ साथ अपने आसपास की साफ सफाई का भी ख्याल रखना है। पूरी बाजू के कपड़े आपने पहनने हैं। अगर आपको लगता है कि तेज बुखार के सिम्टम्स किसी में नजर आ रहे हैं तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से जाके संपर्क करें। चलिए श्रोताओं, बस इतना ही कहना चाहते हैं, सफाइयां अपनाइए, डेंगू को भगाइए, सावधानी ही बचाव है। जी हाँ श्रोताओं, स्वस्थ समाज सुरक्षित समाज, बस यही कहना चाहता हूँ आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर। और ये जो छोटे छोटे हम दिवस मनाते हैं, कहीं ना कहीं ये वो जागरूकता का संदेश हमें देते हैं, मुझे और आपको, शायद आजकल की लाइफस्टाइल में भागदौड़ भरी जिंदगी में और आप भूलते जा रहे हैं। चलिए श्रोताओं, मुझे आपसे बातचीत करके तो बड़ा आनंद आया। कुछ और हेल्थ की बातें करेंगे इस प्रोग्राम में, आपको फिटनेस के भी कुछ टिप्स देंगे, तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। सुनते रहिए आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो। जी हाँ, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। आज की सुबह मैंने आपसे पूछा है ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने लोगों को पता है? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई हैव यू नो वेरी वेरी क्लियर। मुझे लगता है कि मुझे क्लियर कर देना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है और यही मेरा आज का कड़क क्वेश्चन है। सो प्लीज टेल इस 3789689696, दिस इज माई नंबर। इस नंबर पे आपने मेरे को व्हाट्सएप करना है। आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस। ठीक है, अब आप मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं देंगे और फटाक से मुझे मैसेज करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। अमेजिंग गाना निकाल रहा हूँ आज की सुबह इस स्टेशन पर। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।

0: छोड़ छाड़,
1: खूबसूरत गाना,
0: मेरे सपने सवार दे, तेनू दिल दा वास्ता। आज दिन
1: राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ बहुत ही बेहतरीन और मैजिकल वॉइस है भाई साहब इनकी, मुझे बहुत पसंद है। आई लव दिस ट्रैक और ये गाना तो बहुत ही प्यारा है। प्रीतम साहब का म्यूजिक है, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ों में अभी आप एंजॉय कर रहे थे, तो ये जो आवाज़ है ना बड़ी खूबसूरत है यार, सुकून देने वाली आवाज़। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक है। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे सुन रहे हैं आरजे आनंद को। प्रोग्राम चल रहा था बिंदास मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, मेरा जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपकी हेल्थ के लिए देना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ पम्पकिन के बारे में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कद्दू के बीज। अगर आप इनको खाते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ होते हैं। जी हाँ श्रोताओं, कद्दू के बीज छोटे होते हैं लेकिन पोषण से भरपूर होते हैं, शरीर को ताकत और एनर्जी देते हैं, प्रोटीन और मैग्नीशियम का एक अच्छा सूत्र माना जाता है, नींद में बेहतर जो है आपकी नींद को बेहतर मदद करते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है, आपकी नींद को बेहतर करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये पम्पकिन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कद्दू के बीज की, अगर साफ शब्दों में बोलूँ तो, ताकि लोग अच्छे से समझ पाएँ और कनेक्ट कर पाएँ। आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, दिल की सेहत के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं ये बीज, और बालों के लिए और स्किन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और बहुत ही फायदेमंद होते हैं। यस, पम्पकिन की बात कर रहा था मैं, पम्पकिन छोटे छोटे ग्रीन से कद्दू के बीज की बात कर रहा हूँ। जी हाँ श्रोताओं, आपने अक्सर इनको देखा होगा, कभी कभी हमें लगता है तो काम के नहीं है, लेकिन सच में बड़े, वो कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें अक्सर बड़े कमाल की और काम की होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ सनफ्लावर की, या सूरज के मुखी के जो बीज होते हैं, सूरजमुखी के बीज, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जी हाँ, अगर आप इनको खाने में इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बहुत आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसमें विटामिन ई जो है होता है, और विटामिन ई से भरपूर होते हैं, स्किन ग्लो और बालों के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, शरीर को हेल्दी फैट्स देते हैं, और साथ ही साथ दिल की सेहत में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, कमज़ोरी और थकान कम करने में भी आपको मदद करते हैं, और अगर आपको भूख लगती है तो भाई साहब उसमें जो है आप इनका इस्तेमाल कीजिए, आपको उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको भूख लग रही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इनको भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। हल्की भूख में हेल्दी स्नैक्स की तरह आप इनको, स्नैक्स की तरह इनको हल्के हल्के ले सकते हैं, छोटी छोटी यू नो, कुछ अच्छे से आप मिक्स करके, कुछ ऐसे नमकीन टाइप का हम अक्सर लेते हैं शाम को, वैसे करके भी आप खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इनको खाने का जो समय बताया जाता है वो सुबह में या शाम में एक मुट्ठी अगर आप खाते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप जैसे कोई नमकीन का मिक्सचर बना रहे हैं, कुछ ऐसा मिक्स करके आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, तो इसका टेस्ट भी डबल हो जाता है और बहुत ही बढ़िया होते हैं। जैसे आप सलाद, ओट्स, दही या स्मूद में आप इसको डाल सकते हैं, या भुने हुए अगर आप रख लेते हैं ये, तो भी आपके लिए बहुत स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो चलिए भाई साहब, मैंने जो है आपको ये चीज़ें बता दी हैं, बट आप कोई भी चीज़ लेने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपका कोई हेल्थ ट्रीटमेंट चल रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर लें, उसके बाद ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं, 10:10 का समय हो गया है हमारे स्टूडियो की घड़ी में। आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज़ बिंदास मॉर्निंग। और श्रोताओं, आज मैंने आपसे पूछा था बेहद ही सिंपल सवाल कि भैया ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने लोग इसके विषय में जानते हैं। ओटीपी अक्सर हमारे फ़ोन पर आता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वही मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने लोगों को मालूम है, यही जानने की कोशिश की है मैंने आज आप लोगों से इस प्रोग्राम के जरिए। अगर नहीं पता है तो हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकें, इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। और तमाम सारे श्रोता साथी लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। लेकिन अभी कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद मिलते हैं।
2: क्या आप पुराने गर्दन, कमर, कूल्हा, कंधे के दर्द से परेशान हैं? तो संपर्क करें दर्द के विशेषज्ञ डॉक्टर निदा नसीम से। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद लेकर आया है क्रोनिक पेन रिलीफ कैंप 17 मई रविवार को। यहाँ मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा आधुनिक तकनीकी से इलाज, वो भी बिना सर्जरी के, जैसे अल्ट्रासाउंड, सी आर्म गाइडेड नर्व ब्लॉक, PRP थेरेपी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री और सभी जाँचों पर 20% तक की छूट। समय याद रखिए, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। पता, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 9412504190।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद
5: कॉल 7500153841
6: जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
1: बहुत ही बढ़िया। देखिए ऐसे अच्छे अच्छे जानकारियां और इन्फॉर्मेशन के लिए आप ट्यून इन करते हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। और एक खास चीज जो मुझे लगता है आप तक डेफिनेटली पहुंचनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर हमारे काम की होती हैं बट अक्सर हम उन्हें अवॉइड कर देते हैं ना, इसीलिए हम बीच बीच में आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन वाली चीजें लेकर आते रहते हैं ताकि आपको पता चलता रहे, बीच बीच में जानकारियां मिलती रहे कि भैया हमारे आसपास क्या चीजें चल रही हैं उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। इसी बीच एक और एक छोटी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया हूं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, उसके बाद आपकी संदेश को शामिल करेंगे वेरी वेरी क्विकली क्योंकि मेरा जाने का भी समय हो रहा है। फिलहाल आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं आपको क्या लगता है ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, या आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। फिलहाल कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है आज की सुबह, यूपीआई फ्रॉड से आप कैसे बचें जरा ये सुनिए, उसके बाद लौटते हैं।
8: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज और कर रहा हूं आपसे बात। तो दोस्तों आज फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपको सतर्क कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन और UPI से जुड़ी सुरक्षा के बारे में, क्योंकि आज आपका मोबाइल सिर्फ फोन नहीं बल्कि आपका बैंक है। तो दोस्तों आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस लीक कर सकती है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। तो चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बात समझाता हूँ। रमेश हेलो, उधर से आवाज आती है, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुई है। क्या मेरा पैसा सुरक्षित है ना? हाँ सर, बस सुरक्षा के लिए आपके फोन पर जो OTP आएगा वह बता दीजिएगा। OTP आया है, मैं बता देता हूँ। अरे मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और पैसे कट गए हैं। और इस तरह रमेश UPI फ्रॉड का शिकार हो जाता है। आखिर UPI और मोबाइल फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों मोबाइल और UPI फ्रॉड आम तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, OTP या UPI पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए OTP और UPI पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई OTP या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और UPI को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों इन आसान नियमों को अपनाइए। OTP UPI पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं UPI और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, OTP को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो, पैसे कट गए हो, OTP शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो, तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हाँ जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और UPI सुरक्षा के लिए 5 सुनहरे नियम। OTP और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमेशा लॉक रखें। डर नहीं, समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI हंसी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन

0: है, सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी कभी गलत QR कोड से भी आपका नुकसान हो सकता है और शायद आपका पैसा जा सकता है। हम सभी को पता है पैसा कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर वो गलती से कोई आपसे ले ले बिना आपकी परमिशन से, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होता है। तो सतर्क रहें, सेफ रहें, ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी FM मुरादाबाद 89.6 MHz के माध्यम से। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आर्जराज। अभी के लिए लेता हूं यहां से अलविदा, तो स्टे सेफ।
1: बिल्कुल जी, आपने ये जानकारी सुनी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी थी ये जानकारी, और आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। चलिए श्रोताओं, अब आगे बढ़ेंगे, 10:18 हो गए और दूसरे प्रोग्राम की शुरुआत भी होने वाली है, तो मैं लौट कर आता हूँ, उसके बाद में इजाजत लूंगा। मैंने पूछा था OGP का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे श्रोताओं ने मुझे मैसेज किए हैं, मैं जल्दी से लौट कर आ रहा हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

बहुत ही खूबसूरत गाना, सुबह सुबह इतने अमेजिंग गाने सुनकर सुबह अच्छी हो जाती है जी। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो आप सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ। श्रोताओं आप सभी का दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। 10:23, नेक्स्ट प्रेजेंटर थोड़ी सी लेट, तब तक हमने मौका मारा है और हम आपके साथ कर रहे हैं ढेर सारी बातचीत। पूछा था मैंने ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और ताबड़तोड़ मैसेज किए हैं आप लोगों ने। थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस के लिए, मतलब आई एम वेरी थैंक्सफुल टू यू इतने अमेजिंग मैसेजेस करने के लिए पाजी, थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन आज सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया था, वो था भारती जी। भारती जी कंग्रेचुलेशन, आपने बिल्कुल एकदम सही जवाब पहुंचा दिया है और बहुत ही इमिडिएटली आपने मैसेज किया, उसके लिए शुक्रिया। सो भारती जी कंग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही लिखा है, वन टाइम पासवर्ड होता है ओटीपी का फुल फॉर्म, एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, ये तालियां। और ऐसे ही आप लोग जो ये सुंदर सुंदर जानकारियों से अपने आप को रूबरू कराते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं मेरा भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपके लिए हो जाता है कि भाई सुबह सुबह आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने, थोड़ी सी फ्रेशनेस आपको देनी है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें जो है और हमारे आसपास के लोगों को अवेयर करती हैं, है ना, उन्हें जागरूक बनाती हैं। चलिए श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच मेरे साथ आप जुड़े। मंसूरी कॉलोनी से मेरे साथ जुड़े थे अरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं, आपका शो बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने और इन्फॉर्मेशन भी आप दे रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। वैसे मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी तब्दीली हुई है प्रोग्राम्स में, अब आप मुझे सुनेंगे एवरी मॉर्निंग 9 से 10 इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। जी हाँ श्रोताओं, बाकी 8 से 9 के बीच आपके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम हमने अरेंज किए हैं जिनको आप सुनेंगे तो आपको तमाम जानकारियां मिलेंगी साथियों। बाकी गीत संगीत और मनोरंजन का ये जो खजाना है ये तो लेकर हम आते रहेंगे बीच बीच में आप सभी के रेडियो स्टेशन पर, मतलब रेडियो सेट्स पर, स्टेशन पे तो मैं हूँ यार। वन टाइम पासवर्ड होता है आनंद जी, सही वाला जवाब ओटीपी का है। ये मेरे पास मैसेज आया था हरियाणा से, यमुनानगर से हमारे साथ जुड़े थे यशपाल बिंदल जी। ठीक है, अरोड़ा चंदन नगर से सही जवाब पहुंचाते हैं बाबू अंसारी साहब। रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से सही जवाब पहुंचाते हैं। रामपुर से शमा जी जुड़ चुकी हैं, गुड मॉर्निंग, आपका भी इस्तकबाल है जी। हेलो गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हाल चाल है? हाय दिस इज मी शुभी, हाय शुभी गुड मॉर्निंग। गुलाम जिलानी पाशा भी जुड़े हैं प्रोग्राम में और हमारे साथ जुड़ गए हैं भूपी शर्मा नगर पंचायत पागवाड़ा से, लिखते हैं ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, क्या बात है। एक और मेरे पास सुंदर सा संदेश पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, रामपुर से ये मोहम्मद इशरत जी हमारे साथ जुड़े हैं आज की सुबह। जय श्री राम पहुंचाते हैं दुर्गेश सैनी जी, गुड मॉर्निंग जी आपको भी। और एक संदेश पहुंचा है, ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, क्या बात है जी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ये मेरे पास मैसेज किनका आया है, इनका नाम मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, शायद ये सोनू गौतम रामपुर से मैसेज कर रहे हैं, हाँ इन्होंने लिख दिया है नाम, थैंक यू। गौरव टीलर जी जुड़े हैं नवीन नगर से, लिखते हैं आनंद भाई वेरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा पेश कर रहे हैं, जानकारियां काफी अच्छी लग रही हैं आपके द्वारा, थैंक यू गौरव जी। सपना शर्मा नगर पंचायत पागवाड़ा से जुड़ी है हमारे साथ, इन्होंने भी सही जवाब दे दिया है आज की सुबह। हमारे साथ जुड़े हैं मोहन स्वरूप जी रामपुर से और एक मैसेज पहुंचा है, प्रसारक जी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। सुशीला देवी जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, गुड मॉर्निंग। नाइमुल अकरम जुड़े हैं मेरे साथ, लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद भाई, कैसे हाल चाल है? सुप्रभात गुड मॉर्निंग। श्रोताओं लेता हूँ इस प्रोग्राम से जाने की इजाजत, मेरी आपकी मुलाकात जरूर जरूर होगी, अगर मौका मिले तो हम दोबारा से आपसे गुफ्तगू करने चली आएंगे। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप ट्यूनिंग रखिए, आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो, जब आप सुनते हैं आनंद को तो कुछ ना कुछ हैपनिंग बातें होती हैं। लौट कर आते हैं थोड़ी देर में, आप कहीं मत जाइए, साथ में नूर भाई भी इंक्लूड कर दिया है मेरे को, मैसेज लगातार पहुंच रहे हैं। नाइमुल अकरम जी मुझे लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी, गुड मॉर्निंग सर आपको भी, और लिखते हैं हमारे साथ सखावत भाई और नूर भाई भी सुन रहे हैं, तो आपके जो भी भाईजान हैं उनको भी हमारा सलाम।
मैसेज मेरे पास पहुंच गया है. गुड मॉर्निंग, वन टाइम पासवर्ड है सही जवाब, थैंक यू सो मच. बिल्कुल, आप अपनी रिक्वेस्ट भी हम तक पहुंचा सकते हैं 9837896896. जानकारियों के साथ साथ कुछ ना कुछ गीत संगीत हो तो मजा आ जाता है, और वो गीत संगीत अगर हमारे श्रोताओं का हो तो फिर आनंद डबल हो जाता है. फिलहाल मैं लेता हूँ अनुमति आपसे इस प्रोग्राम से. 10:28 हो गए, ये छोटा सा गीत, इसके बाद कुछ एड ब्रेक, उसके बाद पता लगेगा मैं आ रहा हूँ या कोई और आ रहा है. सैटरडे की सुबह थी और अभी भी है यार. फिलहाल आनंद का साथ जो है वो अभी तो यहाँ से टटा बाय बाय हो रहा है, लेकिन स्टे ट्यून, बने रहिए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. हैप्पी वीकेंड, एंजॉय कीजिए सैटरडे की सुबह, अच्छे गाने. बाकी आज वट सावित्री पूजा है, सभी महिलाओं को बहुत बहुत हार्दिक मंगल शुभकामनाएं इस खूबसूरत से व्रत की. बहुत ही खूबसूरत पूजा का ये पर्व, आप सभी को इसकी हार्दिक मंगल शुभकामनाएं. और आज शनि जयंती भी है, उसकी भी बताइए. चलिए इन्हीं बातों के साथ बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सायोनारा.

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
2: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद। कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
5: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
6: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
5: अरे वाह।
6: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी
5: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
7: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
8: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
9: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
8: पर पापा।
9: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
10: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
11: एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं आप आनंद के साथ। जी हाँ, मैंने ये भी कहा था कि थोड़ी देर में लौट कर आएंगे तो पता चल जाएगा मैं आ रहा हूँ या कोई और आ रहा है, तो अभी कोई और का तो पता नहीं, बट मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। ओल्ड टाइम फेवरेट गाना है, फ्लैशबैक मिल जाएगा मुझे भी और आपको भी। जी हाँ श्रोताओं, आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। सुन रहे हैं आपके शहर का ब्यूटीफुल प्रोग्राम जिसका नाम है मॉर्निंग मसाला। इसमें मसाले भी होते हैं, आपकी पसंद के गाने भी होते हैं और तमाम सारी जानकारियां भी होती हैं। चलो इस गीत के बाद लौट कर आएंगे, ढेर सारी बात करेंगे।

ब्यूटिफुल ट्रैक, आई लव दिस सॉन्ग एंड आई एम श्योर आपको ये गाना एकदम फ्लैश बैक में ले गया होगा. बहुत ही बेहतरीन गाना था. अभी आप इंजॉय कर रहे थे आरजे आनंद के साथ. आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6. और जी हाँ दोस्तों, आज शनिवार का दिन है और तारीख की बात करें तो 16 मई हो गई है और बड़े सारे श्रोता साथ ही मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में. श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए. और अभी रीना तो नहीं आई है, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक हम आपके साथ हैं. 10:40 का समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में. और पिछले घंटे हमने आपसे बात करी बिंदास मॉर्निंग में. राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर हमने बात करी आपसे हेल्थ के ऊपर. हमने आपसे बात करी पिछले घंटे उन तमाम विषयों पर जो आज के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बनाते हैं. जी हाँ श्रोताओं, आज के दिन इंटरनेशनल लाइट डे सेलिब्रेट किया जाता है. विज्ञान, रोशनी और टेक्नोलॉजी का महत्व समझाने के लिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है. और गर्मी और हीट वेव अवेयरनेस, जी हाँ मतलब ये जो दिन है ना अपने आप में बहुत ही स्पेशल है. मतलब अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो भैया पानी पीते रहिए और पानी साथ लेकर ही निकलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.

चलिए श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं। आपकी जो संदेश हैं वो लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपसे बस यही कहना चाहते हैं दोस्तों, एक और बहुत ही खूबसूरत सा घंटा शुरू हो गया है। जी हाँ, 10:00, हालांकि 41 मिनट हो गए, आई एम वेरी लेट, बट कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा। आई होप आप लोगों का ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया होगा और अब लोग अपने अपने काम पर वापस बिल्कुल लौट चुके होंगे जी, अपने अपने कामों पर। बहुत जरूरी है लेकिन अपने काम पर अगर आज के दिन की शुरुआत आप कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो मुस्कुराहट के साथ जरा निकलिए और एकदम सकारात्मकता के साथ अपनी इस दिन की खूबसूरत और बेहतरीन सुबह की शुरुआत कीजिए। हालांकि सुबह हुए तो काफी टाइम हो गया है, बट कोई बात नहीं, जो लोग अभी अपने ऑफिस जा रहे हैं, जो लोग अभी अपने काम काज पर पहुंचे हैं, उनके लिए तो अभी सुबह है मेरे दोस्त। दोस्तों, प्यारी से सुबह शुरुआत हो चुकी है आपके मॉर्निंग मसाला प्रोग्राम की और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, जहां मस्ती होगी, बातें होंगी और ढेर सारी शानदार गीत भी होंगे और जानकारियां भी होंगी। तो आपकी मॉर्निंग को एनर्जेटिक बनाने के लिए कुछ और समय आपके साथ हूं। इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि छोटी छोटी सावधानियां ही बड़े खतरों से बचाती हैं। तो अगर आप रोड पर हैं, टू व्हीलर वाहन पर हैं, तो हेलमेट लगाकर ही निकलिए, और अगर आप फोर व्हीलर में हैं तो सीट बेल्ट लगाकर ही ड्राइव कीजिए, बाकी रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा के रखिए। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि आज हम नेशनल डेंगू डे मनाते हैं। हर साल 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को डेंगू जैसे बीमारी

0: प्रति जागरूक करना, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, कूलर का पानी बदलते रहें और साफ सफाई का विशेष कर ध्यान रखें। जी हाँ श्रोताओं, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ मैसेज आपके पहुंचे हैं वो जरूर शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो उन एड ब्रेक के बाद हम जल्दी से लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
4: बसंती इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने एंजॉय किया। प्रिया जी ने मेरे को संदेश पहुंचाया था, ये गायत्री नगर से, इन्होंने लिखा था गुड मॉर्निंग आनंद, आई लव दिस ट्रैक, प्लीज प्ले माय फेवरेट सॉन्ग, थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन आप सभी का वेलकम बैक है, आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM, जहां पर बातें होती है दिल से दिल तक। जी हाँ, यही वो स्टेशन ऑफ द नेशन है जहां आप जुड़ते हैं RJ आनंद के साथ और भी हमारे तमाम सारे आरजेस जो आपको बैक टू बैक एंटरटेनमेंट का डोज देते रहते हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन। चलिए श्रोताओं, आपको एक बार फिर से वक्त बता देते हैं, स्टूडियो की घड़ी में 10:52 हो रहे हैं।

एक बार एक और बात मैं चाह रहा हूँ कि एक और बार आपसे बता दूं, वो ये है कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, इसलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, धूप में निकलते वक्त सर जरूर ढककर रखें अपने और अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें श्रोताओं। और आपको बताते चले एक और खास चीज जो कि बहुत जरूरी है, वो ये है कि भैया देखिए जल्दी पहुंचने के चक्कर में ना ट्रैफिक रूल्स को मत तोड़िए, हेलमेट जरूर लगाइए, सीट बेल्ट अगर नहीं लगाइए तो उसको भी लगाइए, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल जाम भी देखने को मिल रहा है शहर के अंदर, थोड़ा काम चल रहा है रोड के ऊपर। अगर मैं बात करूँ प्रकाश नगर की मानसरोवर रूट की, तो इधर थोड़ा काम चल रहा है जिसकी वजह से हल्की फुल्की भसड़ लगी हुई होती है, बट कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल रखिए, आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखिए, बाकी जहां भी आप जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके साथ साझा करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपके संदेश की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरे पास मैसेज आ गया है और गौरव टेलर जी का, लिखते हैं हेलो गुड मॉर्निंग आनंद भाई, कैसे हाल चाल हैं आपके? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ एंड थैंक यू कह रहे हैं मुझे ये, और बहुत सारी बातें भी इन्होंने लिख दी हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद शारिक अली जी जुड़े हैं आजाद नगर करूला मुरादाबाद से, और इनके दोस्त हैं इरशाद हुसैन अंसारी जी, इनको एक गाना सुनना इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट डाली, इनको एक गाना सुनने की चाहत है, तो जरूर आपका डेफिनेटली हम ये जो भी आपने भेजा है रिक्वेस्ट इसको पूरा करेंगे थोड़ी देर में। चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार ना अपनी रूपरेखा बता देता हूँ प्रोग्राम की, ताकि लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाए। देखिए 9 से 10 आप आरजे आनंद को सुनेंगे, 10 से 12 ऑफकोर्स आपके लिए मंडे टू फ्राइडे आरजे खुशी होती है, एंड सैटरडे आरजे रीना की होती है ड्यूटी, बट आज शी इज वेरी बिजी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हम संभाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अभी आप मुझे 7 से 10 नहीं सुन पा रहे हो, और थोड़े टाइम के लिए जो है चीज़ें अभी कुछ काम चल रहा है बैकअप में, जिसकी वजह से मैं नहीं टाइम दे पा रहा हूँ, बट अभी आप मुझे 9 से 10 डेफिनेटली लाइव सुनेंगे। एवरी मॉर्निंग मंडे टू सैटरडे आई एम लाइव ऑन माई शो 9 AM to 10 AM, जी हाँ मॉर्निंग में आप मुझे सुन सकते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। 10 से 12 खुशी आपके साथ होगी, 12 से 3 आपके लिए बहुत सारे हेल्थ पे जो रंगारंग कार्यक्रम हमने बनाए हैं, जो हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स होते हैं स्पेशल डेज को लेकर, वो भी आप सुनेंगे। और 3 से 5 आपका पसंदीदा फेवरेट प्रोग्राम, जी हाँ फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश आरजे खुशी इसको लेकर आती है, और 5 से 7 आर्जेरीना का साथ बना रहेगा, और बाकी 7 से 10 भी कुछ ना कुछ तो यूनिक है। उसके लिए आपको क्या करना है, ट्यून इन करना है एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके संदेश को जो है शामिल कर लेते हैं। बहारुल हुसैन साहब का मैसेज आ गया है, बहारुल हुसैन सिद्दीकी साहब जुड़े हैं हमारे साथ, और ये पते खालसा से जुड़ चुके हैं मेरे साथ आज प्रोग्राम में, और ढेर सारे नाम इन्होंने शामिल कर दिए हैं, जैसे इन्होंने नाम शामिल किया है आलम सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, शफान सिद्दीकी, तमाम सारे नाम इन्होंने जो है पहुँचा दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नई बस्ती पते खालसा से मैसेज करते हैं, ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर ये खूबसूरत मैसेज हम तक देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, कश्मीर से महराजुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भी इन्होंने की है, जी ज़रूर हम आपके गीत को शामिल करेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए, आप तक पहुंचाएंगे आपकी सारी फरमाइशें और वो तमाम जानकारियां जो कहीं ना कहीं आपके डेली रूटीन में काम आती है श्रोताओं। एक और संदेश पहुंच गया है रेडियो मुरादाबाद के सामुदायिक रेडियो 89.6 को हम सुनते हैं, बहुत आनंद आता है, आदरणीय प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, रेडियो मुरादाबाद से प्रसारित हो रहे प्रोग्राम हम नियमित रूप से सुनते हैं, आपके कार्यक्रम हमें काफी पसंद आते हैं, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। लता मंगेशकर किशोर कुमार की खूबसूरत आवाजों में इस गीत की फरमाइश पहुंचाई है इन्होंने हमारे प्यारे से साथी ने, तो जरूर ये गीत मैं आप तक पहुंचाऊंगा, आप बस ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते ये आपके शहर का ये ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन, जी आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। शबाना आजमी इस गाने में नजर आई थी राजेश खन्ना के साथ, बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है ये, और बहुत ही कमाल का ये गीत है जो आपके रेडियो सेट पे निकल गया है आज की सुबह। ये महाराष्ट्र से बेलगांव से मेरे पास मैसेज आ रहा है आज की सुबह, सतीश वानखेड़े जी ने मुझे मैसेज किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। और अगला संदेश मेरे पास पहुंचा है दादा बाबू रोड गिरिडी झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, उसके अलावा इन्होंने लिखा है साइनमा नवाज हसन बाबू अहमद एंड साथ में बीबी चाहत सादिया, तमाम सारे नाम मुझे पहुंचाते हैं।
साइमा नवाज, बहुत प्यारे प्यारे नाम लिख के पहुंचा दिए, शुक्रिया जनाब। झारखंड में आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से डॉक्टर सैयद शारिक अली जी, इरशाद हुसैन अंसारी साहब भी जुड़ चुके हैं। गाने की रिक्वेस्ट इन्होंने कर दी है हमारे प्रोग्राम में, जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे। और मोहन स्वरूप भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ बिलासपुर रामपुर से, इन्होंने भी एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश पहुंचा दी। श्रोताओं, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? फटाफट उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम और अपना बेहतरीन गाना, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, आप चाहते हैं पूरे मुरादाबाद तक वो जानकारी पहुंचे, तो उसे भी टाइप करके भेज दीजिए हमारे नंबर पर 9837 8968 96।

0: असंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को बताया कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं, उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नारकोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ। राजेश कुमार, आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
4: क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया साहब।
3: आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे, अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
4: मैं क्या करूँ साहब?
3: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी, अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
4: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
3: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती, असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोता, और डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है। लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।
5: श्रोताओं, आई होप आपको ये जानकारियां, जो छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपके सामुदायिक रेडियो से प्रसारित हो रही हैं, जो लगातार ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, आई होप आपको ये जानकारियां जरूर पसंद आएंगी और आपके डेली रूटीन में कहीं ना कहीं आपके काम भी आएंगी। जी हाँ, एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। ट्यून इन किया है आपने आपके शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और एक और बेहतरीन गीत आपका इंतजार कर रहा है। मैंने निकाल दिया है अपने रेडियो सेट से आप सभी के लिए। ये जो मेरा स्टेशन है ना, बहुत खूबसूरत है और इस स्टेशन से जो भी गाने प्ले होते हैं, जो भी आपके रेडियो सेट्स पे आपको सुनाई देते हैं, उनकी वाइब ही अलग होती है। और ये गाने आपकी पसंद के हैं, कुछ गाने मेरी पसंद के हैं। प्रोग्राम है मॉर्निंग मसाला, जहां पर इन्फॉर्मेशन के मसाले लगा रहे हैं, आपके गानों के तड़के लगा रहे हैं, प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बना रहे हैं मैं और आप मिलकर।

श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करेंगे। हाँ जी, वेलकम बैक है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो आरजे आनंद के साथ। प्रोग्राम है बिंदास वाला, जिसका नाम है मॉर्निंग मसाला। क्या राइमिंग बनाई है मैंने। प्रोग्राम है बिंदास वाला, जिसका नाम है मॉर्निंग मसाला। हेलो जी, वेलकम बैक है। ट्यूनिंग कर लिया है आपने, बिल्कुल आपका पसंदीदा वाला स्टेशन, जहाँ बातें वही होती हैं जो आप चाहते हैं, दिल से दिल तक वाली। जी हाँ, जितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का खुली बाहों के साथ वेलकम बैक है जी। श्रोताओं, अगर आप भी हमारी सरकार ने जो अभी एक मुहिम छेड़ी है कि आप जितना हो सकता है कम अपने वाहनों का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, हालांकि आजकल आप देख भी रहे होंगे, चाहे दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, कहीं पे भी जितने भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो सब लोग मेट्रो जो छोटे छोटे ये मिनी मेट्रो, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, टू व्हीलर वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली इससे ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत ही बढ़िया। और अभी लेटेस्ट एक मैं रिसेंटली एक पोस्ट देख रहा था, बड़ी वायरल हो रही इंस्टाग्राम पे आज की सुबह। जी हाँ, हमारे जो पीएम साहब की अपील है, उसका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ रहा है। इवन एक नवविवाहित जोड़े ने, भैया जो है, कार छोड़ बाइक चुनी। अब आप सोचिए, मतलब जो नई नई शादियां हो रही है, वो लोग भी गाड़ी से नहीं भाई साहब, बाइक से जा रहे हैं। तो अपने आप में एक अलग ही ये जो अनोखी पहल चल रही है, और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। आप भी प्लीज़, अगर साइकिल वगैरह चला रहे हैं, अगर आप साइकिल से जा रहे हैं अपने ऑफिस, या आप साइकिल को जो है फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी एक सेल्फी मुझे ज़रूर भेजिएगा। 9837896896, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हैं अपनी फोटो। रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, वहाँ पर भी आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। डोंट फॉरगेट, अच्छी बातें और अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी लेकर आते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं और आपसे कुछ ख़ास बातें शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली अगर इस समय में आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। साथियों, आपके मैसेजेस तो मुझ तक पहुँच ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं सही इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचा रहा हूँ। मीठा नारियल पानी अगर आप पीते हैं, मतलब नारियल पानी मीठा भी लगता है यार, बढ़िया भी होता है, हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है, अगर आप इसको लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। नारियल पानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके लिए भी। और इस समय में अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, तो नारियल पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और जितना हो सकता है आप अपनी हेल्थ पर जो है थोड़ा फोकस करिए। तले भुने जो मसालेदार खाने, उनका सेवन कम करिए, बहुत ज़रूरी है। जितना हो सकता है हेल्दी खाना खाइए, बाहर के खाने को अवॉइड करिए, बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। और अभी ज़रूरी है मेरे लिए आपके मैसेजेस को शामिल करना अपने इस प्रोग्राम में। 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच आप सुनेंगे बेहद ही रोचक कार्यक्रम, जो आपको बहुत सारी जानकारियां भी देंगे और आपको ढेर सारी अवेयरनेस भी मिलेगी। तो डोंट फॉरगेट, मिस मत करिएगा। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियों से भरे प्रोग्राम हम आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अभी आपके जो संदेश हैं उनको फटाफट शामिल करेंगे। 11:17, शनिवार की सुबह है, आनंद के साथ हैं। सबीना खान रहमत नगर से मेरे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह। लिखती हैं, आनंद सर, आई होप आप अच्छे होंगे और थैंक यू वेरी मच, आप आज एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आप दोबारा हमारे लिए आए हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैम, मीन्स अलॉट, इट मीन्स अलॉट, थैंक यू सो मच, आपने इतनी प्यार से ये अप्रिशिएट किया, आई एम सो हैप्पी। और लिखती हैं सबीना खान जी, इनको एक गाने की रिक्वेस्ट इन्होंने की है। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। ऑफकोर्स ये गाना तो मैं डेफिनेटली प्ले करूंगा, बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए। बाकी श्रोताओं, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं, हमारे रेडियो के जरिए कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं तमाम लाखों लोगों तक, तो बिल्कुल आप पहुंचा सकते हैं। 9837896896, दिस इज माई नंबर। ये गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, लौट कर आते हैं तो कुछ जानकारी अभी आपको देंगे।

बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही मीनिंगफुल गाना, बहुत ही थॉटफुल गाना भी आपने एंजॉय किया है। साथियों वेलकम बैक है, आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आप सुन रहे हैं आनंद को। और बहुत ही खूबसूरत गीत ये हौसला कैसे झुके, बहुत ही प्यारी आवाज और बहुत ही प्यारा गीत। और मैं आपको सच बताऊं, इतना सुंदर गीत सुन के ना अंदर से एक मोटिवेशन बाहर आता है। बिल्कुल इस हौसले को बुलंद रखिए, अपने इरादों को मजबूत रखिए, जो भी आप करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ उस काम को करना शुरू कीजिए, अच्छी वाइब्स दीजिए, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, क्रॉस योर फिंगर एंड जितनी पॉजिटिविटी आप स्प्रेड कर सकते हैं प्लीज कीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय, आनंद के साथ हैं आप, प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट वाला जिसका नाम है मॉर्निंग मसाला। हमारे पास मैसेज पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? माय नेम इज दीपिका। हाय दीपिका, गुड मॉर्निंग। दीपिका मुझे लिखती है, आनंद जी इस वक्त मैं TMU की तरफ हूं और आपका प्रोग्राम सुन रही हूं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है और आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं, यू आर टॉकिंग अ वेरी अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच। मतलब ऐसे बच्चों से ऐसी बातें करूँगी तो बच्चा रो जाएगा यार, ऐसे इतनी तारीफें मत करो यार। एक तो वैसे भी अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है मैंने, सुबह में मतलब वैसे ही थोड़ा सा चला कि नहीं यार पहले बात करेंगे लिसनर्स से अपने, फिर कुछ खाएंगे, लेकिन अभी दोबारा भी शो करना पड़ेगा यार, ये नहीं सोचा मैंने, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब मतलब शो करने का मौका मिलता है तो यार इसको कौन छोड़ेगा, आप लोगों से गुफ्तगू करने का मौका यार मैं कभी नहीं गवाना चाहता, सच में। आई लव माय लिसनर यार। बहुत ही खूबसूरत गीत आपके रेडियो सेट पे निकाल दिया है मैंने, आप एंजॉय कीजिए। समीर कुमार की आवाज साथ में लता मंगेशकर जी दे रही है साथ, बहुत ही बेहतरीन गीत है ये, इरशाद हुसैन जी की रिक्वेस्ट पर आ रहा है। इस गाने के बाद कुछ ब्रेक, कुछ जानकारियां, उसके बाद वी कम बैक।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
9: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
9: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

बैक वंस अगेन। ट्यून इन किया है आपने आपके शहर के सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। 11:32 हो गए हैं श्रोताओं। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो देने का टाइम आ गया है। जी हाँ दोस्तों, और छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जो अक्सर कहीं ना कहीं आपके डेली रूटीन में आपको बहुत हेल्प करती हैं। तो बता दें आपको एक जानकारी, प्यार एकता और विश्वास का ही जीवन का सार है। शांति के साथ रहें और बनाए रखें शांति इस सुंदर संसार में। शांतिपूर्ण एक साथ जब हम रहते हैं पूरी शांति के साथ तो मजा आता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ जी, यस आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे सेलिब्रेट वाज अ वंडरफुल डे, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग डे। यस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आज सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 16 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है श्रोताओं। इसके अलावा अखंड सौभाग्य और प्रेम का पावन पर्व है आज। बहुत ही खूबसूरत पर्व सेलिब्रेट कर रही है हमारी महिलाएं। बट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी माताओं को, सभी जितनी भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस खूबसूरत फेस्टिवल की। बाकी श्रोताओं, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, आज 16 मई है और हर साल 16 मई को हम राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाते हैं। इस पर भी हमने ढेर सारी चर्चा करी है। आज के दिन पर भी हमने विशेष चर्चाएं करी थी। अगर आपने नहीं सुना हमारा प्रोग्राम तो आपने मिस कर दिया है मेरे दोस्त। चलिए कोई बात नहीं। बाकी आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी देर में। यानी कि इंटरनेशनल लाइट्स डे आज सेलिब्रेट किया जाता है 16 मई को, तो इस पर विस्तार से थोड़ी बातचीत करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। कुछ बेहतरीन गीत जो आप ही भेजे हैं, आप ही की रिक्वेस्ट के हैं, वो प्ले करने का टाइम हो गया है। तो सी स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप कुछ सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896। इस नंबर पे आप हमें अपना फेवरेट वाला गाना भेज सकते हैं, जो भी आपने सुनना है, जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर होना चाहिए प्ले, तो ऑफकोर्स वो प्ले होगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खूबसूरत गीत आपके रेडियो सेट पे निकाल रहा हूं मैं, और इस गीत के बाद लौट कर आएंगे तो आपसे और बातचीत करेंगे इस स्टेशन पर। बहुत ही प्यारा गीत है, इस गाने को सुनेंगे। और ये गाना हमारे पास आया है रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से, बाबू अंसारी साहब की रिक्वेस्ट पर। बहुत प्यारा गीत है, लता दी की आवाज। इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। दिलीप मंदिर फिल्म से 1963 में मूवी आई, बहुत ही कमाल का गीत, बहुत ही प्यारा गाना है। इसी नगमे को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप कोई नगमा सुनना चाहते हैं, कोई गीत सुनना चाहते हैं तो इमीडिएटली यू कैन व्हाट्सएप मी 9837896896। ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आनंद के साथ हैं आप, स्टे ट्यून्ड।

0: मजे में जी रही।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप एंजॉय कर रहे हैं आनंद की जो है भाई साहब वाइब आपको मिल रही है फुल ऑन इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। प्रोग्राम है बिंदास वाला जिसका नाम है मॉर्निंग मसाला। जी हाँ दोस्तों, एवरी सैटरडे रीना से मिलते हैं बट शी इज़ वेरी बिजी। बट कोई बात नहीं, आज हम दोबारा आपसे मुखातिब होने आ गए हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे थे कुछ खास अहम मुद्दों पर, हमने बात कर ली आज जैसे राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है उस पर हमने कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करी और मैंने आपको साथ ही साथ जिक्र किया था इस प्रोग्राम में, मैंने आपको बताया था दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है हम मनाते हैं। रोशनी सिर्फ हमारे घरों को ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को भी रोशन करती है, जैसे शिक्षा विज्ञान और सोच को भी उजाला देती है। जी हाँ श्रोताओं, सूरज की रोशनी से हमें ऊर्जा मिलती है, बिजली और लाइट ने जिंदगी आसान बनाई है, पढ़ाई, अस्पताल, मोबाइल, इंटरनेट सब कहीं ना कहीं लाइट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। श्रोताओं आज भी कई गांवों में अच्छी बिजली और रोशनी की जरूरत है, सिर्फ रोशनी बल्ब से नहीं बल्कि शिक्षा और जागरूकता से भी होनी चाहिए, है ना। तो अगर आप स्पॉटलाइट में हैं तो यू आर अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन, बट अच्छी लाइट अगर हमारे जीवन पर पड़ेगी ना, शिक्षा की, जागरूकता की, अच्छी हेल्थ की, अच्छे खान पान की, तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। आज का ये दिन बहुत सारी मीनिंगफुल थॉटफुल बातों के साथ इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिवस पे हम बात करें। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बिजली दिवस पे हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल लाइट ऑफ डे हम सेलिब्रेट करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और कहते हैं जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, और अगर उसके साथ ही साथ अच्छी रोशनी आपको मिल जाए, ज्ञान की रोशनी आपको मिल जाए तो आनंद आ जाता है। कहते हैं जहां उजाला होता है वहां उम्मीद भी होती है, तो बस अपने उजाले को जो है पकड़े रहिए और अपनी उम्मीद के दामन को भी मत छोड़िए। अंधेरे को कोसने से बेहतर एक दीपक जलाया जाए और उसको और ज्यादा उजालों में लेकर जाया जाए, ना। खूबसूरत सा ये दिन, बहुत सारी शुभकामनाएं आज के इस दिन की आप सभी को। श्रोताओं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हम मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट डे हर साल 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और जितना हो सकता है लाइट का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आपको लगता है आपके कमरों के अंदर आप वहां उपस्थित नहीं है तो वहां की बल्ब को कृपया करके बंद रखें, लाइट को बचाएं, क्योंकि बिजली बचाना बहुत जरूरी है। जो बिजली के छोटे छोटे उपकरण हम खुले छोड़ देते हैं ना, कई बार हमारी चीजें ऐसे ही चल रही होती हैं, प्लीज वो मत कीजिए, क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छी होंगी और आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छी होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और मेरे पास खूब सारे संदेश पहुंचे हैं आप लोगों के, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम आनंद भाई, गुड मॉर्निंग। दुर्गेश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह और ये मुझे कल्याणपुर से मैसेज करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई इतने खूबसूरत संदेश के लिए और ये प्यारा सा गीत भी पहुंचाते हैं आज की सुबह। एक संदेश पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, सुबह सुबह आपका प्रोग्राम सुन के तमाम जानकारियां हासिल होती हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाना रिक्वेस्ट जो है इस गाने की आई थी दुर्गेश जी की मेरे पास, निकाल दिया है मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर। और मेरे पास मैसेज पहुंचा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से, रवि कुमार, राहुल जी, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरप्रीत कौर एंड साथ में गुरशब्द सिंह जी का, साथ में राहुल जी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, इतने प्यारे मैसेजेस आप कर रहे हैं। गाइस बड़ी जोरों की भूख लगी, मैं कुछ खाकर आता हूँ, तब तक आप इस गीत का आनंद लेते रहिएगा, बेहतरीन ट्रैक आप ही की रिक्वेस्ट पर। एक और संदेश को शामिल करते हैं, संगीत ना होता तो ईश्वर का एहसास ना होता, इस दुनिया में सिर्फ दुखों का ही एहसास होता, हम रहे ना रहे संगीत सदा रहता है, संगीत ईश्वर की आराधना है। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना मेरे साथ जुड़े हैं लदावली से, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है, हेलो हेलो हाय। मोहम्मद रजा भोजपुर से मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, लिखते हैं दिल तोड़ने वाले को सजा क्यों नहीं मिलती, मोहब्बत में हर किसी को सफलता क्यों नहीं मिलती, और लोग कहते हैं इश्क एक बीमारी है तो मेडिकल स्टोर पर इसकी दवा क्यों नहीं मिलती। दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग, यू आर टू गुड एंड दिस इज वेरी वेरी अल्टीमेट, यार क्या सेंस ऑफ ह्यूमर यूज किया है तगड़ा वाला भाई यार आपने। एक टाइम था जब शादियों में गाना बड़ा चलता था, मैंने भी डांस किया इस गाने पे, आई एम नॉट ऋतिक रोशन यार सॉरी। चलो जी गाने सुनते हुए आगे बढ़ते, एक और संदेश पहुंच गया है, सॉन्ग जबरदस्त है, थैंक यू सो मच। रामपुर से अयूब अली जी जुड़ गए हमारे रेगुलर लिसनर, बहुत प्यारे गाने की फरमाइश की, थोड़ी देर में प्ले होगा, थैंक यू।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: जज रहा है हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
10: श्रोताओं चलिए अब जाने का वक्त हो गया है और ज्यादा इंतजार भी नहीं हो रहा है। भैया अब तो लग रहा है कि बिल्कुल अब ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, अब इजाजत नहीं दे रहा है इस समय मुझे और ज्यादा, और मेरा पीठ भी मुझे अब इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं ढेर सारी बातें करूं, लेकिन अभी करनी पड़ेगी। और बहुत सारे पॉडकास्ट लाइंड अप हैं आपके लिए, इंटरव्यूज जो हम करने वाले हैं, अभी आज भी बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, धीरे धीरे आपके रेडियो पर पहुंचते जाएंगे, बस आप स्टे ट्यून रहिए। फिलहाल मैं लेता हूं आपसे जाने की अनुमति, मेरी आपकी मुलाकात होगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। कब कहां? अरे भैया बस आप यहीं मिलेंगे यार, और कहां मिलेंगे भाजी है जी। चलो फिलहाल मैं छोड़ के जा रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अमेजिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। This is community radio station, ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा म्यूजिकल ब्रेक है, इससे पहले बस यही कहना चाहते हैं आप मस्त रहिए, झकास रहिए, और अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, बेहतरीन जानकारियों के लिए सुनते रहिए आपके शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। आनंद के साथ है आप। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके मैसेजेस के लिए, इट मीन्स अ लॉट यार, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इस स्टेशन पर, और हाँ कुछ जानकारियां आपके लिए, कुछ रोचक इन्फॉर्मेशन आने वाली है 12 से 3। स्टे कनेक्टेड रहिएगा, कानों को रेडियो पर रखिएगा और ध्यान को गाड़ी चला रहे तो सड़क पर रखिएगा, ठीक है। पाजी बाकी सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और अभी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि गाइज अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल हम आपको मिल जाएंगे। रेडियो वाला आनंद के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रेडियो वाला आनंद जब आप डालेंगे तो मैं आपको वहाँ बड़ी आसानी से दिख जाऊंगा, इस नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और ढेर सारी बातचीत आके आप वहाँ पर भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो बस टेंशन नहीं लेनी, पर ज़्यादा लोड नहीं लेनी है आपने मेरे से, है ना, मतलब सिर्फ इंजॉय करो और लाइफ को ऐसे ही सेलिब्रेट करो, पानी पीते रहो, गर्मी बहुत ज्यादा है, प्लीज ख्याल रखो अपना और अपने परिवार का। ये ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, ढीन चैक वाला नंबर, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए प्यारा सा रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, बातें होती हैं दिल से दिल तक। बाय बाय।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर्स
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7006002430।
9: बच्चों के सर्जन डॉक्टर

0: रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई। यार यहाँ इतने मच्छर कहाँ से आ गए? मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट RJ रीना। आज हम बात करेंगे, उफ अरे भाई, यहाँ प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है, माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन लगता है कि जो हमारे यहाँ फूलदान है उनमें मच्छरों ने अपना घर बना लिया है और पार्टी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आज के कार्यक्रम की अपने सेहत सही लाभ कई, लाभ कई की कड़ी की, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका बरसात के साथ साथ एक लंबा रिश्ता है।
8: नमस्कार आरजी रीना, किसका रिश्ता किसके साथ लंबा है? भाई अब हमारा रिश्ता भी आपके साथ, माफ करिएगा, हमारे अपने सामुदायिक रेडियो के साथ बहुत लंबा हो गया है।
7: नमस्कार भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने, आपका और सेहतिया भैया का रिश्ता पूरे सामुदायिक के साथ तो था ही, लेकिन रेडियो के साथ भी काफी लंबा हो गया है और उम्मीद है कि ये रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। आप हमें ज्ञान देंगी और हम उसका लाभ उठाएंगे, लेकिन मैं बात कर रही थी इन मच्छरों की और एक मिनट देखिए, यह व्हाट्सएप पर एक CMO की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आया है।
8: सर जोर से पढ़िए।
7: यह है, देखो, साफ करे ढके डेंगू को हराने के उपाय करे, राष्ट्रीय डेंगू डे की बधाई। और आज तो 16 मई है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। वाह,
8: अरे मुझे तो पता था, इसलिए मैं इसी विषय पर बात करने की तैयारी से आई हूँ। आप पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पर उससे पहले मैं बता दूं कि फोन पर जो आपके पास और बहुत सारे लोगों के पास ये सूचना पहुंची होगी, इसका मतलब यही है कि हम सब मिलकर ही डेंगू की बीमारी को खत्म कर सकते हैं।
7: और राष्ट्रीय डेंगू दिवस इसलिए मनाए जाते हैं कि डेंगू बुखार की घटनाओं को कम करे, जो कि सही तरीके से इलाज न होने पर गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अच्छा, तो आज का मेरा आपसे सबसे सिंपल सवाल है, डेंगू क्या होता है और हम इसे कैसे बच सकते हैं?
8: ये तो वाकई में बहुत सिंपल है, अब तो बच्चा बच्चा जानता है, डेंगू एक मच्छर के काटने से फैलने वाली वायरल बीमारी है, इससे फैलता है। HDP का नाम मच्छर, ये मच्छर दिन में काटते हैं और बहुत तेजी से आदमी को बीमार कर देते हैं।
7: अरे दिन में काटता है, हम तो समझते थे मच्छर रात में ही एक्टिव होते हैं।
8: नहीं नहीं, ये वाले मच्छर दिन में ही ज्यादा काटते हैं, खासकर सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 3 से 5 बजे के बीच। ये छोटा काला सफेद धारीदार मच्छर होता है और जब ये डेंगू वायरस वाला मच्छर काटता है तब आदमी 5 से 6 दिन के अंदर बीमार पड़ जाता है।
7: तभी तो मैं परेशान थी, सर्दियों में बहुत मच्छर थे, अब ये मच्छर भागने के नाम ही नहीं ले रहे हैं और फिल्ट भी किया। तो डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं भाभी?
8: डेंगू में तेज बुखार अचानक चढ़ जाता है, सिर दर्द, आंखों के पीछे जलन, बदन में दर्द, भूख कम लगना, शरीर पर चटके, उल्टी या मिचली, ये सब हो सकता है। अगर बीमारी बढ़ जाए तो नाक मुंह से खून बहुत ज्यादा, उल्टी, बेचैनी, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत दिक्कत, ये गंभीर लक्षण होते हैं, ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
7: अरे तो क्या इसका इलाज हमारे पास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर है क्या, जहां लोग जाकर इलाज करवा सके?
8: क्यों नहीं, हमारे हर नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर डेंगू का टेस्ट होता है और जिस हिसाब से लक्षण दिखते हैं उसी हिसाब से इलाज होता है। पर ये भी जान लो कि डेंगू का कोई खास इलाज नहीं होता।
7: भाभी, जब डेंगू की कोई खास दवा नहीं है तो क्या लोग क्या करें?
8: डेंगू का कोई पक्का इलाज नहीं होता, पर इसका इलाज लक्षणों के हिसाब से होता है, जैसे बुखार कम करना, खूब सारा पानी पीना और अगर जरूरत पड़े तो खून या प्लाज्म देना। और ये सब हमारे पास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के समक्ष स्वास्थ्य कर्मी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एस्प्रिन या इब्रुफेन नहीं लेना चाहिए, सिर्फ पैरासिटामोल की गोली चलेगी।
7: समझ गए भाभी, अब बताइए ये मच्छर पैदा कहाँ होते हैं?
8: ये मच्छर साफ पानी में पनपता है, जैसे कूलर, बाल्टी, फूलदान, टंकी, फ्रिज के नीचे, प्लास्टिक की बोतलें, पुराने टायर, जहाँ भी साफ पानी जमा हो जाए। और सोचो, इसके अंडे बिना पानी के भी एक साल तक जिंदा रह सकते हैं।
7: भाभी, मैं भी यही कह रही हूँ कि ऑफिस के सारे गुलदस्ते बाहर रख देने चाहिए, क्योंकि हर घर में खतरा छुपा बैठा है।
8: एकदम, इसीलिए हफ्ते घर के सारे पानी वाले बर्तन धोएं, कूलर खाली करो, आसपास सफाई रखो। इसे कहते हैं वीकली ड्राई डे। सबसे सस्ता और साधारण उपाय है, पानी जमा ही मत होने दो।
7: भाभी, और क्या क्या उपाय होते हैं मच्छर को रोकने के लिए?
8: और अगर रास्ता और किफायती उपाय चाहते हो तो ध्यान से सुनो और गांठ बांध लो। डेंगू से बचाव के लिए हमें कई स्तर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले व्यक्तिगत सुरक्षा के तहत पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करना चाहिए और बच्चों को दिन में भी मच्छरदानी में सुलाना चाहिए।
7: अच्छा अच्छा, पर आपने कई स्तर की बात की है, तो बाकी के स्तर?
8: अरे तो पूरी बात तो सुनो। जैविक उपयोगों में पानी की टंकी और तालाब में गबूसिया जैसी मछलियाँ डालनी चाहिए, जो मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं। साथ ही बायोसाइड का उपयोग भी करना चाहिए। पर्यावरण की देखभाल में छत, पोल्टिको और सनसेट की नियमित सफाई, पानी को ढककर रखना और नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।
7: ठीक है, पर इसमें हमारे रेडियो या सामुदायिक का भी कोई योगदान हो सकता है क्या?
8: फिर वही बात, पूरी बात तो सुनो। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से, जैसे रेडियो, पोस्टर और लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। और हाँ, सामुदायिक की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसमें मोहल्ले के लोग मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करें और एक जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें।
7: भाभी, आप तो डेंगू की डॉक्टर निकली। गांव में कई लोग सोचते हैं कि बस बुखार है, दो दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसे में लोगों को क्या कहेंगे?
8: मैं तो बस इतना ही कहूँगी, मत सोचिए, चल दीजिए। हर तेज बुखार डेंगू हो सकता है, इसीलिए तुरंत नजदीकी AAM, PHC, CHC या आशा दीदी से संपर्क करो। जल्दी पता लगेगा तो इलाज भी आसान होगा।
7: और अगर किसी को डेंगू हो जाए तो घर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए?
8: डेंगू के मरीज की देखभाल करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मरीज को अधिक मात्रा में पानी पिलाना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। बुखार और दर्द के लिए केवल पैरासिटामोल दें, एस्प्रिन और इब्यूप्रोफेन जैसी दवाइयों से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि ये हालत को और बिगाड़ सकती है। इलाज हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करें, खुद से कोई दवा ना दें। साथ ही ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि मरीज के आसपास मच्छर ना पनपे, जिससे बीमारी अन्य लोगों में ना फैले।
7: भाभी, आपने जैसा कि बताया था कि इस श्रृंखला के बाकी एपिसोड की पोषण हर बीमारी से लड़ने का पहला हथियार होता है, तो डेंगू से लड़ने के लिए क्या क्या खान पान होना चाहिए?
8: हाँ, अब लग रहा है कि तुम मेरी बातें ध्यान से सुनती हो और पल्ले से बांध लेती हो। डेंगू के मरीज के लिए खान पीन का ध्यान कैसे रखा जाए, इस बात का कुछ साधारण उपाय है। डेंगू में शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसीलिए सही खाना और भरपूर पानी पीना बहुत जरूरी होता है। इससे शरीर की ताकत भी बनी रहती है और जल्दी ठीक होने की मदद मिलती है।
7: अरे भाभी, तो बताइए तो क्या करना होगा हमें अगर डेंगू से ग्रसित हो जाए कोई तो?
8: हाँ हाँ, बता रही हूँ। तुम भी ऐसे उतावली हो रही हो जैसे छोटे बच्चे चॉकलेट के लिए उतावले होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि डेंगू में पानी की कमी हो जाती है। नारियल पानी पीना लेना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे शरीर के नमक इलेक्ट्रोलाइट की भरपाई होती है। ORS यानी नमक चीनी का घोल या बाजार नहीं है तो आंगनवाड़ी से मुफ्त मिलने वाला पैकेट का ORS देना चाहिए, जिससे शरीर में पानी और ताकत बनी रहे।
7: अरे भाभी तो बताइए, तो खाने का भी तो बताइए, इतना इंतजार करना पड़ेगा।
8: अरे बहन आज क्या हो गया है तुम्हें, इतना उतावलापन। खैर तो चलो अब बात करते हैं खाने की। तो डेंगू में ऐसे खाना चाहिए जो पचाने में आसान हो, हाँ, और शरीर को ताकत दे, जैसे फल पपीता अनार संतरा। जैसे फल बहुत फायदेमंद होते हैं, इसमें विटामिन सी होता है जो प्लेटी बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। हरी सब्जियां जैसे पालक बथुआ सहजन के पत्ते, इनमें ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते हैं। दूध अंडा चिकन मछली और पनीर, ये सब चीजें शरीर के अंदरूनी घाव भरने में मदद करती है। दलिया खिचड़ी मूंग की दाल जैसे चीजें जो पचाने में हल्की हो और ताकत भी दे।
7: तो इतना सब कुछ बता ही दिया है, तो ये भी बता दीजिए भाभी कि किस किस चीजों से बचना चाहिए।
8: तले भुने तेल मसाले वाले खाने से परहेज करना चाहिए, ये पेट को और कमजोर बना देता है। बाजार की मीठी चीजें और पैकेट वाले खाना नहीं खाना चाहिए। चाय कॉफी या शराब जैसी चीजें बिल्कुल नहीं, ये शरीर को और सुखा देती है और बीमारी बढ़ सकती है।
7: हाँ हाँ बताइए बताइए, मैं तो आपसे जितनी भी ज्ञान लूँ ना उतना ही कम है, संकोच बिल्कुल भी नहीं करती मैं।
8: अच्छी बात है, फिर ये भी सुनती जाओ, पपीते की पत्ती का रस, कुछ अस्पतालों का कहना है कि ये प्लेटें बढ़ाने में मददगार हो सकता है, लेकिन अभी और रिसर्च की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, इससे शरीर को ताकत मिलती रहती है और भूख भी बनी रहती है। और सबसे जरूरी है अच्छी नींद लो, पूरा आराम करो, तभी शरीर जल्दी ठीक हो पाएगा। पानी खूब पियो।
7: भाभी ये तो आप बहुत बढ़िया बता रही है, लेकिन एक बात और बताइए, डेंगू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कुछ डूज और डोज भी समझा दीजिए।
8: ये कुछ और जरूरी बातें भी ध्यान में रखो, डेंगू से बचाव के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद आवश्यक है। जिन बर्तनों में रोजाना पानी नहीं इस्तेमाल होता उन्हें हमेशा उल्टा करके रखना चाहिए ताकि पानी जमा ना हो। फूलदान पौधों की तस्तरियां और फ्रिज के पीछे जमा पानी को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। अगर छत आंगन या नालियों में पानी रुकता हो तो उसे तुरंत साफ करवाना चाहिए नालियों को खुला ना छोड़ें, उन्हें ढक्कन से ढकें या मच्छरदानी जैसी चीजों का उपयोग करें। साथ ही मोहल्ले में साफ सफाई बनाए रखने के लिए अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करें, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वही कुछ बातों से बचना भी उतना ही जरूरी है। बरसात के बाद किसी भी बर्तन गड्ढा या टायर में पानी जमा ना होने दें। बेकार पड़े कूलर या अन्य बर्तनों को हफ्ते तक बिना सफाई के ना छोड़ें। बुखार आने पर उसे हल्के में ना लें और इलाज में देर ना करें। अगर मच्छर दिखाई दे तो उन्हें नजरअंदाज ना करें, तुरंत उपाय करें। और सबसे जरूरी, सफाई को केवल घर तक सीमित नहीं रखना, घर के बाहर और आस पड़ोस की सफाई भी बराबर ध्यान दें।
7: वाह भाभी आपने तो बहुत ही कमाल की बातें बताई, अब हर कोई ध्यान रखेगा क्या करना है और क्या नहीं। भाभी एक सवाल और, बिहार और यूपी में डेंगू के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना?
8: हाँ बहन, 2024 में बिहार में 10,157 केस थे और 16 मौत हुई थी। यूपी में 15,845 केस और 8 मौत हुई थी। ये बीमारी मजाक नहीं है, सबको मिलकर रोकना पड़ेगा।
7: आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, अब आखिर में डेंगू के खिलाफ एक संदेश दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
8: डेंगू से डरना नहीं, उससे लड़ना है। मच्छरों को पनपने मत दो, हर हफ्ते घर के कोने कोने में झांको और याद रखो, साफ गांव स्वस्थ गांव।
7: बहुत बहुत धन्यवाद टीकन भाभी, आपने इतनी जरूरी बातें ऐसी अच्छे अंदाज में समझा दी। श्रोतागणों आप भी डेंगू से बचाव में अपना योगदान दें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, अब तक के लिए साफ आंगन की रखो पहरेदारी, डेंगू से मिले पूरी सुरक्षा की तैयारी।
6: FM मुरादाबाद से मैं हूँ RJ इना और आज हम आए हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ डेंगू से रिलेटेड उनके बारे में क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो आज हम आए हैं यानी कि एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करने के लिए। सर आपका नाम?
9: डॉक्टर अर्पित गोयल।
10: अर्पित गोयल सर, तो ये बताइए कि डेंगू जैसे फीवर होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें डेंगू ही फीवर है?
9: डेंगू के लक्षण होते हैं बुखार होना, शरीर में दर्द होना, सर में दर्द रहना, शरीर में चकत्ते पड़ जाना और उल्टी हो जाना, ये सब डेंगू के लक्षण होते हैं। वो हम थर्मामीटर के थ्रू पहले बुखार नापेंगे और फिर पता लगेगा कि बुखार कितना है, फिर इसका टेस्ट होता है। 2 से 7 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है कि जब हमारा बुखार और लक्षण रहते हैं। इसमें अधिकतर कोई ज़्यादा कोई दवा नहीं होती है बुखार के लिए, हमें नॉर्मल पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन के नाम से भी आती है जो दवा, वो देनी होती है बुखार कंट्रोल करने के लिए। खूब पानी पीना होता है, दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी पीना होता है, और शरीर में दर्द के लिए दर्द की दवा दी जाती है। और इसको हम मेनली ये होता है मच्छर के काटने से, जो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है उसके काटने से होता है। तो इससे बचाव हम ऐसे कर सकते हैं कि हम घर में जो रेपेलेंट्स होते हैं, मॉस्किटो स्प्रे होते हैं, वो मार सकते हैं। और ये जो मच्छर है मोस्टली साफ पानी में पनपता है, तो हम जो जितना भी पानी इकट्ठा होता है हमारे घर में आसपास, वो पानी हम हटा सकते हैं, साफ सफाई रखें हम घर पे, और पेट्रोलियम जो होता है वो डाल करके, अगर कोई पानी का काफ़ी समय से हम साफ पानी अगर इकट्ठा हुआ है, यही सब हो। डेंगू का कोई ऐसा डेफिनेटिव कोई टीका भी कोई वो नहीं आई है वैक्सीनेशन, तो मोस्टली इसको हमें प्रिवेंट करना होता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है इसके ट्रीटमेंट।
10: अच्छा सर, क्या गंभीर डेंगू का कोई इलाज हो सकता है?
9: गंभीर डेंगू का भी इलाज होता है, वो हम टर्शरी केयर सेंटर पे हम देखते हैं उसमें क्या क्या पेशेंट को सिम्टम्स हैं। और इसमें मोस्टली प्लेटलेट काउंट हमारे काफ़ी गिर जाते हैं, अगर मरीज के प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम हो जाते हैं और उसको शरीर में कहीं से भी खून निकल रहा होता है तो हमें प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं मरीज को, या फिर 10,000 से कम होते हैं और शरीर में से कहीं से खून नहीं आ रहा था तब भी हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं मरीज को, वो मरीज की कंडीशन देख के और उस हिसाब से हमें पूरा इलाज देना होता है।
10: जो हमारे लिसनर सभी हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि डेंगू से हमें कैसे बचना चाहिए?
9: डेंगू से बचाव के लिए हमें पहले तो घर में साफ सफाई और जो साफ पानी है उसको इकट्ठा होने से रोकना है। दूसरा, कभी भी बुखार जैसा लक्षण दिखता है तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, घबराना नहीं है, उसके लिए इलाज लेना है, खूब अधिक मात्रा में पानी पीना है, 3 से 4 लीटर हमें पानी पीना है दिन में। और अगर डेंगू आता भी है जांच में तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो जो तुम्हें दिक्कतें हैं उसका इलाज लेना है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 7 दिन होता है, 7 दिन के बाद मरीज ठीक हो जाता है और इससे कोई घबराने की दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है हमें और इलाज लेना है और इलाज से ठीक हो जाता है।
10: सर, मैंने बहुत से ऐसे मतलब आदमियों से मिली हूँ जिनको फीवर होता है और वो बोलते हैं कि मतलब इग्नोर मारते इसको, कुछ नहीं हो।

0: अगर वहाँ पे जो NS1 एंटीजन टेस्ट होता है डेंगू का, उसमें अगर डेंगू आता है तो भी घबराना नहीं है। अगर कहीं से खून आता है, कहीं शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, तो जरूर दोबारा से डॉक्टरों को आके दिखाना है और स्वास्थ्य की सेवा, प्राथमिक सेवा लेनी है उनसे, और घबराना नहीं है और हमें इलाज लेना है उसका सही तरीके से।
1: ओके, थैंक यू सो मच सर।
2: आइए हम सब मिलकर लेते हैं एक शपथ।
3: हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
4: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
4: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखून एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद। कॉल 9548088900।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: यू आर लिसनिंग FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़।
7: कमिटेड टू कम्युनिटी।

0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, शक्ति की साधना का यह पावन पर्व हमें नारी के अद्भुत स्वरूपों से परिचित कराता है। नवरात्रि के इस तृतीय दिवस पर पूजन करते हैं माँ चंद्रघंटा की, जो वीरता, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें सिखाता है कि जब नारी सशक्त होती है तो वह हर चुनौती का सामना डटकर कर सकती है, और आज का उत्तर प्रदेश इसी सशक्त नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण बन चुका है। पिछले 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास और सुशासन की एक नई मिसाल कायम की है, जहां महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आज प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व, हर जगह उनकी भागीदारी, उनकी ताकत, उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। योजनाओं और प्रयासों के माध्यम से एक ऐसा माहौल तैयार हुआ है जहां हर बेटी खुद को सक्षम और सशक्त महसूस कर रही है। तो आइए माँ चंद्रघंटा के साहस और शक्ति से प्रेरणा लेकर हम सभी मिलकर नारी सम्मान और सशक्तिकरण के इस संकल्प को और मजबूत करें।
1: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नई

0: दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, ये दास्तान है हौसले की, मेहनत की और सरकार के सही सहयोग से बदली हुई किस्मत की। आज हम आपको लेकर चलेंगे आगरा के एक छोटे से गांव जर्रार में, जहां एक साधारण महिला ने मोती की माला से 250 महिलाओं की जिंदगी में उम्मीद की चमक को लाया है। सोचिए, एक महिला सिर्फ 10वीं पास, घर परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त, लेकिन उनके दिल में एक सपना था कुछ करने का, कुछ बनने का, और उनका यही सपना आज बन गया है एक मिसाल।
1: पहले मेरा जीवन बिल्कुल साधारण था, सुबह शाम तक घर का काम और बच्चों की देखभाल, बस यही करते करते दिन कब निकल जाता था।
0: हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है हमारे गांव की, जहाँ प्रतिभा तो होती है लेकिन अवसर नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को मंच दिया है, जिससे वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। रुचि की जिंदगी में तब बदलाव आया जब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, कृष्णा स्वयं सहायता समूह शुरुआत। यह सिर्फ एक समूह नहीं था, यह थी रुचि के आत्मनिर्भर बनने की पहली सीढ़ी।
1: जब हमने समूह बनाया तब हमें खुद पर विश्वास ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम सीखते गए और आगे बढ़ते गए।
0: दोस्तों, शुरुआत आसान नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की, और यही पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निभाया अपना कर्तव्य, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF और कैश क्रेडिट लोन CCL के माध्यम से रुचि दीदी को मिला 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण, और यही वो मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ ली।
1: जब हमें 3 लाख रुपए का लोन मिला तो लगा कि अब हम समय कुछ कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा था।
0: अब सवाल था क्या किया जाए, और यही से शुरू हुआ एक अनोखा सफर, मोती माला का व्यवसाय। एक ऐसा काम जो घर बैठ कर भी किया जा सकता है, जिसमें लागत कम है और मेहनत का फल ज्यादा। रुचि देवी ने न सिर्फ खुद यह काम शुरू किया, बल्कि अब 10 गांव पंचायतों की 250 महिलाओं को भी जोड़ लिया। सोचिए दोस्तों, एक महिला

0: और उसके साथ 250 सपने।
1: मैं चाहती थी कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे गांव की बाकी महिलाएं भी आगे बढ़े। इसीलिए मैंने उन्हें सिखाया, जोड़ा और साथ लेकर चली।
0: आज स्थिति यह है कि सभी महिलाएं घर के काम के साथ साथ माला बनाकर हर महीने 10 से 15 हजार रुपए कमा रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। और रुचि देवी वो खुद हर महीने 20 हजार रुपए की आय कर रही हैं। यानी गांव की एक सीधी साधी महिला का सपना अब बन चुका है एक मजबूत आर्थिक मॉडल। दोस्तों यही है उत्तर प्रदेश की लखपति दीदी योजना का असली प्रभाव। यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं देती, यह आत्मविश्वास देती है, पहचान देती है और सम्मान भी देती है।
1: आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे साथ काम करने वाली बहनें भी अपने परिवार का सहारा बन रही हैं। पहले जो लोग हमें कम समझते थे आज वही हमें सम्मान देते हैं।
0: क्या आपने महसूस किया दोस्तों, यह सिर्फ कमाई की बात नहीं है बल्कि यह महिलाओं के आत्मविश्वास की बात है, उनके पहचान की बात है और समाज में बदलाव की बात है। और इस बदलाव के पीछे है योगी सरकार की दूरदर्शी सोच और मजबूत नीतियाँ। आज पूरे यूपी में महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभाल रही, वह कारोबार चला रही हैं, रोजगार दे रही हैं और समाज को आगे बढ़ा रही हैं। यही है नया उत्तर प्रदेश, सशक्त उत्तर प्रदेश।
1: मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 250 महिलाओं का नेतृत्व कर पाऊंगी, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मैं यह कर पा रही हूं। यह बस सरकार की योजनाओं की वजह से संभव हुआ है। इसके लिए योगी जी और प्रदेश के सरकार को चाहे जितना भी शुक्रिया बोलूं कम ही है।
0: दोस्तों अगर सही दिशा मिले, सही सहयोग मिले तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। रुचि देवी ने यह साबित कर दिया है कि हौसले हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं और एक महिला पूरे समाज को बदल सकती है। आज की इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि अवसर मिले तो उसे पकड़िए, खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ने से कभी मत डरिए। मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे राज। आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी और रेडियो की जुबानी। फिर मिलेंगे दूसरी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है। हां जी, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। अभी के लिए लेता हूं मैं यहां से अलविदा, नमस्कार।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई। यार यहाँ इतने मच्छर कहाँ से आ गए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट RJ रीना। आज हम बात करेंगे, उफ अरे भाई, यहाँ प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है, माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन लगता है कि जो हमारे यहाँ फूलदान है उनमें मच्छरों ने अपना घर बना लिया है और पार्टी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आज के कार्यक्रम की अपने सेहत सही लाभ कई की कड़ी की, जिसमें हम आज बात करने जा रहे

0: है एक ऐसी बीमारी की जिसका बरसात के साथ साथ एक लंबा रिश्ता है।
1: नमस्कार आरजी रीना, किसका रिश्ता किसके साथ लंबा है? भाई अब हमारा रिश्ता भी आपके साथ, माफ करिएगा, हमारे अपने सामुदायिक रेडियो के साथ बहुत लंबा हो गया है।
0: नमस्कार भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने, आपका और सेहतिया भैया का रिश्ता पूरे समुदाय के साथ तो था ही, लेकिन रेडियो के साथ भी काफी लंबा हो गया है और उम्मीद है कि ये रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। आप हमें ज्ञान देंगी और हम उसका लाभ उठाएंगे। लेकिन मैं बात कर रही थी इन मच्छरों की, और एक मिनट देखिए, यह व्हाट्सएप पर एक CMO की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आया है।
1: सर जोर से पढ़िए।
0: यह है, देखो, साफ करे ढके डेंगू को हराने के उपाय करे, राष्ट्रीय डेंगू डे की बधाई। और आज तो 16 मई है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। वाह,
1: अरे मुझे तो पता था, इसलिए मैं इसी विषय पर बात करने की तैयारी से आई हूँ। आप पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पर उससे पहले मैं बता दूँ कि फोन पर जो आपके पास और बहुत सारे लोगों के पास ये सूचना पहुँची होगी, इसका मतलब यही है कि हम सब मिलकर ही डेंगू की बीमारी को खत्म कर सकते हैं।
0: और राष्ट्रीय डेंगू दिवस इसलिए मनाए जाते हैं कि डेंगू बुखार की घटनाओं को कम करे, जो कि सही तरीके से इलाज न होने पर गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अच्छा, तो आज का मेरा आपसे सबसे सिंपल सवाल है, डेंगू क्या होता है और हम इसे कैसे बच सकते हैं?
1: ये तो वाकई में बहुत सिंपल है, अब तो बच्चा बच्चा जानता है। डेंगू एक मच्छर के काटने से फैलने वाली वायरल बीमारी है, इससे फैलता है। HTP का नाम मच्छर, ये मच्छर दिन में काटते हैं और बहुत तेजी से आदमी को बीमार कर देते हैं।
0: अरे दिन में काटता है, हम तो समझते थे मच्छर रात में ही एक्टिव होते हैं।
1: नहीं नहीं, ये वाले मच्छर दिन में ही ज्यादा काटते हैं, खासकर सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 3 से 5 बजे के बीच। ये छोटा काला सफेद धारीदार मच्छर होता है और जब ये डेंगू वायरस वाला मच्छर काटता है तब आदमी 5 से 6 दिन के अंदर बीमार पड़ जाता है।
0: तभी तो मैं परेशान थी, सर्दियों में बहुत मच्छर थे, अब ये मच्छर भागने के नाम ही नहीं ले रहे हैं और फिल्ट भी किया। तो डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं भाभी?
1: डेंगू में तेज बुखार अचानक चढ़ जाता है, सिर दर्द, आंखों के पीछे जलन, बदन में दर्द, भूख कम लगना, शरीर पर चटके, उल्टी या मिचली, ये सब हो सकता है। अगर बीमारी बढ़ जाए तो नाक मुंह से खून बहुत ज्यादा, उल्टी, बेचैनी, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत, ये गंभीर लक्षण होते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
0: अरे तो क्या इसका इलाज हमारे पास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर है क्या, जहां लोग जाकर इलाज करवा सके?
1: क्यों नहीं, हमारे हर नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर डेंगू का टेस्ट होता है और जिस हिसाब से लक्षण दिखते हैं उसी हिसाब से इलाज होता है। पर ये भी जान लो कि डेंगू का कोई खास इलाज नहीं होता।
0: भाभी जब डेंगू की कोई खास दवा नहीं है तो क्या लोग क्या करें?
1: डेंगू का कोई पक्का इलाज नहीं होता, पर इसका इलाज लक्षणों के हिसाब से होता है, जैसे बुखार कम करना, खूब सारा पानी पीना और अगर जरूरत पड़े तो खून या प्लाज्म देना। और ये सब हमारे पास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के समक्ष स्वास्थ्य कर्मी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एस्प्रिन या इब्रुफेन नहीं लेना चाहिए, सिर्फ पैरासिटामोल की गोली चलेगी।
0: समझ गए भाभी, अब बताइए ये मच्छर पैदा कहाँ होते हैं?
1: ये मच्छर साफ पानी में पनपता है, जैसे कूलर, बाल्टी, फूलदान, टंकी, फ्रिज के नीचे, प्लास्टिक की बोतलें, पुराने टायर, जहाँ भी साफ पानी जमा हो जाए। और सोचो, इसके अंडे बिना पानी के भी एक साल तक जिंदा रह सकते हैं।
0: भाभी मैं भी यही कह रही हूँ कि ऑफिस के सारे गुलदस्ते बाहर रख देने चाहिए, क्योंकि हर घर में खतरा छुपा बैठा है।
1: एकदम, इसीलिए हफ्ते घर के सारे पानी वाले बर्तन धोएं, कूलर खाली करो, आसपास सफाई रखो, इसे कहते हैं वीकली ड्राई डे। सबसे सस्ता और साधारण उपाय है, पानी जमा ही मत होने दो।
0: भाभी और क्या क्या उपाय होते हैं मच्छर को रोकने के लिए?
1: और अगर रास्ता और किफायती उपाय चाहते हो तो ध्यान से सुनो और गांठ बांध लो। डेंगू से बचाव के लिए हमें कई स्तर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले व्यक्तिगत सुरक्षा के तहत पूरे बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, मच्छर भगाने वाली वाली क्रीम का उपयोग करना चाहिए और बच्चों को दिन में भी मच्छरदानी में सुलाना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा, पर आपने कई स्तर की बात की है, तो बाकी के स्तर?
1: अरे तो पूरी बात तो सुनो। जैविक उपयोगों में पानी की टंकी और तालाब में गबूसिया जैसी मछलियाँ डालनी चाहिए जो मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं। साथ ही बायोसाइट का उपयोग भी करना चाहिए। पर्यावरण की देखभाल में छत, पोल्टिको और सनसेट की नियमित सफाई, पानी को ढककर रखना और नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।
0: ठीक है, पर इसमें हमारे रेडियो या सामुदायिक का भी कोई योगदान हो सकता है क्या?
1: फिर वही बात, पूरी बात तो सुनो। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जैसे रेडियो, पोस्टर और लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। और हाँ, सामुदायिक की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसमें मोहल्ले के लोग मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करें और एक जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें।
0: भाभी, आप तो डेंगू की डॉक्टर निकली। गांव में कई लोग सोचते हैं कि बस बुखार है, दो दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसे में लोगों को क्या कहेंगे?
1: मैं तो बस इतना ही कहूँगी, मत सोचिए, चल दीजिए। हर तेज बुखार डेंगू हो सकता है, इसीलिए तुरंत नजदीकी AAM, PHC, CHC या आशा दीदी से संपर्क करो। जल्दी पता लगेगा तो इलाज भी आसान होगा।
0: और अगर किसी को डेंगू हो जाए तो घर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए?
1: डेंगू के मरीज की देखभाल करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मरीज को अधिक मात्रा में पानी पिलाना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। बुखार और दर्द के लिए केवल पैरासीटामोल दें। एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी दवाइयों से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि ये हालत को और बिगाड़ सकती है। इलाज हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करें, खुद से कोई दवा ना दें। साथ ही यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मरीज के आसपास मच्छर ना पनपे, जिससे बीमारी अन्य लोगों में ना फैले।
0: भाभी, आपने जैसा कि बताया था कि इस श्रृंखला के बाकी एपिसोड की पोषण हर बीमारी से लड़ने का पहला हथियार होता है, तो डेंगू से लड़ने के लिए क्या क्या खान पान होना चाहिए?
1: हाँ, अब लग रहा है कि तुम मेरी बातें ध्यान से सुनती हो और पल्ले से बांध लेती हो। डेंगू के मरीज के लिए खान पीन का ध्यान कैसे रखे जाए, इस बात का कुछ साधारण उपाय हैं। डेंगू में शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसीलिए सही खाना और भरपूर पानी पीना बहुत जरूरी होता है। इससे शरीर की ताकत भी बनी रहती है और जल्दी ठीक होने की मदद मिलती है।
0: अरे भाभी, तो बताइए तो क्या करना होगा हमें अगर डेंगू से ग्रसित हो जाए कोई तो?
1: हाँ हाँ, बता रही हूँ। तुम भी ऐसे उतावली हो रही हो जैसे छोटे बच्चे चॉकलेट के लिए उतावले होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि डेंगू में पानी की कमी हो जाती है। नारियल पानी पीना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे शरीर के नमक इलेक्ट्रोलाइट की भरपाई होती है। ORS यानी नमक चीनी का घोल, या बाजार नहीं है तो आंगनवाड़ी से मुफ्त मिलने वाला पैकेट का ORS देना चाहिए, जिससे शरीर में पानी और ताकत बनी रहे।
0: अरे भाभी, तो बताइए तो खाने का भी तो बताइए, इतना इंतजार करना पड़ेगा?
1: अरे बहन, आज क्या हो गया है तुम्हें, इतना उतावलापन? खैर तो चलो, अब बात करते हैं खाने की। तो डेंगू में ऐसे खाना चाहिए जो पचाने में आसान हो, हाँ, और शरीर को ताकत दे, जैसे फल, पपीता, अनार, संतरा। जैसे फल बहुत फायदेमंद होते हैं, इसमें विटामिन सी होता है जो प्लेटी बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। हरी सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सहजन के पत्ते, इनमें ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते हैं। दूध, अंडा, चिकन, मछली और पनीर, ये सब चीजें शरीर के अंदरूनी घाव भरने में मदद करती है। दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल जैसे चीजें जो पचाने में हल्की हो और ताकत भी दे।
0: तो इतना सब कुछ बता ही दिया है, तो ये भी बता दीजिए भाभी कि किस किस चीजों से बचना चाहिए।
1: तले भुने तेल मसाले वाले खाने से परहेज करना चाहिए, ये पेट को और कमजोर बना देता है। बाजार की मीठी चीजें और पैकेट वाले खाना नहीं खाना चाहिए। चाय, कॉफी या शराब जैसी चीजें बिल्कुल नहीं, ये शरीर को और सुखा देती है और बीमारी बढ़ सकती है।
0: हाँ हाँ, बताइए बताइए, मैं तो आपसे से जितनी भी ज्ञान लूँ ना उतना ही कम है, संकोच बिल्कुल भी नहीं करती मैं।
1: अच्छी बात है, फिर ये भी सुनती जाओ, पपीते की पत्ती का रस कुछ अस्पतालों का कहना है कि ये प्लेटें बढ़ाने में मददगार हो सकता है, लेकिन अभी और रिसर्च की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, इससे शरीर को ताकत मिलती रहती है और भूख भी बनी रहती है। और सबसे जरूरी है अच्छी नींद लो, पूरा आराम करो, तभी शरीर जल्दी ठीक हो पाएगा। पानी खूब पियो।
0: भाभी ये तो आप बहुत बढ़िया बता रही है, लेकिन एक बात और बताइए, डेंगू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कुछ डूज और डोज भी समझा दीजिए।
1: ये कुछ और जरूरी बातें भी ध्यान में रखो। डेंगू से बचाव के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद आवश्यक है। जिन बर्तनों में रोजाना पानी नहीं इस्तेमाल होता उन्हें हमेशा उल्टा करके रखना चाहिए ताकि पानी जमा ना हो। फूलदान, पौधों की तस्तरियां और फ्रिज के पीछे जमा पानी को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। अगर छत, आंगन या नालियों में पानी रुकता हो तो उसे तुरंत साफ करवाना चाहिए नालियों को खुला ना छोड़ें, उन्हें ढक्कन से ढकें या मच्छरदानी जैसी चीजों का उपयोग करें। साथ ही मोहल्ले में साफ सफाई बनाए रखने के लिए अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करें, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वही कुछ बातों से बचना भी उतना ही जरूरी है। बरसात के बाद किसी भी बर्तन, गड्ढा या टायर में पानी जमा ना होने दें। बेकार पड़े कूलर या अन्य बर्तनों को हफ्ते तक बिना सफाई के ना छोड़ें। बुखार आने पर उसे हल्के में ना लें और इलाज में देर ना करें। अगर मच्छर दिखाई दे तो उन्हें नजरअंदाज ना करें, तुरंत उपाय करें। और सबसे जरूरी, सफाई को केवल घर तक सीमित नहीं रखना, घर के बाहर और आस पड़ोस की सफाई भी बराबर ध्यान दें।
0: वाह भाभी, आपने तो बहुत ही कमाल की बातें बताई। अब हर कोई ध्यान रखेगा क्या करना है और क्या नहीं। भाभी एक सवाल और, बिहार और यूपी में डेंगू के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना?
1: हाँ बहन, 2024 में बिहार में 10,157 केस थे और 16 मौत हुई थी। यूपी में 15,845 केस और 8 मौत हुई थी। ये बीमारी मजाक नहीं है, सबको मिलकर रोकना पड़ेगा।
0: आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। अब आखिर में डेंगू के खिलाफ एक संदेश दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
1: डेंगू से डरना नहीं, उससे लड़ना है। मच्छरों को पनपने मत दो, हर हफ्ते घर के कोने कोने में झांको और याद रखो, साफ गांव, स्वस्थ गांव।
0: बहुत बहुत धन्यवाद टीकन भाभी, आपने इतनी जरूरी बातें ऐसी अच्छे अंदाज में समझा दी। श्रोतागणों आप भी डेंगू से बचाव में अपना योगदान दे। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अब तक के लिए साफ आंगन की रखो पहरेदारी, डेंगू से मिले पूरी सुरक्षा की तैयारी।
2: FM मुरादाबाद से मैं हूँ आरजे इना और आज हम आए हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ डेंगू से रिलेटेड उनके बारे में क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो आज हम आए हैं यानी कि एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करने के लिए। सर आपका नाम?
3: डॉक्टर अर्पित गोयल।
2: अर्पित गोयल सर, तो ये बताइए कि डेंगू जैसे फीवर होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें डेंगू ही फीवर है?
3: डेंगू के लक्षण होते हैं बुखार होना, शरीर में दर्द होना, सर में दर्द रहना, शरीर में चकत्ते पड़ जाना और उल्टी हो जाना, ये सब डेंगू के लक्षण होते हैं। वो हम थर्मामीटर के थ्रू पहले बुखार नापेंगे और फिर पता लगेगा कि बुखार कितना है। फिर इसका टेस्ट होता है, 2 से 7 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है कि जब हमारा बुखार और लक्षण रहते हैं। इसमें अधिकतर कोई ज़्यादा कोई दवा नहीं होती है। बुखार के लिए हमें नॉर्मल पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन के नाम से भी आती है जो दवा, वो देनी होती है। बुखार कंट्रोल करने के लिए खूब पानी पीना होता है, दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी पीना होता है। और शरीर में दर्द के लिए दर्द की दवा दी जाती है। और इसको हम मेनली ये होता है मच्छर के काटने से, जो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है उसके काटने से होता है। तो इससे बचाव हम ऐसे कर सकते हैं कि हम घर में जो रेपेलेंट्स होते हैं, मॉस्किटो स्प्रे होते हैं, वो मार सकते हैं। और ये जो मच्छर है ये मोस्टली साफ पानी में पनपता है, तो हम जो जितना भी पानी इकट्ठा होता है हमारे घर में आसपास, वो पानी हम हटा सकते हैं, साफ सफाई रखें हम घर पे, और पेट्रोलियम जो होता है वो डाल करके अगर कोई पानी का काफ़ी समय से हम साफ पानी अगर इकट्ठा हुआ है यही सब हो। डेंगू का कोई ऐसा डेफिनेटिव कोई टीका भी कोई वो नहीं आई है वैक्सीनेशन, तो मोस्टली इसको हमें प्रिवेंट करना होता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है इसके ट्रीटमेंट।
2: अच्छा सर, क्या गंभीर डेंगू का कोई इलाज हो सकता है?
3: गंभीर डेंगू का भी इलाज होता है, वो हम टर्शरी केयर सेंटर पे हम देखते हैं उसमें क्या क्या पेशेंट को सिम्टम्स हैं, और इसमें मोस्टली प्लेटलेट काउंट हमारे काफ़ी गिर जाते हैं। अगर मरीज के प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम हो जाते हैं और उसको शरीर में कहीं से भी खून निकल रहा होता है तो हमें प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं मरीज को, या फिर 10,000 से कम होते हैं और शरीर में से कहीं से खून नहीं आ रहा था तब भी हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं मरीज को। वो मरीज की कंडीशन देख के और उस हिसाब से हमें पूरा इलाज देना होता है उसको।
2: जो हमारे लिसनर सभी हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि डेंगू से हमें कैसे बचना चाहिए?
3: डेंगू से बचाव के लिए हमें पहले तो घर में साफ सफाई और जो साफ पानी है उसको इकट्ठा होने से रोकना है। दूसरा, कभी भी बुखार जैसा लक्षण दिखता है तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, घबराना नहीं है, उसके लिए इलाज लेना है। खूब अधिक मात्रा में पानी पीना है, 3 से 4 लीटर हमें पानी पीना है दिन में, और अगर डेंगू आता भी है जांच में तो भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो जो हमें दिक्कतें हैं उसका इलाज लेना है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 7 दिन होता है, 7 दिन के बाद मरीज ठीक हो जाता है और इससे कोई घबराने की दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है हमें और इलाज लेना है और इलाज से ठीक हो जाता है।
2: सर, मैंने बहुत से ऐसे मतलब आदमियों से मिली हूँ जिनको फीवर होता है और वो बोलते हैं कि मतलब इग्नोर मारते हैं इसको, कुछ नहीं होगा, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे?
3: इग्नोर नहीं मारना है हमेशा, कभी भी बुखार आता है पहले तो अगर शरीर टूट रहा है या ऐसा शरीर गर्म लग रहा है तो हमेशा आपको थर्मामीटर लेके या पास में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उधर जाके आपको पहले थर्मामीटर से बुखार नपाना है, उधर आपको दवा लेनी है, और अगर वहाँ पे जो NS1 एंटीजन टेस्ट होता है डेंगू का उसमें अगर डेंगू आता है तो भी घबराना नहीं है। अगर कहीं से खून आता है, कहीं शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं तो ज़रूर दोबारा से डॉक्टरों को आके दिखाना है और स्वास्थ्य की सेवा, प्राथमिक सेवा लेनी है उनसे, और घबराना नहीं है और हमें इलाज लेना है उसका सही तरीके से।
2: ओके, थैंक यू सो मच सर।
1: आइए हम सब मिलकर लेते हैं एक शपथ।
4: हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
4: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
4: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

0: नमस्कार, आदाब। मैं आपकी रेडियो दोस्त छाया। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कहते हैं स्वस्थ जीवन जीना जिंदगी की जमा पूंजी और योग करना रोग मुक्त जीवन की कुंजी। जी हाँ, आज हम योग पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग कितना जरूरी है, यही बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ऋतु नारंग जी, जो एक योगा टीचर हैं। मैम, आपका मोस्ट वेलकम हमारे स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम, सबसे पहले हमारे सुनने वाले श्रोताओं को अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम ऋतु नारंग है और मेरे पिता योग गुरु के नाम से इलाहाबाद में जाने जाते थे और बचपन से ही हमने योग उनके द्वारा देखा है। इनफैक्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में योगा कराते थे वो, और उसके बारे में महत्व के बारे में बचपन से जाना। लेकिन 2009 में जब मैंने श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करा और वहीं से मेरा एक प्रॉपर वे में एक सही दिशा में योगा के बारे में जानकारी होते हुए उसको आज मैंने अपने जीवन का एक मूल आधार बनाया और उसी के द्वारा आज मैं पूरे मुरादाबाद के आसपास क्षेत्रों में भी और जब कोरोना आया था ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन योगा लिया था। और इसी के साथ साथ एक सोशल वर्कर हूँ, नारी उत्थान केंद्र में काउंसलर हूँ, पुलिस में योगा ट्रेनर के नाम से जानी जाती हूँ और अपने हिंदुस्तान के 7 लोगों में जब कोरोना हुआ था तो चुना गया था तो साउथ में श्री सत्य साई बाबा भगवान इंस्टीट्यूट में मुझे अवार्ड मिला था। इसी प्रकार मिशन शक्ति और साथ ही साथ अपना डिस्ट्रिक्ट आइकॉन रही हूँ 19 और 22 में, और अपना स्वीप के लिए इलेक्शंस के लिए, जैसे स्वीप को मतलब होता है इलेक्शंस, 2017 में थे डिस्ट्रिक्ट आइकॉन स्वच्छ भारत अभियान के। इसी प्रकार से जर्नी रही और बहुत ही खूबसूरत जर्नी है।
0: जी, खूबसूरत जर्नी तो आपके बातों से और ये जान के हमें लगी रहा है। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे, योगा क्या है, क्यों करना चाहिए इसे?
1: देखिए, योग के बारे में अगर हम किताबों में और गूगल में बहुत कुछ है, लेकिन आप अगर एक दिनचर्या और योग है क्या, एक्चुअली में एक लाइफस्टाइल है वो। योग एक पथ है जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए। योग एक ऐसा जीवन शैली है, अगर उसे हम उतारते हैं अपने जीवन में, जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक फूल है, फूल की तरह रोज हमारी एक कली खिलती है ना, उसकी पंखुड़ियां खिलना शुरू हो जाती हैं। वैसे जब हम योग करते हैं तो ऐसे हमारा जीवन भी एक फूल की तरह रोज खिलता है और खुशबू फैलाता है जहाँ भी हम जाते हैं। हाँ, अगर आप उसको वैसे जानना चाहेंगे तो योग एक जोड़ना है, ये आपको पता ही है, जैसे मैंने कहा कि आप सब इसके बारे में जानते ही हैं। लेकिन योग को जोड़ना किसका, क्यों और कहाँ, ये समझना जरूरी है। योग सिर्फ आसन या अपने शरीर को ही नहीं, योग बाहरी दुनिया से अंदरूनी दुनिया को जोड़ना योग कहलाता है। स्वयं के संघा में रहना, और मैं एक लाइन जरूर बोलती हूँ, खुद से मोहब्बत करना। खुद से मोहब्बत करिए तो अपने आप योग आप करेंगे। खुद से मोहब्बत करना, खुद से मिलना, खुद को जानना योग है। योग, मैं फिर कहूंगी, एक जीवन शैली, कैसे हम अपना जीवन जीते हैं, कैसे अपने आप को हम समाज में और कैसे अपने आप को अपने परिवार में, कैसे अपने आप को अपने कार्य में जोड़ते हैं, कितने खूबसूरती से जीते हैं, वो हम योग के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जीवन शैली को खूबसूरत बना सकते हैं।
0: क्या बात है, मतलब आपने पूरे योग की परिभाषा दे दी हमारे श्रोताओं को और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन मैम, आपने एक लाइन कहा कि खुद से मोहब्बत करिए। जरूर, खुद से मोहब्बत हर कोई करता है और आजकल के टाइम में हर कोई फिट रहना चाहता है। तो मुझे ये बताइए कि फिट रहने के लिए आजकल का जो यूथ है वो सबसे ज्यादा अगर भागता है तो जिम की तरफ भागता है। जिम और योगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बताइए।
1: जैसे अभी आपने बोला, योग खुद से मोहब्बत,
0: जी
1: ये मैंने क्यों बोला, आज हमारे हिंदुस्तान का ये ज्ञान है, योग जो है हमारे जीवन शैली में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने 6-7 हजार साल पहले हमें दिया। जिम जो है पाश्चात्य है। आज आप देखिए, 21 जून जब से हिंदुस्तान ने विश्व को दिया, आज वहाँ पर विदेश में जिम बंद हो रहे हैं और योगा स्टूडियोज खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है योग से जो प्राप्त होता है वो जिम से प्राप्त नहीं होता है। जिम एग्रेशन है, योग शांति है। जिम स्वयं को भगाना है, स्वयं के साथ एक कुश्ती लड़ना है, और योग जो है खुद से मोहब्बत है, खुद से साथ प्रेम है, खुद के साथ बैठ के अपने आप को पैम्परिंग करना। कहते हैं ना, आओ खुद के लिए कुछ करें, आओ खुद को कुछ जाने, योग वो है। आज विश्व को हिंदुस्तान ने, हमारे देश ने योग दिया है, वो ज्ञान दिया है जो एक साइंस है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। योग एक विज्ञान है, सबसे बड़ा विज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने हमें एक सोने की थाल में सजा के दिया है। आज मैं युवाओं से जरूर कहूंगी, स्वयं के अगर आप शांत रखना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिम को छोड़ो और योग को अपने जीवन शैली में अपनाओ। योग जो है और जिम जो है उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और आप जब इस दोनों को करेंगे तो आप इसका अनुभव अपने आप, इसको आप देख सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, आप उसे बहुत ही सुंदर तरीके से अनुभव भी करेंगे।
0: क्या बात है, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमें जिम और योग दोनों से क्या मिलने वाला है। अभी आपने कहा कि अपने आप को शांत रखने का एक सही तरीका है योग। अगर इसी को लेके आगे हम बात करें तो आजकल के बच्चों से लेके युवाओं में गुस्सा बहुत आता है, हमेशा हर बात में वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्या योग से इस चीज को भी दूर किया जा सकता है?
1: बिल्कुल, शत प्रतिशत। इसके अलावा कोई और जरिया भी नहीं है, कोई भी जरिया नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपने पूछा मुझसे कि जिम और योग में क्या फर्क है। जिम में मैंने कहा एग्रेशन है
0: जी,
1: और योग में प्रेम है।
0: प्रेम है।
1: जब हम योग करते हैं हम बहुत शांत हो जाते हैं, जब हम शांत हो जाते हैं तो हमारा गुस्सा अपने से लुप्त हो जाता है। इसीलिए आज युवा ही नहीं, बच्चों से ही हमें शुरुआत कर लेनी चाहिए। आज स्कूलों में भी योग का पूरा आप देखिए ध्यान दिया जाता है कि योग बच्चों को स्कूल में कराया जाता है। आज इसीलिए युवाओं को भी प्रोत्साहित करा जाता है कि आओ योग करो, क्योंकि जो आज 21वीं सदी की मिलेनियम में जो आपका सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है कि आज गुस्सा, आज धैर्य आप देखिए बिल्कुल लुप्त हो चुका है। इसलिए झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, आपसी संबंध खराब हो रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में आप देखिए तो रेशियो ऑफ डाइवोर्स का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो सब इसीलिए है कि हमारी मानसिक संतुलन हमारा ठीक नहीं चल रहा है, अहम हमारे जीवन के अंदर आ चुका है और हम दोस्त के बदले हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होके आ गए हैं। और जब हम योग करते हैं ना, हम फिर से कहेंगे खुद से मोहब्बत करेंगे। जब खुद से मोहब्बत करेंगे, एक लाइन आई डाउन करेंगे आप, जब खुद से मोहब्बत करेंगे ना, जो आपके आसपास है ना उससे आप स्वयं मोहब्बत कर लेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि आप जब खुद से मोहब्बत करेंगे तो आपसे प्रेम बहेगा, जब प्रेम आपसे बहेगा तो नेचुरल है आप समझ जाएंगे सामने वाला भी आपसे क्या चाह रहा है।
0: क्या बात है, मतलब खुद से मोहब्बत करिए। बार बार मैम अपने शब्दों में इस सेंटेंस का यूज कर रही हैं। वैसे इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं वो प्रॉब्लम भी खत्म हो सकती है योग करने से। तो योग करिए, मन को शांत रखिए, एक सही जरिया है योग हमारे मन को शांत रखने का। अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आयुष मंत्रालय का भी ये कहना है कि योग करिए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए और हर तरह के बीमारियों से निजात पाइए, ये कितना सही है?
1: ये बात बिल्कुल शत प्रतिशत सही है, सत्य है। इनफैक्ट जो आयुष मंत्रालय जी इस बात का दावा करता है, आयुष मंत्रालय की बीमारियों से हमें निजात मिल सकती है योग के द्वारा, ये सही बात है। हम बहुत सारे पैसे अपने एलोपैथिक दवाइयों में बर्बाद करते हैं। कहते हैं ना, दवाई खाना आसान है लेकिन खुद से प्यार करना मुश्किल है। आप लोग मुस्कुराएंगे कि फिर से रितु दीदी ने ये कह दिया, मुझे बहुत प्यार से लोग रितु दीदी कहते हैं मुरादाबाद में।
0: अच्छा,
1: तो ये बात सही है क्योंकि मेरा अनुभव है, 2009 से 2023 हो गया है और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए व्यक्ति आए ना हो शिवर करने मेरे पास। इनफैक्ट कैंसर पेशेंट्स जैसी बीमारियों के भी आए थे और जब वो पहली बार आए वो कुछ डॉक्टर भी थे और उनको जब मैंने पूछा कि आप कैंसर पेशेंट हैं और आप योग करने आए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे खुद डॉक्टर ने, दिल्ली के डॉक्टर ने रिकमेंड करा कि जाइए और योग करिए। आज एम्स में डॉक्टर्स खुद इस बात को कहते हैं कि जाओ और योग करो। क्यों? क्योंकि योग से हमारी विल पावर हाई होती है। बहुत साइंटिफिक चीज है, बहुत वैज्ञानिक चीज है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। मैंने आपसे पहले कहा कि योग एक बहुत बड़ा साइंस है जिसके बारे में जब हम समझेंगे तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा विश्व में जो अपनी सुबह की शुरुआत बिना योग के करेगा। क्योंकि योग जो है हमारी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाता है। जब हमारे अंदर सकारात्मक सोच आती है तो आधी बीमारियां तो हमारी वहीं से खत्म हो जाती हैं। जैसे आप देखिए, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, रात को नहीं सोना, इंसोम्निया जिसे हम लोग कहते हैं, ये सब जितनी चीजें हैं, बच्चों का आजकल बहुत बड़ी परेशानी, बैठे बैठे रोना शुरू हो जाता है उनका, वो कहते हैं डिप्रेशन में। बचपन से ही बच्चा दवाई डिप्रेशन जब खाएगा तो आप ये सोचिए उसके शरीर के अंदर और क्या क्या होगा। और ये बात कही गई है कि डिप्रेशन का इलाज सिर्फ योग है, इसलिए क्योंकि योग में आप फिर मुस्कुराएंगे, प्यार करते हो आप अपने आप से। डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि हमें अकेलापन लगता है, हम दूसरों से, हमें अपेक्षाएं हमारी होती हैं, वो चीज जब हमारी पूरी नहीं होती हम सोचते हैं हमारे लिए कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और यहाँ तक कि स्तर बढ़ जाता है कि हम सुसाइड करने की तरफ भी चले जाते हैं। आज आप देखिए सुसाइड रेट भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गया है,
2: बहुत बढ़ गया है।
1: तो ये सब पीछे क्या है? डिप्रेशन का एक्सट्रीम लेवल है सुसाइड, अकेलेपन का एक्सट्रीम लेवल है, गुस्से का एक्सट्रीम लेवल है। कई बारी पति पत्नी में या घर में माँ बाप से झगड़ा होता है, बच्चा इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे पता ही चलता है वो सुसाइड कर लेता है, या पति पत्नी में इतना जबरदस्त गुस्सा आता है कि पत्नी जाकर सुसाइड कर लेती है या पति सुसाइड कर लेता है। आज हर तरीके से आप देखें क्यों है ये, क्योंकि हम कभी शांत मन से बैठते नहीं है। सुबह की शुरुआत अगर शांत मन से हम करते हैं तो हमारी परेशानियां, बीमारियां पहले ही खत्म हो जाती हैं। जहां तक बीमारी की बात है, मैं अपने अनुभव से आपसे कहती हूँ, कितने लोगों की बीपी की दवाइयां छूट चुकी हैं, मुरादाबाद में शुगर की मेडिसिन छूट चुकी हैं, थायराइड के पेशेंट्स आ चुके हैं, एस्थमिक पेशेंट्स आ चुके हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स आ चुके हैं, टीवी के पेशेंट्स आ चुके हैं, कैंसर पेशेंट्स आ चुके हैं। आप मुझसे पूछोगे शरीर के दर्दों के आ चुके हैं, यहाँ तक कि ये भी बोला गया कि जो स्ट्रेस है उससे भी पेन होती है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल नहीं है ज्यादा हाई तो आप उसको भी खत्म कर सकते हो, अपनी पेन को भी खत्म कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेस अपने लाइफ से खत्म कर दोगे तो आज जो ये तनाव है वो भी बीमारियों का कारण बन रहा है। और ये सब चीजें हमें कहाँ से फ्रीडम मिल सकती है? योग से। सिंपल, योग करिए निरोगी काया पाइए, बहुत पुरानी सेइंग है, योग करो निरोगी काया पाओ। सुबह उठो, सांसें भरो, योगा करो, मस्त रहो।
0: क्या बात है मैम, आपने कई बार इस चीज को मेंशन किया है कि योग सुबह उठो योग करो, सुबह उठो योग करो, कि योग करने का जो सही समय है क्या वो सुबह में ही है? क्योंकि ज्यादातर लोग ऑफिस जाते हैं, अदर वर्क पे जाते हैं तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। अगर वो योग फॉलो करना चाह रहे तो वो किस टाइम कर सकते हैं?
1: देखो योग का समय जो अगर आप पढ़ेंगे हर जगह, चाहे गूगल में पढ़ लीजिए या पतंजलि योग सूत्र पढ़ लीजिए या आप किसी योगाचार्य से सुनेंगे तो आपको यही बोला जाएगा, चाहे आप श्री श्री रविशंकर जी से सुने, चाहे आप रामदेव जी से सुने, चाहे सदगुरु जी से सुने, आप किसी भी से भी सुनेंगे ना तो वो यही कहेगा सुबह उत्तम समय है। लेकिन योग करना जरूर चाहिए, अगर आप लेट हो रहे हैं शाम को करो। जैसे हम बच्चों का शिविर लेते हैं, अभी मेरा 15 दिन से लगातार चल रहा था, 6 साल से लेके 13 साल तक के बच्चों का, तो उनका मैंने जो समय रखा कि बच्चे छुट्टियां हैं वो चाहते हैं हम आराम से उठे, राइट? तो उनका टाइम जो रखा था वो रखा ही हमने 11 बजे था, 11 से 1-2 घंटा मस्त होके योग करो, कोई बात नहीं, लेकिन कर तो रहे हैं ना। आप एक नींव डाल रहे हो बच्चों में योग की, आप जा रहे हो कॉर्पोरेट हाउस में काम करने जा रहे हो, आप सुबह सुबह भागा दौड़ी में आप लेट उठ रहे हो, लेकिन आधा घंटा उठ जाओ पहले अच्छा है। लेकिन अगर नहीं उठ पाए, लेट हो गए किसी कारणवश, तो शाम को कर लो, लेकिन खुद को 24 घंटे में से आधा घंटा जरूर दो, जरूर दो। खुद से प्यार, अपने से आधा घंटा करो, दूसरों से मांगते रहते हो लेकिन खुद से भी तो करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। 24 घंटे में से आधा घंटा स्वयं को जब देंगे बीमारियों से भी फ्रीडम पाएंगे, जो आयुष मंत्रालय कहते हैं, जो सारे योग गुरु कहते हैं, इसीलिए आज पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान का ये विज्ञान बहुत प्रसिद्ध हो चुका है।
0: मैम आपने कहा कि आप बच्चों को सिखाती हैं, जैसा कि आप योगा टीचर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक जितने लोगों को योग के बारे में आपने ट्रेन किया है उनमें कितना इसका प्रसार हुआ है, कितना जान पाए हैं योग के बारे में वो?
1: बहुत गर्व से कह सकती हूँ, डीएम राकेश सर हमेशा मुझे योग गुरु के नाम से कहते थे, और मुरादाबाद में एक तरह से कहा जाता है कि योग के बारे में हमने काफी कुछ इसके बारे में कार्य क्षेत्र करा है। पुलिस में 50,000 मेरे 2019 में पूरे हो गए थे ट्रेनीज में, मैंने योगा कराई थी, यहाँ तक कि योग और ध्यान के साथ, और पब्लिक में कोई गिनती नहीं है। और उन सब का जो बेनिफिट्स है आप लोग मेरे फेसबुक में जाके देखेंगे, AOL मतलब आर्ट ऑफ लिविंग होता है वो शॉर्ट फॉर्म है, AOL RITU ऋतु दीदी मुरादाबाद, तो आप उसमें देखेंगे कि हर प्रकार से लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है, बच्चों से लेके बड़ों तक। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, पढ़ाई, मेमोरी हमारी शार्प होती है, कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़ता है, फोकस हमारा बढ़ता है अगर हम योग करते हैं तो। आप सोचिए कितने बेनिफिट्स हैं। आपने अगर अपने आपको सुबह आधा घंटा से एक घंटा दे दिया तो आपको हर तरीके से, आज कहते ना बहुत जल्दी याददाश्त, भूल गया, आप आजकल सुनते होंगे अक्सर आप मुंह से निकलता है भूल गया भूल गया। क्यों भूल रहे हैं?
0: मेरे साथ भी हो जाता है। इसके बाद मैं योगा फॉलो करने वाली हूँ।
1: यस, ये जो लाइन हम लोग अक्सर, आज युवा भी बोलता है, बच्चा भी बोलता है, याद नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर आप योग कर रहे हैं, जो मेरे पास शिविर होते हैं बच्चों के, उसमें स्पेशली इसी पर पूरा ध्यान होता है कि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़े, क्योंकि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योग के साथ ध्यान में बैठना तभी वो पूर्ण होता है। योग के साथ ध्यान में ही अपने आप को कम्प्लीट करेगा, योग प्राणायाम और ध्यान। योग इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री थिंग, तीनों का मिलन है। आप योग को सिर्फ एक चार हाथ उठाना या पैर उठाना नहीं है, योग प्राणायाम और ध्यान, तब वो पूरा योग आपका होता है। तीनों चीजों को आप बराबर बांटिए और फिर आप देखिए उसका क्या रिजल्ट मिलता है। इसीलिए बच्चों को जब हम दो घंटे का लेते हैं, जैसे आजकल मेरा जो चल रहा है 13 साल से 18 साल के छोटे बच्चों का चल रहा है, तो पूरा उनको योग में योग कराया जाता है, ध्यान कराया जाता है, सुदर्शन क्रिया हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की है वो कराई जाती है, और साथ ही साथ उनको पूरा अपने संस्कृति से जोड़ा जाता है। इसीलिए मेमोरी बच्चों की, याददाश्त बहुत बढ़ जाती है। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, मैं स्कूल्स में भी लेती हूँ, तो वहाँ के प्रिंसिपल्स लोग यही कहते हैं, जब ये कोर्स हो जाता है तो बच्चों की रिजल्ट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए कितने फायदे हैं योग के।
0: हाँ जी बिल्कुल। जैसा कि मैम आपने शुरुआत में ही मेंशन किया था कि आप ऑनलाइन योगा भी सिखाती हैं, तो और आपने इस वाले आंसर में ये सारी चीजें मेंशन की है कि तीन चीजें, योगा प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों जब तक आप नहीं करते हैं एक साथ तब तक आपका योगा कंप्लीट नहीं होता है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई योगा फॉलो करना चाहता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे हर जगह आपको हर तरह के वीडियो अवेलेबल मिलेंगे, तो हमें ये बताइए कि अगर कोई योगा फॉलो करना चाहता है तो वो वीडियो से ही कर सकता है या उसे किसी ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी?
1: देखो ये बात बिल्कुल सही है, आज सोशल मीडिया हमारे जीवन शैली में बहुत हावी हो चुका है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। आप कोई भी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, आज अब यूट्यूब उसके लिए अवेलेबल है, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये तीनों चीजें आज हमारे जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि योग का एक प्रॉपर ट्रेनर आपके पास हो उसके बारे में भी आप स्टडी करिए, क्योंकि योग एक ऐसी चीज हो चुकी है जहाँ पर आपको घर घर में सिखाने पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके पास कितनी प्रॉपर ट्रेनिंग है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि

0: हर चीज अगर गलत दिशा में सीखी जाए वो आपके शरीर को खराब करेगी। जैसे मैं अपना उदाहरण एक देती हूँ, एक व्यक्ति मेरे पास आए थे कहीं मेरे मिले पार्टी में, तो उन्होंने कहा हमने योग करा हमारा शरीर तो बिल्कुल खराब हो गया, या हमने कपाल भाती करी कि आंटी ने मुझे कहा कि माँ तो पेट इतना भर गया। हमने कहा आपने कहाँ से सीखा? उन्होंने कहा हमने तो टीवी में देख के सीख लिया, या एक के घर में सिखाने आते थे। तो हमने कहा वो जो आपको सिखाने आते थे वो कहाँ से सीखे? तो क्या होता है ना कि आजकल को ये प्रोफेशन बन चुका है। आज इसकी वजह से आयुष मंत्रालय ने जो आज योग का पूरा एक प्रचार करा है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है हम लोगों को कि आज हमारे पास नौकरी इस चीज की बहुत होगी, प्रोफेशनली ये बहुत हाई हो चुका है। आजकल के युवा इस चीज को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, घर घर आप देखिए आजकल योगा सिखाने लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा उसमें इनकम भी हो रही है। जैसे कहते हैं ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इससे आया है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आज हमारे हिंदुस्तान की वजह से आज लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इसमें मिला है, लेकिन उन्होंने स्टडी कितनी करी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या उसने किसी कहीं से एक शिविर अटेंड कर लिया 4 दिन का 5 दिन का 1 महीने का और फिर वो खुद अपना सिखाने लग गया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनर से आप सीख रहे हैं वो जरूरी है। यूट्यूब में भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, क्या वो प्रॉपर ट्रेनर है, क्या उसने सही दिशा में कर रहा है, कैसे है। देखो हर चीज, अगर हम सिंपल सा एक लेडी है, हम दोनों लेडीज बैठे हुए हैं, एक मेकअप भी हमने सीखना है तो हम ऐसे ही नहीं सीख लेंगे यूट्यूब में जाके, है कि नहीं?
1: बिल्कुल,
0: राइट। तो ये तो आपका शरीर है जिसके बिना कुछ भी नहीं है। आज सब कुछ मुझे कौन दे रहा है? शरीर दे रहा है ना। तो आपने अगर यूट्यूब में देखना है बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, मैं उनको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, लेकिन अपना पढ़ाई पहले पूरी करो। अगर हम मेकअप के बारे में पूरा स्टडी करते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं अपने फेस में, सही कह रहे हैं? नहीं कह रहे?
1: बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: जब आप मेकअप को स्टडी करके अप्लाई कर रहे हैं तो आप जिसको भी अपना योग गुरु, क्योंकि जिससे भी आप सीखेंगे वो आपका योग गुरु बनेगा, तो उसको भी आप पूरा स्टडी करिए और जरूर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन लिया है। इनफैक्ट कोरोना में सबसे ज्यादा इसका हाइप हुआ था। अगर कोरोना में अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो हम लोग सब कनेक्ट ही नहीं होते।
1: बिल्कुल सही कहा। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और ये कंफर्म हो गया कि अगर योग के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं हुई किसी को तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि योग करने का तरीका आप गलत अपना सकते हैं। ठीक है, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी योग फॉलो करना चाह रही है तो उनके लिए कोई ऐसा आसन जो प्रॉपर वो कर सके?
0: बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत बड़ा मिथ है, एक मिथ्या है कि प्रेग्नेंट लेडी को योगा नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट आजकल की 21st सेंचुरी की जो डॉक्टर्स है, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो स्पेशली योगा कराते हैं कि जैसे वेट फालतू का गेन ना हो। हमारे टाइम में तो देखिए इतना ब्लूमा हो जाता था, इतने मोटे ताजे हो जाते थे। आजकल के जैसे ही बेबी हो, हमारे टाइम में तो देखिए इतना ब्लूमा हो जाता था, इतने मोटे ताजे हो जाते थे। आजकल के जैसे ही बेबी होता है वापस शेप आउट हो जाते हैं। हम यही सोचते हैं बेबी आया कहाँ से, कहाँ गया, क्या हुआ, राइट? जो योगा प्रेग्नेंट लेडीज को कराई जाती है वो उसी उद्देश्य से कराई जाती है कि उनके पूरे शरीर में एक्स्ट्रा मास ना आए। और उसके प्रॉपर ट्रेंड योगाचार्य होते हैं, उन्हीं से ही आपको करना चाहिए। इसको बहुत एम्फसाइज करके मैं आपको कह रही हूँ। और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मैं जरूर कहूंगी, ध्यान जरूर करिए। आपका बच्चा गुस्से वाला नहीं होगा, रात को बहुत प्यार से सोएगा। आप अगर गुस्सा करेंगे, आपको पता ही है गीता में आपने सुना ही है, अभिमन्यु ने गर्भ से ही सीखा था चक्रव्यूह को के अंदर जाना, राइट, उसका तोड़ना,
1: है ना?
0: तो उसने निकलना नहीं सीख पाए थे, तो वो उसने कहाँ से वो ज्ञान सीखा था? माँ के गर्भ से। आज अगर माए इस चीज को, योग और ध्यान को अपनी जीवन शैली प्रेगनेंसी में बनाती है, तो मैं आपसे कह सकती हूँ हिंदुस्तान का बहुत ही खूबसूरत तीव्र बच्चा आप अपने हिंदुस्तान को देंगी।
1: क्या बात है, मतलब प्रेगनेंसी में योग जरूरी है, जरूर करें। मैम एक दो आसन आप मेंशन कर दीजिए जो महिलाएं कर सकें।
0: देखिए जो आसन हैं, हर प्रेगनेंसी का अपना अपना अलग अलग होता है।
1: ओके,
0: हर बॉडी अपनी होती है। तो मैं फिर से आपसे ये बात जरूर कहूंगी, योग का जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, बिना अपने योग इंस्ट्रक्टर और डॉक्टर की कंसल्ट के बिना बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपको फिर कहूँ कि अभी मैं कोई आसन बता दूं और वो उस लेडी के बॉडी के लिए इम्पैक्ट ना हो, वो ठीक नहीं रहेगा। ध्यान में जरूर फिर से कहूंगी, आप अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, यूट्यूब में श्री श्री रविशंकर जी की आवाज में बहुत हिंदी इंग्लिश हर प्रकार के ध्यान है, आप उस ध्यान को बैठ के करिए। आप अपना जितने प्राणायाम से, हाँ कपाल भाती नहीं, क्योंकि वो पेट पर इम्पैक्ट करता है।

0: राइट
1: जी।
0: तो इसलिए ध्यान और प्राणायाम भी जैसे बताया आपको, वो भी आप प्रेगनेंसी के अनुसार करेंगे। जैसे अनुलोम विलोम में या नाड़ी शोधन प्राणायाम में वो बहुत ही रिलैक्सिंग होता है प्रेगनेंसी में, और साथ ही साथ जब आप ध्यान करते हैं आप देखेंगे आपका पूरा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी, और मुझे लगता है बहुत हेल्प मिलेगा हमारी उन महिलाओं को जो फिलहाल में गर्भवती हैं और योगा फॉलो कर रही हैं या करना चाहती हैं। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि वो महिला जो जॉब भी करती हैं साथ में घर भी संभाल रही हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो खुद के लिए योग को टाइम दे पाएं। तो हमारा यही सवाल कि आप कोई ऐसा योग बताएं जो बड़ी आसानी से कम टाइम में वो कर लें और खुद को हेल्दी भी रख पाएं।
0: बहुत अच्छा सवाल है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए वो भी काम करते हैं भाई, क्या बात है, उनको भूल गए क्या?
1: बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं, बिल्कुल करते हैं, पर मैंने महिलाओं को इसलिए मेंशन किया
0: क्योंकि हम दो महिलाएं बैठे
1: ये बहुत अच्छी बात आपने कही।
0: देखिए चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप अगर कार्य क्षेत्र में, मैं एक डेक्स योगा लेती हूँ जो श्री श्री रविशंकर जी ने इनफैक्ट 21 जून में डेक्स योगा यूएन में ली थी एंड वो आप जैसे अपने आप जॉब में बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हुए हैं, आप देखिए कि जितने जॉब वाले जो कंप्यूटर में जो काम करते हैं उनको नेक के ऊपर की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, सर्वाइकल है, शोल्डर जैमिंग है, हेडेक है, ये ऊपर के प्रॉब्लम्स उनके लाइफस्टाइल में बहुत आ रही है। बिकॉज या तो हम लगातार बैठे हुए हैं और अपना कंप्यूटर देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या अपना नेटवर्क का काम कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को कहूंगी आप अपने कुर्सी में बैठे बैठे कुर्सी हुआ करिए ना, आपको जैसे ही समय मिल रहा है हर 2 घंटे बाद अपना नेक मूवमेंट करिए, अपना शोल्डर मूवमेंट करिए, तो आपको इन सब चीजें आपके बॉडी के अंदर डेवलप ही नहीं होंगी। बाकी जब शाम को महिलाएं अपने काम से वापस घर आती हैं, आधा घंटा अपने आपको जैसे पुरुष देते हैं वैसे आप भी दीजिए, लेकिन मैं फिर कहूंगी अपने शरीर के अंदर डेवलप हो ही ना तो क्यों नहीं हर 1 से 2 घंटे बाद एक तो चेयर से उठो, हल्का सा मूवमेंट करो, जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, नेक रोटेशन है, शोल्डर रोटेशंस हैं, दाएं और बाएं अपने ले जाना, अपनी आंखों का रिवॉल्विंग कराना, ये सब चीजें हमारे बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में या हेडेक वाली, आप देखेंगे आजकल लोगों को माइग्रेन बहुत हो रहा है
1: जी,
0: सर्वाइकल बहुत हो रहा है, क्योंकि आजकल हम लोग नेट के साथ इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स आज बहुत आम हो चुकी हैं। तो उसके लिए मैं ये जरूर कहूंगी हर 1 से 2 घंटे के बीच में जहां आपको लगता है कि मेरे पास 5 मिनट है तो उसमें अपना इंस्टाग्राम की लाइक्स मत चेक करो, अपने हेड को रिवॉल्व कर लो, शोल्डर रिवॉल्व कर लो।
1: ओके, बहुत ही छोटी छोटी चीजों को आपने बताया कि इसे भी फॉलो करके हम अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि योग करते वक्त कभी भी खुद को थकाना नहीं चाहिए, तो ये बताइए कि एक आसन कितने टाइम का होना चाहिए?
0: योग में थकावट है ही नहीं।
1: अरे वाह,
0: योग में थकावट ही नहीं है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो एक्सरसाइज और योगा में फर्क है
1: जी,
0: सूर्य नमस्कार योग भी है, सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज भी है। आप फास्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज का रूप है, आप उसे मध्यम गति और स्लो और ध्यानस्थ कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, वो योग है। सिंपल, योग इज नॉट एन एक्सरसाइज, योग एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं है, योग योगी है। अगर आप उसे फास्ट करते हैं तो वो व्यायाम बन जाता है, उसमें आप थकते हैं। आप अगर योग करते हैं अपने श्वासों के साथ, योग है मिलन आपका मन श्वास और आपके शरीर का और आपकी भावनाओं का, इन 4 का मिलन होता है, और जब ये 4 जब चीजें हमारे 4 स्तर हमारे जीवन के मिल जाते हैं तो कभी भी थकावट आती नहीं, उल्टा आप थके हुए हैं और आप इसे कर रहे हैं आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, ये आपको मैं गारंटी देती हूँ।
1: आपने गारंटी दे दी, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब वो योग कर रहे होते हैं एक ही योग को काफी टाइम तक फॉलो कर रहे होते हैं।
0: देखिए सूर्य नमस्कार जैसे कहा जाता है, अगर देखा जाए तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, 12 आना 12 जाना, राइट
1: जी।
0: तो उसे अगर आप कई लोग 108 तक कर लेते हैं, मैंने भी कई बारी करा हुआ है पुलिस ट्रेनिंग में, अगर हम उसे 108 बारी कर रहे हैं लेकिन उसे हम सहज भाव से कर रहे हैं आप नहीं थकेंगे। मैं फिर कह रही हूँ योग में आप तब थकते हैं जब उन आसनों को आप तेज या तीव्र गति से करते हैं, चाहे वो कोई भी आसन हो, आसन वो एक्सरसाइज में पलट जाता है जब हम उसे फास्ट करते हैं। जब आसन हम कर रहे होते हैं वो श्वासों के संघा में जब करते हैं, हम कभी भी योग से थकेंगे नहीं, ये बात पक्की है।
1: ओके, तो योग को कभी भी फास्ट ना करें।
0: नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, किसी ने अगर उसे एक्सरसाइज के रूप में करना है, आपका सवाल था कि योग से हम थक सकते हैं,
1: हाँ।
0: हम योग से थकते नहीं हैं, हम एक्सरसाइज से थकते हैं।
1: ओके
0: ओके, देयर अ डिफरेंस, फर्क है. जो एक्सरसाइज है, जैसे मैंने बताया ना, सूर्य नमस्कार एक चीज है जो सबको पता है.
1: हाँ जी.
0: जब हम सूर्य नमस्कार फास्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज हो गई. जब हम सूर्य नमस्कार को अपने श्वासों, मन और अपनी भावनाओं के साथ, अपने शरीर के साथ कर रहे हैं, तो उसमें आप नहीं थकेंगे. आप देखिए 108 सूर्य नमस्कार करने वाले लोग नहीं थकते हैं. वो कहते हैं पता ही चला 40-45 मिनट में हो गया, क्योंकि वो अपने ही शरीर के संघा में कर रहे हैं. और वही आप अगर 15 बारी फास्ट करेंगे आप थक जाएंगे.
1: तो ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया मैम ने. अभी ये बताइए हमें कि वजन बढ़ाने घटाने को लेके योग कितना फायदेमंद है, क्योंकि अक्सर जब हमें वजन घटाना होता है, बढ़ाना होता है, तो हमारे दिमाग में सीधा आता है कि हम जिम ज्वाइन कर लें.
0: नहीं, देखो जिम में क्या होता है, वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है. आप जिम छोड़ोगे आपका वजन बढ़ जाएगा, योग छोड़ेंगे आपका वजन नहीं बढ़ेगा. बहुत बड़ा डिफरेंस है, बता रही हूँ आपको मैं यारी बात, बहुत बड़ा डिफरेंस है. आप देखिएगा जो लोग रेगुलर जिम कर रहे होते हैं, शादी करते हैं और शादी के बाद ब्लूम अप हो जाते हैं, एकदम गुब्बारा बन जाते हैं.
1: बिल्कुल सही कहा.
0: क्यों, वो कहते हैं, मेरे सामने बहुत ऐसा एग्जांपल्स हैं, इसलिए आपको मैं बहुत गारंटी से वाली बात कह रही हूँ. जो लोग रेगुलर योग कर रहेंगे और वो छोड़ देते हैं, तो उनकी बॉडी में कभी भी मोटापा इतनी तेजी से नहीं बढ़ता है. क्योंकि योग जो है आपको वजन भी घटाता है, आपका शेप आउट करता है. बॉडी की शेपिंग जो होती है वो योग ही देती है. जो आप कहते हैं ना कि शेप आउट बॉडी अच्छी लगती है, तो वो शेपिंग जो होती है, हमारे स्ट्रेचेस जो होते हैं जो हम योग में करते हैं, उससे हमारी बॉडी शेप आउट भी होती है, वजन भी हमारा कम होता है. अगर आपने वजन कम करना है, अपने एप्स बनाने, आप 100% मैं निवेदन करूंगी आप लोग सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दीजिए. आपकी बॉडी के एप्स पूरे के पूरे बहुत बढ़िया बनेंगे. आपको सिक्स पैक बनाने के लिए आपको पैसे खर्च करके जाने की कोई जरूरत नहीं है. अपना मनी है, खूब मेहनत से कमाते हो, बढ़िया से उसे एंजॉय करा करो.
1: क्या बात है, मैं भी आज से सूर्य नमस्कार शुरू करने वाली हूँ. और बहुत ही अच्छा लगा मैम से बात करके. बहुत सारे वीडियोस हम ऐसे देखते हैं फेस योग का, तो इससे कितना फायदा मिलता है हमें?
0: मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपको मैं कैसी लग रही हूँ?
1: बहुत सुंदर मैम. लग रहा है योग टीचर है आप.
0: हाँ, तो मैंने कभी भी अभी तक, मैं 50 इयर्स अभी नवंबर में मेरे कंप्लीट हुए हैं, मैं 51 रनिंग हूँ, मैंने अभी तक फेशियल नहीं कराया.
1: ओ माय गॉड.
0: तो मेरे ख्याल से मेरे स्किन को अभी तक किसी पार्लर ने छुआ है. नो पार्लर हैज टच माय स्किन. अगर आप कहोगे मैं होम रेमेडीज करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, हाँ मैं योग करती हूँ, सुदर्शन क्रिया करती हूँ, ध्यान करती हूँ, वो मेरा नियम है, उसके बिना मेरा जीवन नहीं है.
1: जैसा कि मैं आपको देख पा रही हूँ, मेरी जगह अगर कोई और भी होता, उसे यही लगता काफी फेशियल वगैरह कराती रहती है हर मन. और बहुत ग्लो है आपके चेहरे पे, मुझे नहीं पता था योग में इतनी ताकत.
0: कोई क्रीम भी नहीं लगाते हैं, आप मेरी स्किन टच कर सकते हो, अभी तक किसी ने करी नहीं है.
1: चलिए, किसी ने नहीं किया, मैं बचा लेती हूँ, मैं भी नहीं करूंगी. पर मुझे बिलीव हो गया और काफी योग में बहुत ताकत है, आपको देख के ऐसा लग रहा है. मैम, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे हम मनाते हैं, तो इसको लेके क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपके साइड से?
0: बिल्कुल, पूरा मैं कहूँ पूरा विश्व इसमें तैयारी कर रहा है. मुरादाबाद पूरा गेड अप है, हर जगह योग हो रहा है, हर ट्रेनिंग स्कूल्स में, हर हमारे यहाँ पर पुलिस के 7 ट्रेनिंग स्कूल्स हैं. बस इसमें एक माइनस पॉइंट होता है, क्योंकि हमारे नॉर्थ साइड है, गर्मियाँ बहुत ज्यादा होती हैं, तो स्कूल्स हमारे बंद होते हैं. लेकिन फिर भी स्कूल्स वाले पूरा 21 जून को, जैसे फोन कई सारे आए हैं कि 21 जून को मैम आपने आना है, योगा कराना है, तो पूरा का पूरा गेडअप है. रेगुलर ये सब चीजें चल रही है. इनफैक्ट मैं तो मई से गेडअप हो रही हूँ. जब भी छुट्टियाँ 27 मई को शुरू हुई थी, तब से मेरा योगा का शिविर नियमित रूप से चल रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चों के हुए चाहे वो बड़ों के हुए. एक भी हफ्ता मेरा अभी तक खाली नहीं गया है. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आजकल यंग यूथ का चल रहा है, उसके पहले 18 साल से ऊपर का था. तो पूरा 27 मई से अब तक हर दिन हर समय किसी ना किसी वर्ग को लेके हम योग करा रहे हैं.
1: हाँ जी मैम, ये बता दीजिए हमारे श्रोताओं को कि अगर 21 जून को कोई भी आपके शिविर में शामिल होना चाहता है तो कैसे हो सकता है?
0: देखिए, सबसे बड़ा इवेंट जो होते हैं एक गांधी पार्क में हो रहा है, जो हमारे विधायक जी करवा रहे हैं. एक हमारा जो होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होता है, डीएम सर उसे करा रहे हैं. आप लोग वहाँ पर कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी मेरी सुबह की शुरुआत जो होगी 5:40 से पुलिस लाइन में होगी, वहाँ पर पुलिस पूरी करती है. लेकिन जो पब्लिक के लिए होगा, ये दो जगह है, आप वहाँ पर कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. डीआरएम सर का रेलवे स्टेडियम में भी होगा 6:30.
1: ठीक है, तो हमारे दोस्तों को अगर ज्वाइन करना है, मैम ने बहुत सारे तरीके बताए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं. मैम, आजकल जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हर घर में कोई ना कोई नशे का सेवन करता रह रहा है, और इस वजह से फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है. तो कोई ऐसा योग, कोई ऐसा आसन जिसको अपना के लोग नशा मुक्त हो सके?
0: ये सवाल जो है आज के जमाने का सबसे अनिवार्य सवाल है जो आपने अंतिम लम्हे में पूछा है।
1: जी,
0: इस चीज पर मैं

0: देख सकते हैं। इनफैक्ट लोग मुझे तोहफे में अपना नशा ही देते हैं वापस मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज मांगती हूँ कि अपना नशा मेरे को सौंप दो और खुद से नशा कर लो अपने आप का। योग इसमें बहुत बड़ा योग के द्वारा ही छुड़वाया है। अगर आप ये बात पूछें क्या टेक्निक है, तो योग और ध्यान के द्वारा ही छुड़वाया है, यहाँ तक कि ड्रग्स तक छुड़वाया है। एक बात ध्यान रखना, आज मैं बोलना चाहूंगी आप सभी श्रोताओं को, पैसा आपका है, शरीर आपका है, परिवार आपका है, उसको आग लगा के जला दो या उसको अपने जीवन में खूब उत्साह के साथ जी लो। निर्णय आपका है, करना क्या है वो आपका निर्णय है। इनफैक्ट अभी एक वकील साहब हैं, उन्होंने एक साल पहले उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा छोड़ दीजिएगा, तो वो मेरे पास स्पेशली मिलने आए और उन्होंने कहा मुझसे कि मैंने अपना शराब छोड़ दी है और आपने जो कहा था कि उसको बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट डालो और अपनी बिटिया के नाम कर दो, तो उन्होंने बताया 60,000 रुपए मैंने साल के बचाए हैं शराब ना पी के।
1: क्या बात है।
0: ये फेसबुक में उनका लाइव वीडियो है, आप सुन सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपके पास, हमारे हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है, सबसे बड़ी बात है हमारी आदतें हिंदुस्तान की बहुत खराब हो चुकी हैं। आज गांव का बच्चे से लेके शहर के मेट्रो सिटीज तक ये नशा किसी न किसी रूप में, जैसे आपने कहा, हमारे घर के अंदर एक जड़ता के रूप में आ चुका है, दीमक लग रही है हमारे भविष्य को। आओ योग करो, आओ खुद से मोहब्बत करो, खुद को समय दो और अपने मेहनत की कमाई को यूं ही बेकार मत जाने दो। शरीर भी खराब होगा, पैसा भी खराब होगा। अभी सिर्फ पैसा मैंने जोड़ा है जो आप खर्च कर रहे हो नशे पर, अभी डॉक्टरों की फीस नहीं जोड़ी है, याद रखना ये बात।
1: क्या बात है मैम, बातें बहुत अच्छी करती हैं और बहुत प्यारी प्यारी जानकारियां हमारी श्रोताओं तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जैसा कि मैम ने कहा कि योग से हर चीज पॉसिबल है, यहाँ तक कि आप नशा मुक्त हो सकते हैं। और एक छोटी सी स्टोरी उन्होंने बताई है कि 60,000 रुपए किसी ने नशा छोड़ के सेविंग किया अपनी बेटी के लिए। इससे इंस्पायर हो सकते हैं आप लोग, योग को अपनाइए, सभी से रिक्वेस्ट है। मैम जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपका कोई फेवरेट आसन जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी?
0: हाँ है, बिल्कुल है, जैसे सूर्य नमस्कार है ना, ऐसे हाँ? पद्म साधना है। अच्छा। हमारे आटो लिविंग की है पद्म साधना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ आसन्स है, जैसे कमल का फूल होता है वैसे ही हम भी खेलते जब वो आसन्स करते, वो मेरा दी फेवरेट है। उसके अंदर इतना फेवरेट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ आसन्स है, और उसको जब करने से हमारे इंटरनली एक्सटर्नली हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारा पूरा शरीर, एनर्जी इतनी हाई रहती है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट आइकॉन थी 17 में 19 में 22 20 में, एंड मैं नशा मुक्त भारत कैंपेन की भी रही हूँ, अभी भी हूँ, तो मुझसे पूछा जाता था कि आपकी एनर्जी इतनी हाई कैसे रहती है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली एंड ओनली दिस पद्म साधना एंड सुदर्शन क्रिया। वो इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जब आप उसे कर लेते हैं ना, आपको लगता है कि आप बस आप पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और बहुत सिंपल आसन है जिसको कंपाइल करा है श्री रविशंकर जी ने एक साथ, और उसको हम लोग रेगुलर करते हैं, फेवरेट से मैं उन्हें, इट्स दी फेवरेट।
1: पद्म साधना सुदर्शन क्रिया,
0: या
1: ओके, अगली बार मैं भी फॉलो करूंगी सेम आसन। मैम एक लास्ट मैसेज जो हमारे पूरे मुरादाबाद की पब्लिक को देना चाहेंगी योग को लेके।
0: जो मैंने शुरुआत में कहा था, मैं एंड भी उसी स्तर से करना चाहूंगी।
1: बिल्कुल,
0: योग को अपने जीवन शैली में अपनाइए, खूब मुस्कुराइए। मुस्कुराहट कहीं खो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, क्या करोगे लंबा चेहरा ले जाके? योग करो, अपने को सबसे पहले सुबह उठ के खुद को मुस्कुराहट दो। योग एक जीवन शैली है, फिर से कह रही हूँ, एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं है। योग कैसे मैं अपने जीवन को जीता, योग एक पथ है, अ वॉक ऑफ लाइफ है। जस्ट वॉक इट, जस्ट लव योर सेल्फ, बी ब्यूटिफुल विद योर सेल्फ, अपने से प्यार करो, खुद से खूबसूरती से ध्यान दो और योग को शत प्रतिशत अपनाओ। 24 घंटे में से आधा घंटा आपका शरीर का अधिकार है आपके साथ रहने का, इतना समय तो आप सब अपने आप को दे ही सकते हैं और देना चाहिए और गर्व करना चाहिए। आज 21 जून हमारे हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को दिया है, यही सोच के कर लो कि भाई हमारा ज्ञान है, हमारा विज्ञान है, तो क्यों नहीं उसको अपने जीवन शैली में अपनाएं। आओ खुद से प्यार करें, खुद को मुस्कुराहट दें और हमारे आसपास जितने भी हैं उनको भी मुस्कुराहट फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।
1: क्या बात है, खुद से प्यार करें, मुस्कुराते रहें और अपनों में मुस्कुराहट बांटते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 882

0: 6213131।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित
1: रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हे नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, हमारी जो सोच है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जिंदगी को, लाइफ को मस्त और झकास बनाने के लिए, है ना रीना? अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो सब कुछ हम अच्छे
1: अच्छा
0: से कर पाएंगे, अच्छा ही होगा और अच्छा भी कर पाएंगे, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो देखिये, ये जो प्रोग्राम है ना ये सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है, और चाहे आप विमेन्स हैं या फिर आप मेन्स हैं, आप बच्चे हैं या आप युवा हैं, ये जो कार्यक्रम है वो आप सभी के लिए है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी राय अपने विचार रख सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। बिल्कुल, हम आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो रीना तुम कैसी हो पहले ये बताओ।
1: आनंद मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ। आई होप कि तुम बहुत अच्छे
0: हो।
1: अच्छा
0: हूँ यार मैं। और देखो दोस्तों, मैं और रीना आए हैं चटपटी बातें लेकर। तो रीना, हमारे शो का नाम है सोच बदलो, ये डेली हम प्रसारित करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्या मानना है, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा या नहीं?
1: अरे बिल्कुल, अगर हम सोच बदलेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा और हमें जो आसपास सुन रहे हैं उनकी भी सोच बदलेगी, फिर वो एक दूसरे तक बताएंगे कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो आज सोच बदलू का जो टॉपिक है वो है भैया ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बचें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक पे बात करना। तो जितने भी हमारे इस वक्त दोस्त, हमारे प्रिय मित्र रेडियो से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद में रीना वापस आएंगे। उसके बाद हम इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से, धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं। तमाम जानकारियां हैं आज आपके लिए इस प्रोग्राम में, तो आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए।
0: श्रोताओं,
2: आई लव यू।

0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो श्रोताओं, आज हम मुद्दा लेकर आए हैं आपके लिए कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। रीना, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया है, हर इंसान जो है डिजिटली आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को जो है अब डिजिटली ग्रो करना है, मतलब सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल तो लेने देने का सीन भी ऑनलाइन हो गया। और इसी बीच तमाम सारे जो हैकर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनकी भी कतार मार्केट में बढ़ती जा रही है, मतलब
1: बहुत ज्यादा बढ़ रही है
0: जी। जो फ्रॉड के मामले रही ना, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई सीन या कोई कहानी या किस्सा है तुम्हारे साथ या कभी हुआ हो? हाँ तो रीना, वही मैं आपसे पूछ रहा था, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो?
1: देखो, मैं किसी और से किसी और की कहानी बताने से पहले मैं अपनी बता देती हूँ।
0: बता, बिल्कुल बताया।
1: एक्चुअली ये हुआ ना कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, कपड़े बहुत खरीदती हूँ,
0: सभी करते हैं।
1: हाँ, तो मेरे को ना, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा बहुत अच्छे से सूट के, जो उन्होंने अपना खुद का पेजेस बना रखा था कि यहाँ से सूट ऑर्डर करो और कम दाम में आपको अच्छे सूट मिलेंगे। तो उन्होंने ऑफर डाला था कि 500 में आपको 2 सूट मिलेंगे, अगर आप 1000 डालते हो तो आपको 5 सूट मिलेंगे। तो मैंने सोचा वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने उन्हें मैसेज वगैरह किया, तो मैंने जो भी सूट लेने थे मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको इतने इतने पेमेंट करने पड़ेंगे। मैंने पेमेंट कर दिया 1000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरा ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम चेक करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपने जो ये 1000 रुपए पेमेंट कराया ना, तो ये हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा, आपको 8000 और करने हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं वही समझ गई, मैं क्या, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पर।
0: तो मतलब तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो गया ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: दोस्तों, अब देखिए, रीना के साथ तो जो है धोखाधड़ी वाला सीन हो गया, आपके साथ ना हो आप क्या कर सकते हैं? और अगर आप इस चीज का शिकार होते हैं तो आप कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कहाँ पर जाकर आप जो है इसकी सुनवाई करा सकते हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। श्रोताओं, सबसे मजे की बात पता है क्या है कि आजकल ना जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड करते हैं लोग, जो स्कैम करते हैं मार्केट में, इतने इनके जो तरीके हैं ना, बहुत सारे बदल गए, एकदम आपको जेन्युइन लगता है। रीना, जैसे केवाईसी अपडेट के नाम पर आपको कॉल आ जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: कभी
1: बिल्कुल।
0: आपको व्हाट्सएप पे कोई अचानक से लिंक आ जाएगा,
1: कभी बोलेंगे बैंक वाले, हाँ, बोल रहे हैं,
0: कॉल्स आ जाती हैं। और आजकल तो शादी के कार्ड भी आ रहे हैं, ऐसा लगेगा किसी ने भेजा है, क्लिक करोगी तो पैसा
1: पैसे कट जाते हैं,
0: ऐसा वाला सीन भी चल रहा है। तो दोस्तों, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और इसी बात को जो है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक अंतराल का समय है, म्यूजिकल ब्रेक भी लेंगे, अंतराल का समय है, और उसके बाद आपको सुनवाएंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, और बचने के लिए आपको कहां कैसे शिकायत दर्ज करानी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे,
0: ये आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलिए एक छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: श्रोताओं, एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रीना और मैं प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं सोच बदलो, और इस प्रोग्राम का नाम ही इतना प्यारा है, तो ये सोचिए प्रोग्राम कितना प्यारा होगा। वेल, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मैं और रीना, आपसे ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक खास जानकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ एक छोटा सा आपके साथ एक प्रोग्राम साझा कर रहे हैं। आप इसको भी सुनिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम थोड़ी देर में मिलेंगे, मैं और रीना। क्यों रीना, दोस्तों बहुत जरूरी है, देखिए सही सोच के साथ साथ सही जानकारी का होना भी जरूरी,
1: बहुत जरूरी है।
0: तो आइए सोच बदले प्रोग्राम के अंतर्गत सुनते हैं ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी।
5: आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है, उससे, पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रुपए में दे रही है,
6: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रुपए का है।
5: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं? फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, ना तो डिलीवरी आई है, ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले, छात्र और गृहणियां होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है, लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना, वो जितने शातिर है ना, आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
0: तो श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये जानकारियां कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगी। और इसी तरह के प्रोग्राम हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि भैया हमारा जो समुदाय है, हमारा जो कम्युनिटी है, हमारी जो मुरादाबाद की जनता है, उसको अवेयरनेस मिले और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी सोच भी बदले। जब हम सोच बदलेंगे तो हमारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी, क्यों रीना?
1: बिल्कुल। और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो भी आज से बंद कर देंगे।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग तो बंद मत करो यार रीना, लेकिन बस ऑनलाइन ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है ना। शॉपिंग तो मतलब आप कर सकते हो, लेकिन हाँ कोशिश करो लोकल फॉर वोकल को ज्यादा बढ़ावा मिले तो बेहतर है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ऑनलाइन तो आप करिए खरीदारी, लेकिन ऑफलाइन भी करिए, क्योंकि लोकल फॉर वोकल बहुत जरूरी है। अपने आसपास के प्रोडक्ट को अगर हम ही नहीं खरीदेंगे तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे बढ़ेगी।
1: लेकिन ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम से शॉपिंग करते हैं उसको कम करेंगे,
0: कम करें आप ऑनलाइन पे। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अगर आपको कोई लिंक आ रही है, आपको ऑफर दिख रहा है, तो इन चीजों पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए श्रोताओं, अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी अपनी बातों को विराम देते हैं और उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो आपसे जाने की अनुमति देंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं और रीना आपके साथ छोड़ के जाएंगे। प्रोग्राम चल रहा है सोच बदलो, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत ही अच्छा ये गीत, और आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम, जिसे लेकर आज हाजिर हूँ मैं आनंद, और साथ में आरजे रीना। तो रीना, फाइनली दोस्तों के साथ बातचीत करते करते कैसे हमारा समय बीत गया हमें पता ही नहीं चला है ना।
1: बिल्कुल भी नहीं पता चलता
0: जी
1: है।
0: हाँ, तो अब बस जाने का समय है, लेकिन बस छोड़ के जाएंगे कुछ खास बातें आपके लिए। देखिए दोस्तों, याद रखिए, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो कोई भी फ्रॉड आपका नुकसान नहीं कर सकता है ना, और ना ही कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। तो बस आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक मत कीजिए। कोई भी दोस्त अगर आपको फेक आईडी या फ्रॉड आईडी बनाकर आपसे पैसे मांगता है, कोई लिंक आपको भेजता है, तो आप उन चीजों से जरा बच कर रहिए। कुछ भी इस तरह की आपके साथ बातचीत होती है या कोई भी ऐसी हरकत होती है, तो आप जो है पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके जरूर शिकायत दर्ज कराएं, क्यों रीना।
1: और जिसके नाम से आईडी बनाकर आपको मैसेज किया जा रहा है, उस आदमी को भी जरूर सूचित करें इसके बारे में कि आपके नाम से आईडी बनाकर पैसे मांगा जा रहा है,
0: पता चल सके ना बिल्कुल साथ क्या हो रहा है। हाँ। तो दोस्तों आज के सोच बदलो में बस इतना ही। अपनी सोच बदलिए, सतर्क रहिए और सेफ रहिए, और ऐसे ही सुनते रहिए
1: एफएम मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो,
1: बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए जी, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय
1: बाय गाइस।
2: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
3: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
2: अरे वाह।
3: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
2: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज AI, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सग्रम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
4: ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
6: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
8: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवास, सीए, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
7: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6। और हम फिर से लेकर आ गए आप सभी के लिए महिला मंच। आपको ही पता है कि रीना अकेली नहीं आती है मेरे साथ।
8: आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी। और बहुत ही खूबसूरत है हमारे शो का नाम महिला मंच, और इस महिला मंच में हम फिर से हाजिर हो गए दोनों। हाँ जी रीना जी, और खुशी तो आपके साथ रहती ही है। तो दोस्तों, आज हमारा विषय जो है, आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही खास है, जहाँ हम बात करते हैं समाज और जिंदगी से जुड़े उन मुद्दों की जो घर से जुड़े होते हैं। आज का विषय हमारा है लड़कियों की जिंदगी बचपन से शादी तक।
7: बिल्कुल सही कहा तुमने। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही कोई लड़की 25 साल की होती है, घर परिवार और समाज की बातें शुरू हो जाती है। अब तो शादी कर दो, लड़की बड़ी हो गई है।
8: हाँ यार, ऐसा मैंने भी सुना है अक्सर आसपास में। धीरे धीरे ये बातें तानों में बदल जाती, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और लड़की भी सोच में पड़ जाती, क्या सच में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ शादी ही है।
7: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। आज हम समझेंगे कि एक लड़की की जिंदगी में बचपन, पढ़ाई, सपने, शादी और

0: शादी के बाद की जिम्मेदारियां किस तरह से बदल जाती हैं।
1: बचपन और सपनों की दुनिया। हर लड़की का बचपन भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी भी बच्चे का। वो भी सपने देखती है, डॉक्टर बनने का, टीचर बनने का, कुछ बड़ा करने का।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन कई बार समाज की सोच उसके सपनों को छोटा कर देती है। लड़कियों को अक्सर कहा जाता है, ज्यादा मत पढ़ो, आखिर शादी ही तो करनी है, घर का काम सीखो, यही काम आएगा।
1: लेकिन सच में ये तो कि हर लड़की को अपने सपने पूरे करने का हक है। अगर उसे सही मौका मिले तो वह अपने परिवार और समाज दोनों का नाम रोशन कर सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और अब हम बात करेंगे 25 साल और शादी का दबाव। महिला मंच में ही हम बात करते रहेंगे, बस श्रोताओं आप हमारे साथ बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। तो जैसे ही लड़की की एज 24 से 25 साल के आसपास होती है, घर घर में एक ही बात शुरू हो जाती है, अब इसके शादी कर दो। रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, सबकी नजरें लड़की की ओर और उनके परिवार पर होती हैं।
1: हाँ रीना, ये बात तो सही कह रही हो आप। कई बार तो ताने भी सुनने को मिलते हैं, अभी तक तो शादी हुई नहीं, लड़की घर में बैठी है। इन बातों से सिर्फ लड़की ही नहीं, उसकी माँ

0: एक घर छोड़कर उसे दूसरे घर में नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती है, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, नया माहौल। कई बार उसे हर छोटे बड़े काम के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ पूछ कर करना पड़ता है।
1: ये तो तुमने 100% सही बात कही है। ऐसे में लड़की को कई बार लगता है कि उसकी आजादी कम हो गई है, लेकिन अगर परिवार समझदार हो और लड़की को सम्मान दे तो शादी के बाद की जिंदगी भी खुशहाल और सुंदर हो जाती है। तो श्रोताओं, आप आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ यूं ही आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं लड़की की पहचान और आत्मनिर्भरता के बारे में। आज के समय में सबसे जरूरी है कि लड़कियां आत्मनिर्भर बने। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है, तो वह हर परिस्थिति में सामना कर सकती है।
0: एग्जैक्टली राइट रीना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। शादी हो या ना हो, लड़की की पहचान सिर्फ किसी की बेटी, बहू या पत्नी होना नहीं है, उसकी अपनी भी एक पहचान है, उसके अपने सपने हैं। और समाज को ये समझना होगा कि लड़कियां बोझ नहीं बल्कि ताकत होती हैं।

0: तो अब हम जानने वाले हैं समाज के लिए संदेश। समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लड़कियों को ताने देने के बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उन्हें पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का मौका देना चाहिए। अगर हम लड़कियों को सम्मान और बराबरी देंगे तो समाज भी मजबूत बनेगा।
1: तो दोस्तों, आज हमने साझा की एक लड़की की जिंदगी, बचपन से लेकर शादी और उसके बाद तक की कितने बदलावों से गुजरती हैं। जरूरत है कि हम लड़कियों को समझने, उनका साथ दें और उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका दें, क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं
0: और कल मिलेंगे हम सेम टाइम एंड सेम जगह।
1: तब तक के लिए साथियों, सुनते रहिए अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार
0: नमस्कार श्रोताओं।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर UKG तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, AI, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।

0: गुड वाली आफ्टरनून है आर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो आर्जेरीना के साथ हेलो फरमाइश शो में। तो आपने क्या करना है जी, हमें कॉल करना है, नंबर है 9837896896 पर कॉल करिए और अपना फेवरेट वाला गाना आप इंजॉय कर सकते हैं। गाना गाने के साथ साथ आप किसी का नाम लेना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने पसंद के एक गाना आप सभी को सुनवाती हूँ, क्योंकि बहुत प्यारा गाना है, व्हाट इज़ अ मोबाइल नंबर। उसके बाद आप सभी के जो फरमाइश है वो हम पूरा करेंगे और आप कॉल कर सकते हैं हमें, जल्दी जल्दी करिए जी।
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैं

गुड वाली आफ्टरनून है अर्जेरीना के साथ फरमाइशों में, और समय की बात करूं तो 5:20 हो चुके हैं। और श्रोताओं आपने क्या करना है, देखिए फरमाइश शुरू हो चुका है। अगर

0: कल वैसे भी कल संडे है, तो संडे को आपको मौका नहीं मिल पाएगा, इसीलिए सैटरडे का लुफ्त उठाना बिल्कुल ना भूले। और हमारा नंबर है 9837896896 पर कॉल करिए और अपना फेवरेट गाना एंजॉय कर सकते हैं। देखिए लेकिन हम ना आपके गाना तो फेवरेट वाले सुनते ही है। आज मेरे साथ कुमकुम है, सो आपकी इनकी आवाज से मैं रूबरू करवाती हूँ। हेलो कुमकुम।
1: हेलो रीना जी, कैसे हो आप?
0: मैं बहुत, तो तुम बताओ कैसी?
1: मैं भी बहुत बढ़िया।
0: बढ़िया
1: जी।
0: अच्छा,
1: क्या सुनाने वाले हो आप?
0: नहीं नहीं मैं सुनाती हूँ, मैं गाने ही हूँ और बातों की तड़का लगाती हूँ। साथ साथ आज मुझे तुमसे पूछना, क्योंकि हम श्रोताओं को तो चलाते रहते हैं, मैं सोचा आज मैं तुमसे पूछ लेती हूँ।
1: क्यों नहीं,
0: कौन सा है?
1: एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, बचपन को याद दिला देता है वैसे तो।
0: हाँ हाँ बताओ बताओ।
1: माधुरी दीक्षित का है वो सॉन्ग, चॉकलेट आइसक्रीम।
0: मेरी सहेलिया अब मुझे लगती है सारी पहेलिया, ये कौन सा मोड है उम्र का। देखिए फिलहाल मोड तो है, आपने कॉल करना है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। चलिए हम आपको अपने बचपन की तरफ आपके लेके चलते हैं, ठीक है? चलिए श्रोता ये गाना कुमकुम के रिक्वेस्ट पर सुनते हैं, जो कि इसका बहुत प्यारा है, और आप भी कॉल करते रहिए।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
2: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B, बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है अर्जेरीना के साथ। और मैं अकेली नहीं हूँ, आज मेरे साथ कुमकुम है। मैंने सोचा कि चलो तुम्हें भी हम रेडियो के शेयर करा ही देते
1: जी हाँ, क्योंकि ऑल लाइव एयर पे तो बहुत मजा आता है आप लोगों से भी बात करके और आपस में चुगलबंदियां करके।
0: हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो अपनी पसंद के तुम्हें गाना सुनकर कैसा लगा?
1: जी बहुत बढ़िया।
0: चॉकलेट आइसक्रीम है ना। वैसे उन लड़कियों के ना चटपटे, उनके ड्रॉअर में देखोगे ना तो रहते ही है। चॉकलेट हो गई। अच्छा तुमने वो
1: स्नैक्स
0: हाँ आम पापड़ खाई तुमने?
1: बहुत मेरा तो
0: खट्टे
1: फेवरेट था,
0: मतलब लड़कियों
1: अभी
0: के।
1: भी
0: अरे
1: मतलब मेरे हस्बैंड लाते हैं ना तो मैं खाती हूँ।
0: अरे क्या बात है जी। मतलब आम पापड़, ओ माय गॉड, बहुत प्यारा आम पापड़ होता है ना।
1: जी
0: सो हमारे श्रोता से बात कर लें हम?
1: हाँ जी जरूर।
0: चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, लग रहा है कि वो बिजी तो नहीं चले गए हैं। अच्छा कुमकुम बताओ कुछ अपने बारे में, तुम रेडियो पर आई, तुम्हें कैसा लगा यहाँ पर?
1: हाँ मुझे बहुत मज़े आते हैं ऑनलाइन तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यार हम लोगों से लाइव बात करते हैं और कभी कभी हम उनको कुछ जानकारियाँ भी देते हैं, जैसे कि गर्मी के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में।
0: अच्छा तुमने गर्मी का नाम लिया भी है ना, तो तुम बताओ मतलब गर्मी के नाम से क्या गर्मी में लेकिन हमारे अगले कॉलर से बात कर लेते पहले, हम अपने हमारी बातें तो चलती रहेगी। हेलो नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? क्या
2: मेरा नाम रिंकू, रिंकू
0: नाम है? अच्छा रिंकू जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया मैम, आप सुनाएं।
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? आपके बैकग्राउंड में जो रेडियो बज रहा है उसकी वॉल्यूम कम कर लीजिए। हाँ जी, आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? हाँ तू ठीक है जी, यही गाना हम आपको सुनवाएंगे। किसका नाम लेना चाहते हैं आप?
2: सूरज भाई है हमारे, बबलू भाई और मैं हूँ।
0: ठीक है जी, आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है
2: ठीक है मैम, थैंक यू।
0: ओके जी, चलिए श्रोताओं गाना एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच और करेंगे ढेर सारी बातें। और आपने कहीं नहीं जाना है, बस आरजेरीना के साथ कनेक्ट रहना है और हमें कॉल करते रहना है। नंबर है 9098373789688968।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने कि मेरी जिंदगी है तू। और कुछ गाने ना सच में बहुत बेहतरीन होते हैं। और आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हैं फरमाइशों में। समय की बात करूं तो 3:34 हो चुके हैं और आप भी चाहते कि गाना सुने, किसको डेडिकेट करें, किसका नाम लेना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं हमें। नंबर है 9837896896। चाहे आप घर पर है या फिर ट्रैफिक में हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो देखिए सफ़र में जब होते हैं ना तो अपने पसंद के गाने सुनते सुनते कब सफ़र निकल जाता है हमें भी नहीं पता चलता है। चलिए फिलहाल हम अगले कॉलर से बात करते हैं कि कौन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। और आपको भी पता है कि मैं स्टूडियो में अभी राइट नाउ की अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कुमकुम भी है। तो कुमकुम चलिए देखते हैं कौन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं।
1: ओके लीना जी, हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश
1: जी, मैम बताइए।
2: मैं नाजिया बोल रही हूँ, जिला मुरादाबाद
1: जी। नाजिया जी, क्या सुनना चाहेंगे आप?
2: दिल देता है जान
1: तुम्हें देंगे। ओए होए, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, किसको देने के लिए है? किसी का नाम लेंगे?
2: दरक्षा
1: को डेडिकेट। ओके, आपकी तरफ से सुनते हैं दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। थैंक यू मैम कॉल के लिए।
0: चलिए गाना एंजॉय करते हैं, यानी कि दरक्षा के लिए गाना है। दरक्षा अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो आपके लिए गाना डेडिकेट हो चुका है। नंबर है 9837896896 पर कॉल करिए और आप भी गाना एंजॉय कर सकते हैं।

दिन मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आती थी, क्योंकि इसी सिगरेट और शराब की वजह से मैंने अपने पापा को खो दिया। अपने पापा की तरह मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: आफ्टरनून है फरमाइशों में आर्जेरीना के साथ, और समय की बात करें तो 3:42 हो चुके हैं और मैं स्टूडियो में देखिए अकेली नहीं हूँ। आई नो कि आप डेली खुशी के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन खुशी और अखिल जी की आवाज आप सुनते हैं, लेकिन आज आप तीन तीन की आवाज सुनेंगे, एक अखिल जी, कुमकुम और रीना तो ऑलरेडी है। आई नो कि मॉर्निंग में नहीं आई थी, लेकिन शाम के टाइम आ गई, क्योंकि रहा नहीं जाता ना आपके बिना। काम भी इतना हो जाता है कि कभी कभी हमें डिले करना पड़ जाता है, हाँ ना अखिल सर?
1: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात कही। आज आपने वैसे पूरे दिन करा क्या है?
0: पूछो मत, मैं 7 बजे से स्टूडियो में हूँ।
1: 7 बजे से?
0: जी
1: 7 बजे, मतलब ऐसा कि आज सुबह इतनी जल्दी उठ गया?
0: उठाना कॉल आ गया था ना
1: सही है,
0: तो उठ के बस नहा के यही हूँ मैं।
1: लोग सैटरडे नाइट सेलिब्रेट करते हैं और आप सैटरडे मॉर्निंग?
0: हम क्या करें, हम स्टूडियो में एंजॉय करते हैं, यही मजा आता है।
1: आपको तो बहुत प्यार है,
0: श्रोताओं के साथ मजा आता है ना बात करके।
1: अच्छा,
0: आपको भी आता है? आप ऐसा मत बोलिए।
1: सुबह 7 बजे से बात कर रहे हैं आप श्रोताओं?
0: नहीं नहीं मैं बात नहीं करूँ, लेकिन काम बहुत ज्यादा करा है मैंने आज, इतना काम करा है कि बस अब
1: रोज ही आपको ऐसा काम मिले मैं तो यही प्रार्थना करूंगा।
0: चलो आपकी दुआ है आपके मुंह में घुस घी शक्कर। घी घी घी घी शक्कर।
1: थैंक यू थैंक यू।
0: आपने बोला कि आपको डेली काम मिलता रहे, तो मैं तो चाहती हूँ कि मुझे काम मिलता रहे और आगे मैं ऐसे ही बढ़ती हूँ।
1: बहुत बढ़िया,
0: तो अगले कॉलर से बात करते हैं।
2: हेलो फरमाइश।
3: हेलो फरमाइश, मैं बताऊँ?
2: जी सर बताइए, आप क्या चाहते
3: हैं?
2: जी सर, क्या सुनना पसंद करेंगे आज आप?
0: सर पहले तो आप अपने बारे में बताइए।
2: ओहो सर,
0: किसके पीछे जाना चाहते हैं सर आप?
2: सर किसके पीछे जा रहे हैं आप?
3: ये हमारे सब मिलने वाले हैं।
2: सर मिलने वाले?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाने की चॉइस करी आपने।
0: ठीक है ठीक है सर, हम आपको ये गाने सुनवाते हैं। सर गाना सुनवाते हैं आपको, बस आप भी कॉल करते रहिए, गाना सुनते रहिए। नंबर है 9837896896।
2: कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: जी गुड वाली आफ्टरनून है, आज जरीना के साथ और मेरे साथ अखिल जी हैं जो कि और कुमकुम भी है साथ में। सो, अभी टाइम की बात करूँ तो 3:53 हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो देखिए रेडियो ना, सात समंदर पार करने की जरूरत नहीं है आपको बल्कि आपको ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है और उसके लिए आपको करना है हमारे प्ले स्टोर पर जाना है और उस पर डालना है आपको FM मुरादाबाद 89.6, रेड कलर का आपको लोगो दिखेगा और आप उसे डाउनलोड करिए और हमारा रेडियो आप किसी भी कोने से हमें सुन सकते हैं, अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। चलिए फिलहाल तो हम अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो
6: हेलो हेलो फरमाइश सर, कैसे हैं सर आप?
5: हमारा प्यार भरा नमस्कार जी।
6: भी प्यार भरा नमस्कार आपको सर।
7: सर कैसे हो आप?
6: मैं तो बढ़िया हूँ सर।
7: सर आप तीनों आते हो प्रोग्राम में, चार जाते हो, काफी अच्छी बातचीत करते हो आप, मतलब काफी अच्छा फ्लो रहता है, सभी को पसंद आता है काफी।
6: धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज आप
7: मैं चाहता हूँ, रात को जो है ना मुरादाबाद आ रहा है वो होटल द्वारा दिन से बंद कर दिया गया सर, उसमें भी आइए आप तो काफी अच्छा रहेगा सर। हमारा मतलब
6: बहुत जल्दी आएंगे सर, उस पर बहुत जल्दी आएंगे, रात में भी आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे।
5: अभी थोड़ा काम के वजह से डिले हो रहा है सर।
7: आनंद सर और
6: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज पक्का सर, पक्का पक्का पक्का। आज बताइए आपके लिए कौन सा गाना प्ले किया जाए? ये हम आपके लिए गाना अगली बार चेंज करेंगे, मगर अभी आप बताइए जो आप गाना पहले पसंद कर रहे थे। ये गाना गाना गाना बहुत महंगा है इस समय, चांदी और सोने, आपने बहुत ही महंगा गाना सेलेक्ट किया है। बिल्कुल सही, तो आप आपने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे, चांदी का मोर, नहीं सोने का मोर और चांदी की डाल?
7: सर आपको रीना जी को और इन्हें उनके नाम बोल गया, आप तीनों को गाना डेडिकेट है, साथ में ये स्वार्थ से विजय राठौर हैं और मकसूद भाई हैं।
6: अरे अरे उनको भी हमारी तरफ से नमस्कार बोलिएगा
7: जी। सर थैंक यू, नमस्कार।
6: ओके सर,
5: और हमारे स्टूडियो में भी आपको आवाज आई जाती है कहीं ना कहीं से। चलिए गाइस हम कॉल गाने सुनवाते हैं आपको।

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है अर्जुरीना के साथ और अखिल भैया है मेरे साथ। इनको भैया सर मतलब कहते ना बच्चा है तू मेरा। अब इनको टैग हमने दे दिया है, सबको बोलेंगे बच्चा है तू मेरा।
1: बच्चा है तू मेरा। और बताइए रीना जी, और आज आपने और क्या क्या किया? हमारे लिसनर्स को सबको बताइए कि आप सुबह 7 बजे तो उठ गई थी।
0: हाँ,
1: उसके बाद से क्या?
0: नहीं उठी तो मैं 6 बजे थी, बट उठने के बाद मैं सोची थी, आज मेरा प्लानिंग था कि भाई कुछ भी हो जाए अब मुझे वॉक करना है, थोड़ा सा वेट कम करना है, ठीक है। तो
1: अच्छा,
0: मतलब मैं तो प्लानिंग था मेरा आज से कि कुछ भी हो जाए मुझे 5 बजे उठ के, पर 5 बजे नहीं उठी मैं, 6 बजे उठी। जैसे 6 बजे उठी तो मैं टहली वहली झाड़ू पोछा करा मैंने, उसके बाद सीधा कॉल आता है कि आपको स्टूडियो में आना है। मेरे वही तोते उड़ गए।
1: नहीं, वैसे एक तोता मैंने भी पाल रखा है, उसका नाम है तोता राम।
0: अच्छा।
1: चलिए, आप अपनी नई कॉलर से पता करते हैं।
0: हाँ।
1: कि वो सुबह कितने बजे उठती है।
0: बिल्कुल।
1: हेलो फरमाइश, कैसी हैं इशिका जी आप? अरे क्या बात है इशिका जी। इशिका जी आप बताइए, आप कहाँ पे रहती हैं और आप कौन सी क्लास में हैं?
0: तो उड़ गए तो तेरे।
2: मैं मुरादाबाद में रहती हूँ।
1: क्या बात है, आपको गाना सुनना पसंद है?
0: फोर्थ का स्पेलिंग सुनावा, फोर्थ का, फोर का स्पेलिंग सुनावा।
1: अच्छा, हमारे घर के बगल में या स्टूडियो के बगल में?
0: क्या नाम बताया?
1: अच्छा,
0: सुनो आप मुझे फोर का टेबल तो सुना दो। आप फोर
1: का टेबल कह रही हैं, रीना जी कह रही हैं फोर का टेबल सुनाएंगी आज इशिका जी। बहुत बहुत क्यूट हो आप।
0: फाइव जा सिक्स जा सेवन
1: सब बता, सब आगे पीछे
0: सही सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है गाड़ी।
1: जो जो आपके पास खड़े सब बता रहे हैं। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, आज आज आपने रीना जी को भी हमारी टेबल सिखा दी। आज
0: मुझे आती नहीं, आपने सिखा दी आज मुझे।
1: इशिका जी आप कितने बजे उठ जाती हैं सुबह घर में? हेलो इशिका जी, आप कितने बजे उठ जाती हो? चलिए ये तो हो गया। वो फोर की टेबल में वो हो जाता है, छोटे भाई बहनों जब अगर साथ में होते हैं तो ऐसे ही होता है। आज हमारी रीना जी ने भी फोर का क्वेश्चन मुझे। चलो चलो उनसे कहिए रोए नहीं, हम एक गाना प्ले कर रहे हैं बच्चों के लिए और वो दोनों सुन के एंजॉय करें। और इशिका जी से बोलिएगा बहुत अच्छा सुनाई उन्होंने टेबल, बहुत ही बढ़िया,
3: बहुत ही प्यारी बच्ची है
1: वो। पक्का पक्का जल्दी आएंगे हम सब,
0: आप भी आज स्टूडियो में आए, स्टूडियो में
1: पक्का पक्का दीदी पक्का। चलिए सुन, पक्का पक्का जल्दी चलिए सुनते हैं अब इशिका के लिए एक गाना बहुत ही दमदार वाला। ओके जी,
0: चलिए जी, बच्चों के छोटी छोटी खुराफाते अच्छी लगती है ना।
1: भी याद आ जाता है। मतलब कैसे बेचारी टेबल सुना रही, छोटे भाई ने तंग कर दिया। नहीं पहले मैं भी सुनाऊंगा।
0: अच्छा उसके लिए लड़ाई हुई थी। ओ मेरे को ओ माय गॉड, दोनों ने मतलब ये हो गया कि पहले मैं सुनाऊंगा, पहले मैं सुनाऊंगा, बचपन में होता। अच्छा अखिल भैया मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फरमाइश शो है, गाने भी सुनाएंगे आपके साथ। बचपन में कभी ऐसा हुआ है कि आप फैमिली वालों के साथ एकदम बीच में आ गए हो और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया हो?
1: हाँ, मतलब कभी कोई गेस्ट आ जाते थे तो हाँ। अगर घर पे कभी गेस्ट आए
0: हाँ।
1: और हम बैठे हुए हैं सामने और अचानक सडनली पूछ लेते, जैसे अभी आपने पूछ लिया ना फोर की टेबल
0: हाँ।
1: अरे बेटा आज तू 12 की टेबल सुना दे। तो एक दो मिनट तो मुझे लगता था आए क्यों आए, क्यों आगे एकदम मैं बड़ी मुश्किल से तो जरा अपने आप को वो कर रहा हूँ। ये आते के साथ इनके अलग अलग क्वेश्चन, और अगर अच्छा उनके सामने टेबल नहीं सुनाओ
0: तो कुटाई होती।
1: और फिर तो अगर मम्मी पापा बगल में बैठे हो तो वो कहेंगे आज तो भाई साहब पता चल जाएगा, ये
0: आज तो ब्लू पानी पानी होना है। मैं पता बचपन में ना मेरे पापा के पास कभी नहीं सोती थी. पापा के एक ही डायलॉग होता था, अच्छा टेबल सुनाओ. और ये भी नहीं कि सीरीज वाइज सुनाओ, अच्छा फोर, हाँ फोर फाइव जा ऊपर से कहीं वही से पूछ लेते थे यार, बताए तो बताए कहाँ. और मेरे पापा के पास एक रामलाल का डंडा होता था, अभी भी है वो
1: रामलाल डंडा,
0: उसका नाम ही है रामलाल. उन्होंने रामलाल रख रखा है नाम. पहले हमारी धुलाई होती थी, अब हमारे भतीजों की धुलाई होती है.
1: सही है,
0: चलिए जी, फिलहाल हमारी बातें खत्म नहीं होने वाली, हम कितना भी बोल ले गाने की तरफ बढ़ते हैं.

0: गुड वाली आफ्टरनून है अर्जेरीना के साथ फरमाइश होमी, और मेरे साथ अखिल भैया और कुमकुम भी है, और ये बचपन वाला गाना सुन के ना बहुत अच्छा लगा है मुझे गाइज, इसलिए मुझे हंसी आ गई कि जैसे मैंने अखिल भैया बोला ना, उन्होंने एकदम मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भैया मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया
1: नहीं, हम सबके घर में कोई ना कोई कॉमेडी पीस होता है जो बिना कोशिश करे भी ना उसका मजाक बन जाता है। जैसे सपोज मतलब मैं कहता हूँ कि पापा मेरे को हमेशा डांटते रहते हैं, मोबाइल कम चलाया कर अखिल, तू मोबाइल कम चलाया कर।
0: हाँ।
1: मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ पापा ही व्हाट्सएप चल रहे हैं।
0: देखो फोन की बात कही तो मैं अभी आपको एक चीज बता देती
2: हूँ, एग्जांपल अपना भी ले सकती हूँ, जैसे स्टूडियो में मेरा लेते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ये यार ये पतली सूखड़ी ककड़ी है ये,
1: वो तो एक अच्छी बात है, हेल्थ कॉन्शियस है।
0: आपने फोन की बात करी, अभी मैं बताऊं मेरे मामा हैं, वो पता क्या बोलते हैं कि लड़कियां कभी फोन नहीं चलाते, चल मुझे दे दे मैं मूवी देखूंगा। मैं कही कौन सा लॉजिक है वो कहते हैं लड़कियां फोन चलाती नहीं है, नहीं चलानी चाहिए बस लड़के। मैं अच्छा बस लड़के चला सकते, इसका मतलब खाना भी सिर्फ लड़के खाएंगे, लड़कियां नहीं खाएगी।
1: नहीं वो भी उन मामा जी को भी एक्सपीरियंस होगा कुछ, तभी उन्होंने कुछ बोला होगा।
0: हाँ वो बता नहीं सकते कौन सा एक्सपीरियंस है, वो आप ही बता सकते हो। चलिए फिलहाल हम अपने श्रोताओं से बात कर रहे हैं,
1: हमारी नेक्स्ट कॉलर है, बताइए मैम कैसी हैं आप। हेलो फरमाइश।
3: हेलो फरमाइश सर, आदाब।
1: आदाब, कैसी हैं आप, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं ये भी बताइए। रिहाना जी कैसी हैं आप। सब बढ़िया है। अभी हम रियाना जी बात कर रहे थे कि हम सबकी लाइफ में एक इंसान ऐसा जरूर होता है घर में जो है ना बिना कोशिश के भी उनका मजाक बन जाता है। जैसे मैंने बताया था अभी कि मैं मेरी डांट पिटती रहती है कि बेटा मोबाइल कम चलाएगा, मोबाइल कम चलाएगा, और देखता हूँ तो फिर पापा खुद ही आधा मोबाइल चला रहे होते हैं। आपके घर में भी है ऐसा कोई शख्स।
3: जी सर, हमारे घर में भी है, बेटा हमारा
1: तो मतलब आप जो है खुद ही चला लेती हूँ उसे ना देखे हो भाई।
3: नहीं मैं खुद भी नहीं चलाती हूँ, मुझे इतना शौक ही नहीं है, बस मैं एफएम मुराद आवाज जरूर सुनती हूँ, मैं बाकी मोबाइल नहीं चलाती।
1: ये शौक मत छोड़िएगा कभी भी, ये शौक जरूर रखिएगा अपने साथ।
3: जी सर, मैं और मोबाइल ऐप पे सुनती हूँ, वैसे रेडियो तो है नहीं मेरे पास।
1: चलिए चलिए तो बहुत अच्छी बात है, बताइए आज आपकी क्या फरमाइश पूरी की जाए।
3: फिल्म का नाम है अंदाज, और गाने को बोले किसी से तुम प्यार करो तो तेरी धार करो।
1: अच्छा अब अंदाज तो आपने बता दिया।
0: सही सही है, किसी से तुम प्यार करो
1: तो ये जो है किसके लिए है ये गाना।
3: ये गाना दोस्त के साथ में, और अनम भी, और आप हैं, हरीना जी हैं, कुमकुम मैम हैं।
1: क्या बात है, सभी के लिए ये गाना। धन्यवाद प्रवीण जी, धन्यवाद, और बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी।
0: अरे ये बताओ पहले आप मुझसे कितना प्यार करती हो। वालेकुम सलाम जी, कैसी हो आप।
1: तरबूज भेज दीजिएगा प्रवीण जी।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं भैया, तरबूज मत भेजिएगा, मिलावट बहुत ज्यादा आ रही है उसमें।
1: प्रवीण जी आप पता चलेगी, भेज दीजिएगा इन्हें, इन्हें पता चल जाएगा आप कितना प्यार करती है।
0: बिल्कुल जी सही कहा आपने,
1: कली तरबूज आ रहा है।
0: कोई बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए प्यार में कोई जहर भी दे देना वो भी मैं खा लूंगी आराम से, प्यार से मिलना चाहिए बस।
1: क्या बात है, क्या बात है, आपने तो
0: लेके आ जाइए,
1: सारी बोल दी है,
0: लेके आ जाइए, प्यार से खिलाने वाला हो हम खाने वाले हैं।
1: क्या बात कही है, मैं कल एक गेंदे की फूल की माला लेकर आया हूँ
0: वो बालों में लगाने के पहनने के काम आते हैं।
1: ठीक है प्रवीण जी, ठीक है चलिए
0: चलिए जी, हम आपको गाना सुनवाते हैं किसी से तुम प्यार करो। अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं और वो थोड़ी सी नाराज हो गई है तो आप डेफिनेटली उनके पसंद का गाना सुन सकते हैं, वो एकदम खुश हो जाएंगे। क्यों भैया सही कहा ना मैंने,
1: बिल्कुल सही बात है।
0: चलिए तो ये गाना एंजॉय करते हैं, लौट कर आते हैं जी। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है
1: 9837896896।
0: देखा क्या बात है जी, इनको भी याद आ गया गाइस, हमारा नंबर इनको भी याद हो गया लेकिन आपको याद नहीं हुआ है ना भैया। तभी कॉल नहीं कर रही है।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

0: गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ, फरमाइश शो में और अखिल सर कुमकुम के साथ। भाई कुमकुम तो कुछ बोल ही नहीं रही है, क्यों नहीं बोल रही है?
1: तो रहा हूं, आजकल लोग इतने बिजी हो जाते हैं ना मोबाइल में, अगर सामने से भूत भी निकल जाए ना तो पता ना चले लोगों को।
2: बोलने का मौका नहीं मिलता है वैसे,
0: मौका मिलता नहीं, मौका निकालना पड़ता है।
1: अगर मिल भी गया तो भैया पहले सेल्फी ले लेंगे उसके साथ।
0: करेक्ट करेक्ट, सही बोला आपने। तो भाई कहाँ बिजी हो तुम आजकल, भूख वूख तो नहीं लग रही तुम्हें?
2: नहीं मुझे भूख नहीं लग रही, नींद सी लग रही थी अभी थोड़ी देर पहले।
1: कुमकुम एक बात बताओ, तुम सुबह उठ के पहले भगवान को याद करती हो या मोबाइल की नोटिफिकेशन को?
2: नहीं टाइम को। एक्चुअली मैं टाइम को याद करती हूँ, बस मैं देखती हूँ कि मैं लेट उठी हूँ या जल्दी उठी हूँ।
0: असल में ये टाइम पता क्यों देखती है, शादी हो गई ना इसकी।
1: शादी तो वो लड्डू है जो
0: खाए तो पछता है, ना खाए तो पछता है।
2: वैसे ये पछताना तो अच्छा नहीं है।
1: शादी से पहले तो बोलेगा भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हाँ। शादी के बाद कहेगा मैं अपने दोस्तों के बिना।
0: बस यार बस फिर ही, मतलब अकेले ही अच्छे थे फिर तो।
2: जी समझ रहे हैं।
0: आप दोनों शादी शुदा ना इसलिए। अभी तो बस हम सब जैसे उठते तो बस यार जल्दी उठ गए, थोड़ा और सो लेते हैं।
1: अरे हम अपने लिसनर को ही भूल गए।
0: नहीं नहीं उनको कैसे भूल सकते हैं। समय की बात करूँ तो 4:27 हो चुके हैं और उनसे बात करना भी बहुत जरूरी है, तो बात करते हैं।
1: हेलो फरमाइश। आदाब सर। आदाब, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? जिला मुरादाबाद से अंसारी साहब। अंसारी साहब कौन सी गाने की फरमाइश है आपकी? क्या बात है, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, बहुत ही बढ़िया। किसके लिए है ये गाना डेडिकेट? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ये फरमाइश पूरी करते हैं। चलिए अंसारी साहब की। हाँ जी साहब, हाँ जी ठीक, आपके साथ आपके साथियों को सभी के लिए डेडिकेटेड है।
0: थैंक यू सो मच सर। और चलिए आगे बढ़ते इस गाने के साथ, और आप भी चाहते हैं कि अपना फेवरेट गाना सुन सके तो हमें कॉल करिए, नंबर है 9837896896। क्योंकि कल क्या है भैया अभी बता दीजिए।
1: कल क्या है? कल रविवार है
0: और संडे को हमारा ये फरमाइश शो नहीं आता है। तो आज ही आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। चलिए गाने इंजॉय करते हैं।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ और अखिल सर हमारे साथ कनेक्ट है फरमाइश शो में। और समय की बात करूँ तो 4:34 हो चुके हैं और देखिए आज हम तीन स्टूडियो में हैं। तो सच बताऊँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि वैसे मैं अकेली रहती हूँ स्टूडियो में, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में चांद सितारे सब आ चुके हैं।
1: अच्छा रीना जी, आप ये बताओ, आपको बचपन में डांट सबसे ज़्यादा किससे पड़ती थी, मम्मी से या पापा से?
0: पढ़ती तो मम्मी से थी लेकिन डरती पापा से थी।
1: रामलाल जी डरती थी पापा से, जलेबी की तरह बातें घुमाने, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए।
0: हाँ, डांट तो मुझे मम्मी से पड़ी है बहुत ज्यादा।
1: सही, आपने बिल्कुल डांट खाने वाले काम किए।
0: करती थी मैं, जो मना करती थी मम्मी वही काम करती थी मैं।
1: एक पहिए की साइकिल चला लेती
0: हूँ और क्या, पर आज तक मैंने देखी नहीं है, देखना है मुझे।
1: मैं दिखाऊंगा, एक भी ऐसी वायरल हुई है। हाँ? कि अफगानिस्तान में है वो बच्चा और वो भाई साइकिल चलाते चलाते उसने आगे का टायर ही निकाल दिया।
0: अरे नहीं, बचपन में हम खेलते नहीं थे, एक टायर से वो लकड़ी मार मार के, तो वही तो हो तो गया
1: वो भी। चलिए हमने नेक्स्ट कॉलर,
0: हाँ कॉलर से बात करते हैं।
1: हेलो फरमाइश। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अफरोज जी, आपके पीछे जो हमारा मुरादाबाद FM चल रहा है वो थोड़ा सा आवाज कम कर लीजिएगा। और अफरोज जी क्या करती हैं आप? खाने में क्या बनाती हैं आप? कटहल
0: भेज दो जी, पार्सल कर दो।
1: बहुत अच्छी चीज बना रही हैं आप, फेवरेट डिश है हमारी सबकी।
0: तभी लगाना जब आप कटहल बना रहे कि हमें पार्सल कर दीजिए।
1: परेशानी का हल हो गया आपकी।
2: बहुत टाइम से नंबर नहीं लग पा रहा था और फिर हमने बहुत टाइम सुनती हुई, तो शादी से पहले थी सुनती।
1: क्या बात, शादी के बाद भी अब सुनना मत छोड़िएगा, पति की सुनो, पति की सुनना मत छोड़िएगा, सबकी सुनिएगा, पति की भी सुनिएगा। क्या क्या गाना प्ले किया जाए आपकी फरमाइश में? क्या बात है, किसके लिए डेडिकेट करना चाहेंगे ये गाना? क्या बात है, क्या
0: सनम तेरी कसम,
1: बहुत अच्छा गाना है। चलिए चलिए, नहीं नहीं सही है, बहुत बढ़िया। हाँ जी सब बढ़िया है, सब बढ़िया, सब खुशी मैम भी बहुत बढ़िया है। हाँ खुशी मैम की आवाज़ सच में बहुत प्यारी है। चलिए आप से जल्दी मुलाकात करते हैं और अभी आपकी फरमाइश का गाना प्ले करते हैं। ओके चलिए श्रोताएं, सुनते हैं अपने लिसनर का फेवरेट सॉन्ग।
0: बिल्कुल जी, इन्होंने अपने पति को डेडिकेट किया एक गाना और ये गाना हम आपको सुनवाते हैं।
1: देख लीजिए आप कितना अच्छा, मतलब बीवी एक पति को डेडिकेट कर रही है सॉन्ग।
0: लग रहा है कि भाभी नहीं कॉल कर रही है।

0: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ, हेलो मुरादाबाद शो में और हेलो फरमाइश शो जहाँ आपकी फरमाइशें पूरी की जाती हैं। जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं, हम उसको प्ले करते हैं, यानी कि गाना वही जो आप सुनना चाहे। आर्जरीना के साथ अखिल भैया मेरे साथ है, कुसुम मेरे साथ है, जो कि ये बोल नहीं रही है, इसको नींद आ रही है भरपूर मात्रा में।
1: ऐसा लगता है जिंदगी में तो मतलब टेंशन ही चल रही रहती है, मतलब टेंशन है, कोई बात नहीं, हंसते रहो यार, वरना ईएमआई भी तो दुखी है।
0: कितना ईएमआई भरते हो आप ये तो बताओ
1: मुझे। बस मत पूछिए ईएमआई कितनी भरता हूँ, भरते भरते ही रहता हूँ ईएमआई।
0: मतलब इतना भरते हैं कि घूम जाते हैं ये।
1: क्रेडिट कार्ड की ऐसी ईएमआई होती है जो आपकी, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना, उसकी ईएमआई कभी खत्म ही नहीं होती।
0: मेरे फोन की नहीं खत्म हो रही है। अच्छा अभी इसकी स्टार्ट हुई अभी।
1: कम से कम मैं अकेला तो नहीं
0: है। नहीं नहीं, देखिए अकेला कोई नहीं है, बहुत ऐसे बात करेंगे तो बहुत मिल जाएंगे आपको,
1: जुड़ते हैं अपने नए
0: कॉलर से।
1: हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, उदित जी कैसे हैं आप? लगता है वो भी ईएमआई भरने गए।
0: हेलो
1: हेलो फरमाइश। अरे बढ़िया उदित जी, उदित जी आप बताइए क्या कर रहे हैं उदित जी?
2: मैं जॉब करता हूँ।
1: आप जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं आप?
2: मैं मुरादाबाद में रहता हूँ।
1: आप मुरादाबाद में रहते हैं, तो आज कौन सी फरमाइश है आपके गाने की और किसके लिए है?
2: मैं फरमाइश रखूंगा अपने वाइफ के लिए, और धड़कन पिक्चर का गाना है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो।
1: अरे क्या बात है, अभी तक जो है धड़कन में ही रह रही है भाभी।
2: जी
1: क्या बात है, आप कोई ऐसा गाना उनके लिए गा के भी डेडिकेट करिए ना।
2: मैं गाना गाना चाहता हूँ माई का, दो चार लाइनें गा सकता हूँ इस समय।
1: क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया, ये गाना सुन के तो हमें भी सच में डर नहीं लगा, बहुत ही बढ़िया गाया आपने उदित जी। और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमें सुनते रहिए और हमारे मुरादाबाद एफएम मुरादाबाद 89.6 को ट्यून अप करके रहिएगा। ओके, क्या गाना गाया है भाई,
0: बिल्कुल बहुत अच्छा। और सच में जब घर नहीं दिखते तो घर घर जैसा नहीं लगता है।
1: ये तो उन्होंने डेडिकेट भी जो है अपनी वाइफ के लिए किया है गाना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, तो चलिए गाना सुनवाते हैं और सभी के साथ एंजॉय करते हैं, हम भी गाने के एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, डांस कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए श्रोताओं गाना एंजॉय करते।

0: उफ देव, बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ।
1: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज डीएमआर हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें डीएमआर हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।
2: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक एनआईसीयू सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ, और मेरे साथ अखिल भैया और कुमकुम जी हैं। और कुमकुम जी का इंतजार है कि बस कब मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ
1: कब मैं अपने मोबाइल की पूरी हो जाऊँ।
0: हाँ, ये वैसे देखिए बैठे बैठे भी इसका नजर अभी फोन में ही है, फोन से हट नहीं रही
1: जो
0: है।
1: वो आपकी सबसे कीमती चीज है ना, वो आपकी नजरों के सामने रहनी चाहिए।
0: अनमोल रतन।
2: मैं अपनी नेक्स्ट फरमाइश देने के लिए फोन में घुसी हुई थी।
0: अरे बाप रे बाप, ये तो खुद ही लाइन में लगी हुई है।
2: चाहती हूँ
1: मेरी भी एक फरमाइश पूरी हो जाए।
0: अरे क्या बात है,
1: चलिए हम अपने नेक्स्ट कॉलर से जुड़ते हैं। हेलो हेलो, फरमाइश। सस्रीकाल जी, सस्रीकाल, कैसे हैं साहब?
3: ठीक ठाक जी। सर जी, मैं गाँव मोड़को से, हम पंजाबी बोल रहे हैं, पिंड मोड़को से, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब से जी, से मैं बोल रहा
1: हूँ। अरे क्या बात है साहब, पंजाब तक हमारी आवाजें पहुंच रही हैं साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। और सब सही है सर, आपकी तरफ सब सही है, सब बढ़िया चंगा जी?
3: हाँ जी, सारे सही है जी। कल कर बैठे थोड़ा यार, जा रही है जी, थोड़ा यार
1: जी। कौन सी फरमाइश सुनना चाहेंगे आप? अच्छा जी, हाँ बोली बताइए, थोड़ा सा ना बोल गुनगुना के बताइएगा, ऐसे बोल हमने बहुत टाइम बाद सुने हैं।
0: रहने दीजिए सर, मैडम पीछे ही खड़ी होगी।
1: बहुत बढ़िया वीर जी, बहुत बढ़िया। कितने साल हो गए आपकी शादी को?
3: मेरे जी 16 से 92 की शादी जी।
1: अब जाके आपको रूप पता चला? मतलब लोगों को 5-6 साल में रूप पता चल जाता है, आपको 16 साल में जाके पता चला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई वीर जी। बहुत ही बढ़िया गाना आपने करा आज, हमारे लिसनर्स भी ये गाना सुनेंगे तो सब हंसेंगे, मतलब बहुत एंजॉय करेंगे इसे। बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत सारा प्यार पंजाब से हमें मिला है, बहुत ही बढ़िया है। और थोड़ी बारिश वारिश हो वहाँ से तो हमारे पास भी भेज दीजिएगा इधर यूपी में। बस बारिश भेजिएगा, आंधी तूफान मत भेजिएगा, यहाँ लोग उड़ रहे हैं। ठीक है वीर जी, बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे जुड़ के, बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल।
0: एंजॉय कर
1: तो तब से हंसी रही है, रीना जी को लग रहा है आज तो गाना मेरे पे ही डेडिकेट हो गया।
0: आए, आए, आए।
1: मगर कोई बात नहीं,
0: मैं नागिन सब बल खाना भी बहुत जरूरी होता है। आपको नहीं पता है, जब चलते हैं ना आप टिकटॉक करके तो सामने वाला देखते ही रह जाता है।
2: कुछ लोगों को सिर्फ नागिन ही पसंद आती है।
0: ठीक है जी, चलिए गाने लौट कर आते हैं।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डस ले तो क्या कहना।

0: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
1: टायर लो, सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
8: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
7: अरे वाह।
8: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
7: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स। कॉल 9412965333।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज के साथ। समय की बात तो 3 घंटे की शुरुआत हो गई है गाइस। 5:04 हो चुके हैं और
1: यार
0: अभी
1: कहीं जाने का मन नहीं है
0: बिल्कुल
1: निकलने
0: बिल्कुल,
1: का।
0: बिल्कुल। अरे
1: इन्हें तो
0: क्योंकि
1: बहुत
0: कल
1: जोर से,
0: संडे है ना।
1: अरे ये सुबह 6 बजे से उठी हुई है तो इन्हें तो नींद बहुत तेज आ रही होगी।
0: पर
1: इनका इनके आवाज, इनका जोश देख के लग नहीं रहा आज इनका जाने का मन है
0: मुझे
1: जाने
0: लग रहा है
1: का।
0: कि आप दोनों ही सो नींद
1: आज
0: आ रही
1: इनके पास ना प्रमोशन का मेल आ गया कि इनका प्रमोशन हो रहा है।
0: काश काश ऐसा हो जाता।
1: सबसे बहुत खुश है करें आज तो अखिल जी, आज तो जो है
0: नहीं,
1: पार्टी है,
0: मैं खुश
1: पिज्जा
0: इसलिए
1: पार्टी।
0: हूँ, मूवी देखने चलेंगे।
1: हाँ यार ये भी अच्छा है, मूवी मतलब आप मूवी देखना पसंद है आपको बहुत।
0: अरे बहुत, मतलब मैं अकेले जब होती हूँ मूवी देखती हूँ तो 3 घंटे की मूवी कब 3 सेकंड के अंदर खत्म कर देती हूँ पता नहीं चलता है।
1: आपने अभी कौन सी मूवी देखी थी लास्ट?
0: मैंने मूवी अभी देखी थी लास्ट, एक पंजाबी मूवी है जो
1: हाँ
0: कि थिएटर में देख आई हूँ मैं
1: अच्छा, तो नाम याद
0: तो।
1: नहीं
0: अरे
1: है।
0: नाम याद नहीं आ रहा, बट सुनो तो सही। उसमें क्या होता है कि कंपटीशन होता है, गाड़ी जैसे चलाते हैं ना, तो ये देखते हैं कि पहले कौन चलाता है ये वो। तो उनकी गाड़ी ना खराब हो जाती है, वो गाड़ी में अपना दारू डाल देते हैं, फिर वो हवा में उड़ने लगती है। ये पंजाबी मूवी है, अभी रिसेंट की मूवी है, आप जरूर देखिए। फरवरी में देखी थी मैंने मूवी, रिलीज हुई थी। बहुत बहुत प्यारी मूवी है
1: फरवरी
0: सच
1: को
0: में।
1: तो गुजरे हुए भी 3 महीने हो गए, ये रीसेंट कैसे हो गई
0: अरे यार
1: आपकी?
0: क्यों नहीं है, फरवरी तो अभी कहाँ दूर है।
1: इतना काम करती है, मौका नहीं मिला उसके पास।
0: सच
1: चलिए
0: बताओ
1: हम,
0: ये बहुत अच्छी मूवी है सच। अगर आप भी देखो बोलोगे अरे वाह
1: मैं
0: भाई मैं
1: पक्का
0: भी।
1: पहले तो गूगल सर्च करूंगा ये वाला लोग
0: सीन,
1: एक्सपेरिमेंट करके ना
0: उसके बाद
1: देखें।
0: सर्च करूंगा ये कौन सी मूवी।
1: नहीं
0: अगर आप लोगों को ही पता है ना ये मूवीज गाइस तो जरूर मैसेज कॉल
1: करें।
0: पर भी बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूंगी सर्च करके, वो मूवी सच बहुत बहुत प्यारी पंजाबी मूवी है सच में। मतलब उसके अंदर ना एक क्रेज होता है बचपन से कि मुझे नई नई चीजें करनी है, तो वो गाड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करता है और उस गाड़ी टूटी फूटी गाड़ी को नया बनाता है वो।
1: चलो ठीक है,
0: चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते
1: चलिए
0: हैं,
1: हम
0: हमारी
1: अपने
0: बातें कभी
1: नेक्स्ट
0: खत्म
1: कॉलर
0: नहीं
1: से।
0: होती
1: हाँ
0: हैं।
1: हमारी बातें तो खत्म नहीं होंगी। हेलो फरमाइश, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या नाम है आपका? धारवी नाम है? धारवी कौन कौन कौन सी क्लास में है आप? कौन सी क्लास में है आप? फर्स्ट कोरल में हैं? कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप?
0: वेरी नाइस,
1: समर
0: समर
1: वैली स्कूल में
0: वैली।
1: पढ़ती हैं आप? आप हमारा रेडियो सुनती हैं?

0: क्या बात है। और कौन कौन है घर में, कितने आपके ब्रदर और सिस्टर्स कितने हैं? क्या बात है। अच्छा आपने अपना नाम भी दोबारा बोल दिया है ना। कौन सा गाना सुनना चाहेंगी धारवी जी आप? एक नंबर तो आपका आएगा नहीं, क्योंकि आप जो है ना अभी आप एग्जाम देती। ये गाना है
1: प्यार न किया, बोलो न बोलो क्या किया, हमने अभी एग्जाम दिया।
0: गाना क्या
1: एग्जाम हो रही
0: है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आवाज
1: है, बहुत प्यारी आवाज है, बहुत सो क्यूट
0: आपकी आवाज, बहुत ही क्यूट आवाज है। थैंक यू वेरी मच, आप हमसे जुड़ी। अभी हम आपका एक गाना प्ले करते हैं। कितनी अच्छी आवाज थी,
1: बहुत बहुत प्यारी, सो क्यूट।
0: लास्ट वाली लाइन कितनी अच्छी थी, बोलो ना बोलो क्या किया।
1: चलिए जी ये गाना हम सुनवाते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: गमोह है।
1: क्या बात है जी, बहुत ही प्यार गाना एंजॉय किया कि दिल प्यार न किया। अच्छा समय की बात करूं तो 5:14 हो चुकी है। अखिल भैया मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने दिल दिया?
2: हाँ जी दिल दिया है।
1: प्यार किया?
2: प्यार भी किया है।
1: अच्छा
2: जो है जरूर मेरी आज क्लास भी लगवा दो। इतने छोटे बच्चों ने कितना बढ़िया गाना
1: यार देखो मतलब सच में
2: कितना, इस गाने के आप बोल भी देखिए कि बच्चा आज के जमाने का बच्चा भी जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये गाने जो पुराने गाने होते हैं ना वैसे बड़े लाजवाब होते हैं, मस्त होते हैं मतलब। और ऋतिक रोशन की डांस भाई साहब क्या कह सकते हैं, शब्द नहीं है उसके लिए।
0: ऋतिक रोशन का सॉन्ग हो डांस करने का मन ना हो,
1: अरे भैया आप तो इनकी भी आवाज निकल गई है,
2: उसे घर जाना है ना जल्दी।
1: सोचा कि चलो
2: तो गाने में
1: नहीं, ऋतिक रोशन के गाना सुन के एनर्जी आ गई इसके अंदर।
2: एक आध डांस हो जाए फिर कुमकुम।
1: हाँ सही बात है, डांस तो करना पड़ेगा। लेकिन नहीं आज इसको छोड़ देते कि फास्ट भी है ना इसका। तो चलिए
2: थोड़ा सा फास्ट डांस करके दिखा देंगे।
1: हाँ अगले कॉलर से बात कर लेते हैं, लास्ट लकी कॉलर हमारे हैं ये।
2: हेलो फरमाइश।
3: हेलो
2: फरमाइश। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका। आप कैसे हैं? छत्तीसगढ़ कैसा है और आप भी कैसे हैं, दोनों बताइए हमें।
3: खाना पीना और बासी भोजन ना दे, चिड़ियों को भी दे सर, और उनको भी ना लाए धूप में ना बांधे।
2: बहुत ही सुंदर बात कही है, बहुत ही सुंदर बात की है। और सच में जैसा हाल आपकी तरफ है वैसी हाल इधर है। आपकी तरफ बिजली आ रही जा रही है या बिजली कंटिन्यू आ रही है?
3: बिजली सर।
2: हाँ
3: सर, ये आधी तूफान आता है पानी आता है सर, बिजली कट जाता है क्योंकि सर हो सकता है गाड़ी मार जाए, मारता है तो सर क्या है कि ऊपर एक तार में मारता है बचाने के लिए लोग, या फिर कई बार ऊपर एक कार हवा से टकराता है
2: आंधी तूफान ऐसे आ जाते हैं, जगह जगह पोल जो है वो गिर जाते हैं और फिर बिजली की कटौती हो जाती है।
3: और
2: सही कहा आपने, ऐसे समय पे गाड़ी को साइड में लगा लें और जहाँ जितनी आप कहीं भी आप वो ले सकते हैं, किसी भी चीज़ की आड़ ले सकते हैं, मतलब कहीं भी आप रुक सकते हैं, कहीं शेड ले सकते हैं तो वहाँ पे जरूर रुक जाए। आप गाना कौन सा गुनगुना सुनना चाहेंगे इंद्रबान जी?
3: हम किसी से कम नहीं है, ऋषि कपूर काजल जी का फिर जो गाना कई का सब होते मोहम्मद रफी सबसे पहले जी का किसी ने नहीं दी ताकि फिर उठा कर सकते सब रेडियो मुरादाबाद में जीने सभी लोगों को हेलो एक्सा रेडियो सुनल जी के जीवन छोटा को आपके परिवारजन को आपके दोस्तों को और फिर जो मुरादाबाद में छोटे भाई बहनों को सभी लोगों को सभी भारत राज के छोटा को दिल्ली के नाम जी कुर्सी में है वो चाहेंगे सर। धन्यवाद, आप इनसे जा रहे हो अपने तत्व के गीत सुनने के लिए। धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया स्पीच रही आज।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, सच बताओ
2: बहुत
1: तो
2: अच्छी जानकारी।
1: ये कुर्सी तो नहीं ले लेंगे हमारी।
2: मतलब इतना अच्छा इन्होंने बताया, बताया कि छत्तीसगढ़ में भी इस समय ऐसी ही
1: हर जगह हालत। हाँ बिल्कुल सही
0: कहा।
1: तो चलिए गाना सुनने से पहले कुछ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट टाइम हो गया।
4: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों आवासीय संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
5: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
6: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
5: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यहीं चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
6: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: क्या बात है जी, बहुत कि आपने। और इसी गाने के साथ हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत। समय की बात करूँ तो 5:24 हो चुके हैं और आप सोच रहे होंगे कि हरियाणवी तड़का शो आ रहा होगा, है ना? लेकिन नहीं जी आज हरियाणवी तड़का हमने छुट्टी पर भेज दिया है, तो अभी हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत। लेकिन अखिल भैया क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते?
1: मैं जाते जाते यही कहूंगा कि वो जो गाना था ना, अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है।
0: कौन सा गाना घूम रहा है, मैं भी बताओ?
1: वो नागिन वाला
0: भाभी जी सुन रही होंगी, ज्यादा मत बोलिए, अभी भाभी जी जाके क्लास लेने वाली है।
1: मुझे तो उनकी याद आ गई, सरदार
0: पाजी की याद आ गई, बिल्कुल
1: बढ़िया। मतलब पंजाब से आज दिल खुश कर दिया, एक तो वो लस्सी, पंजाब की लस्सी,
0: और सरसों दी साग, मक्के दी रोटी।
1: अब तो डिनर टाइम हो जाएगा थोड़ी देर बाद।
0: अच्छा खुश कुमकुम कह रही थी कि मुझे भी एक गाना जाते जाते सुना दो।
2: फरमाइश से पूरी करते करते मैं अपनी खुद की भूल गई। खैरियत सॉन्ग की,
0: खैरियत पूछ, किसके लिए गाना ये?
2: वैसे तो ये मैं पूरे मुरादाबाद को डेडिकेट करना चाहती
0: हूं। अरे बात, बहुत प्यार करती है
1: ना मम्मी ना पापा ना हस्बैंड, ना भाई साहब।
0: आज तो घर पे तुम्हें क्लास लगने वाली है।
2: हस्बैंड बहुत अच्छे हैं।
0: अरे अरे क्या बात है जी,
1: हस्बैंड तो सभी के अच्छे होते हैं, हस्बैंड किसके बुरे होते हैं?
2: हाँ बस एक वाइफ होती है जो दहन में बैठी होती है।
0: नहीं
1: वो गाना अच्छा था। हाँ। कुछ भी कहो गाना अच्छा।
0: चलिए हम यहाँ से निकलते हैं, झोला वोला उठा लेते हैं अपना। कहाँ है आपका झोला?
1: मेरा झोला बगल वाले स्कूल।
0: और तुम्हारा झोला?
2: मेरे पास तो है,
0: मेरे पास ही नहीं है। मेरा झोला तो नहीं, फोन फिलहाल उठाना है मुझे।
1: कोई झोला है तुम्हारा तो?
0: हाँ मैं चार्जर भूल जाती हूँ अक्सर।
1: ईएमआई टाइम से भरती रहना
0: जी। चलिए श्रोताओ हम यहाँ से जाते हैं, लेते हैं जाने की इजाजत। कल आपको मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह। कल तो नहीं, अरे यार कल मंडे को मिलेंगे। बिल्कुल जी, मंडे को करेंगे फंडे, लेते हैं संडे।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
2: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके साथ मैं हूं आशीष और
4: मैं हूं भावना। आज का हमारा यह विशेष शो समर्पित है हमारे समाज की उस शक्ति को जिसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में।
3: बिल्कुल, तो भावना, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, पता है आपको। लेकिन सरकार की इस पहल ने लोगों की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की है।
4: बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है।
3: बिल्कुल जरूरी है भावना, क्योंकि सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम उनके अनुपात की बात करते हैं तो कई बार ये भी सवाल आता है कि अरे बेटियां तो कम हैं, जब बेटियां ही कम हो जाएंगी तो वंशावली कैसे बढ़ेगी, कैसे देश बढ़ेगा, कैसे समाज बढ़ेगा।
4: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष।
3: और सिर्फ यही नहीं भावना, इस योजना का फोकस लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, यानी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या होती है उसे रोकना और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना भी है।
5: एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं।
6: मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है।
5: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है।
6: भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है।
4: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है।
3: चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सरकार बेटियों के भविष्य के लिए दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना।
4: सही कहा आशीष आपने, यह बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसमें बहुत कम राशि से खाता खुलवाया जा सकता है और ब्याज दर भी काफी आकर्षक है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने भावना, इसीलिए तो सरकार कहती है जब पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां।
7: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नु रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन 4 करोड़ परिवारों को जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।
3: भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्तियों जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं उसके जरिए ये सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी की पढ़ाई के बीच में ना आए।
4: और तो और आशीष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना और मातृ वंदना योजना भी बेटियों और माताओं को मजबूती प्रदान कर रही है।
3: तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की और साथ ही साथ उन बेटियों की जिनको कहीं ना कहीं गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, जिनका भविष्य गर्भ में ही खत्म हो जाता है। ऐसी बेटियां जो अपना जीवन देख ही नहीं पाती, और अगर देख भी पाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सामने भविष्य में इतनी अड़चने आ जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, जहां उनका भविष्य बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता। भावना, ये आप तो जानती हैं कि बहुत बड़ा विषय है, और मैं तो आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं और आप एक समाज सेवी के तौर पर भी काम करती रही हैं, और आपने अपने उस समाज सेवा में भी कई नन्ही जानों को जो बेटियां हैं उन्हें अपने हाथ में खिलाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि आखिर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कितना जरूरी हो जाता है ऐसे हालातों के बीच में।
4: आशीष, हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है आशीष, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑर्फनेज में काम किया था तो जो अनाथ बच्चों की संख्या बेटों की अपेक्षा बेटियों की ज्यादा थी। बहुत अधिक अनुपात में बेटियां रोड के किनारे लावारिस अवस्था में, कहीं कूड़े के किनारे तो कहीं कहां तो कहीं कहां, ऐसे मिलती थी। ऐसी बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी।
3: बिल्कुल भावना, और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतनी गंभीर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, और वो चाहती है कि जो सेक्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, जो लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, वो सुधरे, बल्कि बेटियों की संख्या ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं, खासकर हम जब हरियाणा या राजस्थान का जिक्र करते हैं, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत आते थे। एक समय तो ऐसा भी हरियाणा में हो गया जहां बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, उनका जो लिंगानुपात था वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि चिंता का विषय बन गया था कि अब यानी कि जिनके बेटे थे उनकी शादियां कैसे होंगी।
4: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए बेटियां मिलना मुश्किल हो गई थी आशीष।
3: अच्छा, तो आपको भावना नहीं लगता कि इसमें सबकी गंभीरता और सजगता बहुत जरूरी है, खासकर वो माँ जो खुद एक बेटी है किसी की, जो खुद एक लड़की से माँ बनती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि उसको बेटा पैदा हो।
4: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन ये कम कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब शिक्षा की बात हमारे और सभी बच्चियों के लिए एकदम जिसे कहते हैं अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य तो खैर सरकार ने कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि बेटियां आगे बढ़ सकें।
3: बिल्कुल जरूरी है और जागरूकता फैलाना जरूरी है, इसीलिए हम अपने रेडियो चैनल के जरिए सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों को सहेज कर रखिए, यही असली धन है। ये पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो ये सिर्फ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगी बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को एक बहुत मजबूती के साथ संबल देते हुए भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगी। इसीलिए बहुत सारी बेटियों की सफलता की कहानियां भी हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे, सुनाएंगे, उनके बदलाव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है भावना कि हवा बदल रही है क्या? आज ओलंपिक से लेकर अंतरिक्ष तक अगर आप देखें तो बेटियां ही तिरंगा फहरा रही हैं।
4: आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुका है। हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी, बेटी है तो कल है।
3: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन बात

0: सरकारी संस्थाएं या जिम्मेदार लोग सभी यही जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए, उनकी संरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए। और शायद भावना यही श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। तो रेडियो के सभी श्रोताओं से हमारी एक अपील है कि अपने आसपास किसी भी बेटी की पढ़ाई रुकने ना दें। यदि आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जिसे सहायता की जरूरत है तो सरकारी हेल्पलाइन या पास के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
0: बिल्कुल, और याद रखिए जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार संवरते हैं।
1: तो जाने का वक्त हो गया है, पर यह चर्चा आपके घरों में हमेशा ही जारी रहनी चाहिए श्रोताओं।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विषय है जो कभी ना खत्म होने वाला, ना रुकने वाला विषय है। बेटियां हमेशा इस देश को, इसकी तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाती रहेंगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो विज्ञान हो। वैज्ञानिक के तौर पर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में बेटियां जा रही हैं, खेलों में बेटियां जा रही हैं। और इसीलिए भावना कहते हैं, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रोताओं सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो, खुश रहिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए
0: और बेटियों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि बेटियां हैं तो हमारा समाज है और हमारा समाज है तो हमारा
1: कल है।
0: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। यार यहाँ इतने मच्छर कहाँ से आ गए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे रीना। आज हम बात करेंगे, उफ अरे भाई, यहाँ प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है, माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन लगता है कि जो हमारे यहाँ फूलदान है उनमें मच्छरों ने अपना घर बना लिया है और पार्टी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आज के कार्यक्रम की अपने सेहत सही लाभ कई की कड़ी की, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका बरसात के साथ साथ एक लंबा रिश्ता है।
1: नमस्कार आरजी रीना, किसका रिश्ता किसके साथ लंबा है भाई? अब हमारा रिश्ता भी आपके साथ, माफ करिएगा, हमारे अपने सामुदायिक रेडियो के साथ बहुत लंबा हो गया है।
0: नमस्कार भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने, आपका और सेहतिया भैया का रिश्ता पूरे सामुदायिक के साथ तो था ही, लेकिन रेडियो के साथ भी काफी लंबा हो गया है और उम्मीद है कि ये रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। आप हमें ज्ञान देंगी और हम उसका लाभ उठाएंगे, लेकिन मैं बात कर रही थी इन मच्छरों की और एक मिनट देखिए, यह व्हाट्सएप पर एक CMO की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आया है।
1: सर जोर से पढ़िए।
0: यह है, देखो, साफ करे ढके डेंगू को हराने के उपाय करे, राष्ट्रीय डेंगू डे की बधाई। और आज तो 16 मई है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। वाह,
1: अरे मुझे तो पता था, इसलिए मैं इसी विषय पर बात करने की तैयारी से आई हूँ। आप पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पर उससे पहले मैं बता दूं कि फोन पर जो आपके पास और बहुत सारे लोगों के पास ये सूचना पहुंची होगी, इसका मतलब यही है कि हम सब मिलकर ही डेंगू की बीमारी को खत्म कर सकते हैं।
0: और राष्ट्रीय डेंगू दिवस इसलिए मनाए जाते हैं कि डेंगू बुखार की घटनाओं को कम करे, जो कि सही तरीके से इलाज न होने पर गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अच्छा, तो आज का मेरा आपसे सबसे सिंपल सवाल है, डेंगू क्या होता है और हम इसे कैसे बच सकते हैं?
1: ये तो वाकई में बहुत सिंपल है, अब तो बच्चा बच्चा जानता है। डेंगू एक मच्छर के काटने से फैलने वाली वायरल बीमारी है, इससे फैलता है। HTP का नाम मच्छर, ये मच्छर दिन में काटते हैं और बहुत तेजी से आदमी को बीमार कर देते हैं।
0: अरे दिन में काटता है, हम तो समझते थे मच्छर रात में ही एक्टिव होते हैं।
1: नहीं नहीं, ये वाले मच्छर दिन में ही ज्यादा काटते हैं, खासकर सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 3 से 5 बजे के बीच। ये छोटा काला सफेद धारीदार मच्छर होता है और जब ये डेंगू वायरस वाला मच्छर काटता है तब आदमी 5 से 6 दिन के अंदर बीमार पड़ जाता है।
0: तभी तो मैं परेशान थी, सर्दियों में बहुत मच्छर थे, अब ये मच्छर भागने के नाम ही नहीं ले रहे हैं और फिल्ट भी किया। तो डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं भाभी?
1: डेंगू में तेज बुखार अचानक चढ़ जाता है, सिर दर्द, आंखों के पीछे जलन, बदन में दर्द, भूख कम लगना, शरीर पर चटके, उल्टी या मिचली, ये सब हो सकता है। अगर बीमारी बढ़ जाए तो नाक मुंह से खून बहुत ज्यादा, उल्टी, बेचैनी, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत, ये गंभीर लक्षण होते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
0: अरे तो क्या इसका इलाज हमारे पास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर है क्या, जहाँ लोग जाकर इलाज करवा सके?
1: क्यों नहीं, हमारे हर नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर डेंगू का टेस्ट होता है और जिस हिसाब से लक्षण दिखते हैं उसी हिसाब से इलाज होता है। पर ये भी जान लो कि डेंगू का कोई खास इलाज नहीं होता।
0: भाभी, जब डेंगू की कोई खास दवा नहीं है तो क्या लोग क्या करें?
1: डेंगू का कोई पक्का इलाज नहीं होता, पर इसका इलाज लक्षणों के हिसाब से होता है, जैसे बुखार कम करना, खूब सारा पानी पीना और अगर जरूरत पड़े तो खून या प्लाज्मा देना। और ये सब हमारे पास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के समक्ष स्वास्थ्य कर्मी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एस्प्रिन या इब्रोफेन नहीं लेना चाहिए, सिर्फ पैरासिटामोल की गोली चलेगी।
0: समझ गए भाभी, अब बताइए ये मच्छर पैदा कहाँ होते हैं?
1: ये मच्छर साफ पानी में पनपता है, जैसे कूलर, बाल्टी, फूलदान, टंकी, फ्रिज के नीचे, प्लास्टिक की बोतलें, पुराने टायर, जहाँ भी साफ पानी जमा हो जाए। और सोचो, इसके अंडे बिना पानी के भी 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं।
0: भाभी मैं भी यही कह रही हूँ कि ऑफिस के सारे गुलदस्ते बाहर रख देने चाहिए, क्योंकि हर घर में खतरा छुपा बैठा है।
1: एकदम, इसीलिए हफ्ते घर के सारे पानी वाले बर्तन बर्तन धोएं, कूलर खाली करो, आसपास सफाई रखो, इसे कहते हैं वीकली ड्राई डे। सबसे सस्ता और साधारण उपाय है, पानी जमा ही मत होने दो।
0: भाभी, और क्या क्या उपाय होते हैं मच्छर को रोकने के लिए?
1: और अगर रास्ता और किफायती उपाय चाहते हो तो ध्यान से सुनो और गांठ बांध लो। डेंगू से बचाव के लिए हमें कई स्तर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले व्यक्तिगत सुरक्षा के तहत पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करना चाहिए और बच्चों को दिन में भी मच्छरदानी में सुलाना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा, पर आपने कई स्तर की बात की है, तो बाकी के स्तर?
1: अरे तो पूरी बात तो सुनो। जैविक उपयोगों में पानी की टंकी और तालाब में गबूसिया जैसी मछलियाँ डालनी चाहिए जो मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं। साथ ही बायोसाइट का उपयोग भी करना चाहिए। पर्यावरण की देखभाल में छत, पोल्टिको और सनसेट की नियमित सफाई, पानी को ढककर रखना और नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।

0: आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना। और आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं, इनफैक्ट आपके साथ हम ढेर सारी बातें तो करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। हर बच्चे को पढ़ने, खेलने, सुरक्षित रहने और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन कई बार जानकारी की कमी के कारण बच्चों को अधिकारों से नजरअंदाज कर दिया जाता है। सो इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी। तो हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, बस आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। मोस्ट वेलकम है सर, आप कैसे हैं? आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए जरा।
1: देखिए, मैं प्रोफेशनल एज एन एडवोकेट वर्किंग करता हूं और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूं।
0: हाँ जी।
1: और हम लोग कहीं भी अगर कोई अन्याय करता है या कोई भी हमें गलत बात लिखती है तो उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं।
0: लेकिन सर आपका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है।
0: तो सर मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, बच्चों के अधिकार आखिरकार है क्या?
1: देखिए, जैसे समाज में बच्चे भी एक समाज का ही हिस्सा है, तो हमारे सरकार ने उनके लिए भी कुछ राइट्स बनाए हुए हैं। खास तो जो बच्चों के अधिकार है वो हर बच्चे को जन्म से वो अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो गया, सुरक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शोषण से बचाव का अधिकार है और अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और आजकल कई NGO भी आप देख सकते हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए कई डिफरेंट फील्ड्स में।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें राइट्स बच्चों के पता होना सबको जरूरी है।
0: बिल्कुल। सो सर अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों के सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं?
1: देखिए, कानून बच्चों के लिए तो कई बने हुए हैं। जैसे अगर हम लेबर की बात करते हैं, कई फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि बच्चों से बाल श्रम कराया जाता है, तो लेबर डिपार्टमेंट उसका संज्ञान लेता है, उस पर एक्शन लेता है वो। ठीक है,
0: बिल्कुल सर।
1: और कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि बच्चे कहीं अगर पढ़ने जाते हैं या कहीं किसी जो है स्कूल में जा रहे हैं या कहीं पे कोचिंग जा रहे हैं, तो उनके साथ कई ऐसी घटनाएं भी आती हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी घटनाएं हमने देखी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उसमें भी सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए, बच्चों को भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और कानून तो है ही है अपनी जगह।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो
0: सर
1: उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और सबसे मेन बात तो सर इसमें यही है कि पेरेंट्स को बहुत इसमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिलहाल तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि आखिरकार बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार क्या है?
1: देखिए, शिक्षा का अधिकार हमारा राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट भी है ये। और ये प्रत्येक बच्चे को जन्म के साथ जो शिक्षा का अधिकार मिल जाता है वो 14 साल तक के लिए उसको होता है। सरकार भी हमारी काफी इसको प्रमोट कर रही है शिक्षा को लेके, क्योंकि अगर हर बच्चा शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पे वो अपने साथ हुए अन्याय के लिए बता भी सकता है और खड़ा भी हो सकता है। और जो है सबसे बड़ी चीज है, अगर वो सजग होगा तो उसके साथ कोई ऐसी घटना भी नहीं होगी, अगर उसे नॉलेज होगी पूरी।
0: तो जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, आपको भी पता है जो गवर्नमेंट स्कूल में, उनको तो फ्री ऑफ कोर्स हर चीजें मिलती है।
1: ठीक है।
0: और जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि आपको बुक्स भी हमारे स्कूल से ही खरीदनी है, यूनिफॉर्म आप लेना है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि सर इतनी चीजें अवेलेबल नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल ठीक बात है रीना जी आपकी। देखिए, मैंने भी कई काफी सोचता हूं मैं कि शिक्षा हमारी सरकार कहां, जहां एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, वहीं कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया है जो गलत है। तो सोच उनकी थोड़ा सा मैं यही बोलूंगा कि हर चीज में कमर्शियल नहीं देखना चाहिए। एट आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएं। ये नहीं होना चाहिए कि आप शिक्षा के नाम पे बुक्स भी यहाँ से लीजिए, ड्रेसेस भी यहाँ से लीजिए। कमर्शियल मैं मानता हूँ, चलिए रेवेन्यू हर चीज में, भाई स्टाफ को सैलरी देनी रहती है, एक्सपेंसेस होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन इतना कमर्शियल नहीं होना चाहिए कि कम से कम जो पेरेंट्स हैं जो इस एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकते, उनको कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स फील हो कि हम अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: और सरकार को भी हमारे कुछ स्टेप लेना चाहिए कि एक मापदंड ऐसे होने चाहिए, एक फीस, एक रिस्ट्रिक्शन बाउंड्री लगानी चाहिए कि भी इससे ज्यादा कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। और बुक्स का भी मैं देखता हूँ हर सिलेबस में, हर ईयर जो सिलेबस चेंज हो जाता है। हमारे टाइम पे तो ये होता था कि जैसे बुक्स होती थी हम हाँ। पास आउट होते तो पुरानी बुक से भी हम लोग पढ़ लेते थे।
0: अब तो ये है कि हम यूज ही नहीं कर सकते उस बुक को।
1: अब बुक्स का हर बार सिलेबस चेंज कर देते हैं हर बार, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे उस चीज को।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: तो ऐसा भी कुछ सरकार को होना चाहिए कि 5 साल तक के लिए अगर कोई सिलेबस वो लगा रहे हैं तो 5 साल तक उसे चेंज ना करें वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऐसा कुछ उनको एक
0: नहीं, ये जो पहले जैसे चलता था कि एक ही बुक अवेलेबल होती थी 10th तक, तो मतलब सेम होती थी सर।
1: बिल्कुल।
0: तो बुक्स आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे।
1: सीनियर से जैसे कोई सीनियर पास आउट होता था उनकी बुक से हम लोग भी पढ़ लेते थे, वही हमें भी उसी।
0: और कुछ समझ नहीं आता तो उनसे भी पूछ लेते थे।
1: बिल्कुल, गाइडेंस मिल जाती थी।
0: अब तो ये है कि हम बच्चे के अगर बुक पढ़ रहे हैं, अगर वो मुझसे कुछ पूछेगा तो पहले तो मैं उसके उस चीज को पढ़ूंगी,
1: हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है। तो एटलीस्ट प्रोविजन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि 5 साल तक कम से कम बुक्स में कोई सिलेबस ऐसा चेंज ना हो कि
0: बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज
1: हो और जो है नई बुक्स खरीदनी पड़ जाए।
0: लेकिन पढ़ाई के साथ साथ देखिए सर, अभी अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई ना करके अभी काम में लग जाते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं, तो क्या सर मुझे लगता है कानूनी अपराध है, तो इसके लिए ये क्या करना चाहिए?
1: देखिए कानूनी अपराध कहीं ना कहीं हम लोग अब खुद ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने देखा है कई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी फैमिलीज में बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, और खास तौर पे कुछ कम्युनिटीज में मैंने देखा है कि वो लोग एजुकेशन को सेकेंडरी रखते हैं, अर्निंग को प्राइमरी रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जन्म के साथ ही जैसे बच्चे ने होश संभाला, चलना फिरना शुरू करा, था किसी चीज की उसके अंदर स्किल्स आई तो उसे काम पे लगा देते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जैसे किसी उसे फैक्ट्री में लगा दिया या कोई ऐसा लेबर का काम उसको कराने लग गए, तो बच्चे का क्या होता है जब वो अर्निंग करने लग जाता है ना, तो उसके अंदर पढ़ने की इच्छा धीरे धीरे
0: खत्म हो जाती है।
1: वो सोचता है भी मेरा तो यही, उसको सिखाया यही जाता है कि यही लाइफ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: है ना, तो जब उसका बचपन ही आपने मार दिया उसको, तो वो बेचारा वो क्या करेगा वो बड़ा होके, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है, हम लोगों को पहले बच्चे को बचपन देना चाहिए, है ना।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: जब वो बचपन जिएगा सही से, उसकी शिक्षा अच्छी होगी, तो ऑब्वियस है वो आगे चलेगा,
0: आगे भी बढ़ेगा,
1: बिजनेसमैन भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, एडवोकेट भी बन सकता है, आईएएस पीसीएस भी बन सकता है।
0: सर तो आगे मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि ये बच्चों के साथ अगर जबरदस्ती करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन, कोई कानूनी नियम कुछ?
1: बिल्कुल, हेल्पलाइन भी है और हमारे कुछ एक लॉज भी ऐसे गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, अगर बच्चों के साथ कोई भी जबरदस्ती काम करवाता है या कोई भी ऐसी बात होती है, तो आप सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो नजदीकी आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सूचना दे सकते हैं। कई एक एनजीओ से आप उनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एनजीओ भी आज की डेट में कई एनजीओ जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है वो 1098 है। मैं अपने सभी कम्युनिटी रेडियो के श्रोताओं से बोलूंगा कि 1098 ये नंबर आपको इमरजेंसी में जरूर याद रखना है, अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी हैरेसमेंट होता है तो तुरंत इस नंबर पे आप कॉल मिलाएं। 1098
0: जी, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1098। और चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: तो श्रोताओं, म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से कनेक्ट हो गए आप सभी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चों के साथ अगर कोई भी ऐसी धोखाधड़ी होती है या फिर छोटे बच्चे हैं जिनको आप काम करवाते हैं और जो बच्चे काम करे पढ़ना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, किसका हेल्प ले सकते हैं? तो सर, हम आगे बढ़ते हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा आखिरकार क्यों जरूरी है।
5: देखिए, बच्चे समाज का भविष्य, अगर उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे।
1: बिल्कुल सर।
5: क्योंकि जो, जैसे आपने देखा होगा, एक पौधा होता है, उसको अगर सही से आप खाद पानी दोगे तभी वो अच्छा बड़े होकर एक वृक्ष बनता है और फल देता है। तो सेम हमारे बच्चों के साथ भी, अगर हमें एक समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक चाहिए, तो निश्चित तौर पे हमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना पड़ेगा, उन्हें अच्छा माहौल देना पड़ेगा।
1: और सर, हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि ये कहा जाता है कि माता पिता ही बच्चे के लिए पहले गुरु होते हैं, तो सर माता पिता की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए बच्चों के प्रति?
5: देखिए, माता पिता का विशेष रोल होता है बच्चे के जो है भरण पोषण पे। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो गुरु, पहले गुरु वही होते हैं, और बच्चे को प्यार, शिक्षा, अच्छा माहौल, सुरक्षा दें, उसका सही से विकास हो, तो यही सारी जिम्मेदारियां होती है। और खास तौर पे छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि माता पिता को हमेशा वॉच करना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे जा रहा है, किसके घर जा रहा है। कई बार हमने ऐसे केसेस भी हमारे पास में आए हैं कि जो बहुत ही नोन होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उन्होंने भी सेल्फ हैरेसमेंट बच्चों का किया होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
5: और बच्चों में मैं दोनों की बात करता हूँ, मेल और फीमेल दोनों की। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस नहीं आया, वो केसेस हमारे पास आते रहते हैं।
1: बिल्कुल।
5: तो बच्चों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, उनको खास तौर पे ट्रेनिंग देनी चाहिए, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है,
1: क्या होता है, करेक्ट
5: पता होना चाहिए उनको। और बच्चों को ये शिक्षा घर के साथ साथ स्कूल्स में भी, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जहाँ बच्चे प्ले स्कूल्स में जाते हैं, क्रीच में जाता है, तो वहाँ पे भी ये शिक्षा उनको जरूर दिलवानी चाहिए बच्चों को, कि उनको पता होना चाहिए कि किसकी इंटेंशन गलत है, कौन हमें कोई लालच दे के बुला रहा है, या जो है इंटेंशन उसकी, बच्चे, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं
1: होती। बच्चे ये कहते हैं भगवान के रूप,
5: भगवान का रूप होते हैं, कोमल होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है। तो हमें जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को स्कूल में दिलवानी चाहिए एडमिशन।
1: बिल्कुल सर। और सर, मुझे लगता है कि कई बार बच्चे जब अपनी बात रखते हैं ना, तो कभी कभी ना हम उनको दबा देते हैं, तो क्या बच्चों को अपनी राय रखने का अधिकार है?
5: बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर बच्चा कोई बात आपसे क्वेश्चन कर रहा है या किसी चीज को पूछ रहा है आपसे, या उसके मन में कोई जिज्ञासा है, अगर आप उसको डांट के डपट के उसे चुप करा दो,

0: हुए, तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे पड़ेगा, है ना। और जब व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है तो उसका बड़े होके बच्चे का जो एक समाज का जो हिस्सा बनता है बड़े होके, कहीं जॉब में जाता है, कहीं बिजनेस में जाता है, तो उसका व्यक्तित्व वो निखर नहीं पाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो निश्चित तौर पे ये है कि अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है या जिज्ञासा है उसके अंदर, तो आपको पोलाइट वे में उसकी बात को समझना चाहिए। हो सकता है वो इतनी लॉजिकल बात पूछ रहा हो कि आप उसको समझ पाए।
1: करेक्ट।
0: कई बार हमें बच्चों की बातें, बचपन की बात हम लोगों से मजाक में उड़ा
1: मजाक
0: देते हैं।
1: उड़ाते
0: लेकिन
1: हैं।
0: ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बात मजाक की नहीं, कुछ बात गंभीर भी हो सकती है। बच्चा करेक्ट, अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को सहजता से सुनते हुए उसको समझें और उसका निदान करें।
1: बिल्कुल जी, ये तो सर आपने बहुत सही बात कही कि बच्चों की बातें हर सिचुएशन में हमें सुननी चाहिए उनकी बातें, कि क्योंकि कुछ नहीं पता उसके साथ बाहर क्या हुआ है और वो घर पर आके बता रहे, तो कभी कभी ना डिले कर देते हम कि नहीं ऐसा नहीं हुआ।
0: हाँ। पता चला बच्चे के साथ कोई हैपनिंग हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत गलत हुआ है, और बच्चा घर पे डर के मारता नहीं पाता क्योंकि पेरेंट्स डांट डपट देते हैं।
1: ये
0: तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत कुंठा का भाव बच्चे के अंदर भर जाता है, और जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और कई केसेस में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के भी सुसाइड के केसेस आए काफी।
1: करेक्ट करेक्ट
0: है ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, तो आप को उससे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना है एकदम।
1: सर आपने डिप्रेशन की बात कही है, तो मैं एक बात और रखना चाहूंगी आपके साथ कि आजकल देखते हैं आप फोन हर माता पिता के पास है, हर बच्चे के पास है, जिसके वजह से माता पिता बच्चों को टाइम कम दे पाते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने तीनों।
1: तो सर मुझे लगता है कि इस पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे सभी पेरेंट्स को?
0: टाइम तो बिल्कुल जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए, मेरी राय यही है। लेकिन कोविड के बाद से जो चीजें अब चेंज हुई है, तो लोग ज्यादातर स्क्रीन टाइम, मेरा भी स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन हम लोग उसे प्रोफेशनल वे में यूज करते हैं। अगर हमें काम की चीज देखनी होती है तभी हम यूज करते हैं उसको। लेकिन टाइम जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, मोबाइल का कम यूज करें, टीवी देखें, उनको आदत डलवाइए, वो बुक्स पढ़ें, नॉवल पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो पॉजिटिविटी थोड़ी सी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। अब आज की डेट में सोशल मीडिया आप देखेंगे मोबाइल पे इतने वल्गर कंटेंट आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, करेक्ट।
0: कंट्रोवर्शियल चीजें आती हैं, तो बच्चा उसको देखता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जहन में चीजें बैठती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मोबाइल का यूज कम से कम करें, है ना, टीवी कम से कम देखें।
1: और मुझे लगता है कि इसका ध्यान पेरेंट्स ही देंगे तो बहुत
0: पेरेंट्स
1: अच्छा
0: को
1: रहेगा।
0: बिल्कुल डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और
1: कि बच्चा
0: छोटे बच्चों को तो खास तौर पे मोबाइल नहीं दें। बड़े बच्चों का तो चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनके ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए गैजेट्स का यूज भी है, मिसयूज भी है, दोनों ही चीजें हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो एक सर्टेन एज के बाद हमें जो है उन्हें यूज करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ऑनलाइन भी क्लासेस होते हैं।
1: अगर सर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरी भाभी क्या करती है, काम करती रहती है। वो छोटा है, अभी 2 साल का ही है, तो वो रोने लग जाता है तो घर पे कोई होता नहीं है संभालने के लिए, उनको फोन पकड़ा देती है। अब फोन पकड़ाने के चक्कर में उस बच्चे का आंख मतलब हमेशा रेड रहने लग गया।
0: हाँ, तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा है, इसी वजह से उसकी आईज पे इफेक्ट आया है।
1: वही ना, बच्चों की लत लग गई, अब वो हटना,
0: फोन एडिक्ट हो जाते हैं। तो वो एडिक्शन जो है वो बहुत बुरी चीज है, किसी भी चीज का हो जाए, तो उस चीजों को ध्यान चाहिए।
1: बिल्कुल सर। सर तो हम आगे बढ़ेंगे कि स्कूल में बच्चों के साथ अगर गलत व्यवहार होता है तो उस टाइम क्या डिसीजन लेना चाहिए एकदम?
0: देखिए स्कूल में बच्चों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है या कोई भी ऐसा हैरेसमेंट होता है, तो सबसे पहले तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत देनी चाहिए, जो संबंधित जो भी ऑफिसर या अधिकारी है उसको देनी चाहिए, और पेरेंट्स को तुरंत उस पर एक्शन लेके कार्य करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे के सेहत से या उसके मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ अगर हो रहा है, तो निश्चित तौर पे बच्चा कोई भी सेटबैक का कोई ऐसा कदम भी उठा सकता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सर। उनको जाति के ऊपर भी बोल देते हैं कि तुम्हारा जाति ये है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा रीना आपने। तो ये कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस खास तौर पे इसको मॉनिटर करना चाहिए, और ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेके उनको एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा वॉच भी करना चाहिए।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: टीचर्स अपने ऐसे रखें जो माहौल अच्छा बना के रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों में हमें ना ऐसी, क्योंकि जिस तरीके से आप बच्चों के साथ बातें करते हैं, बच्चे मुझे लगता है कि वही सीखते हैं उस टाइम, तो कहीं ना कहीं तो एक तो हम ही होते हैं कि बच्चों को भेदभाव सिखाते हैं कि ये जाति ये है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसी चीज को खत्म करना चाहिए।
0: बिल्कुल खत्म होना चाहिए,
1: तभी जाकर हम बच्चे भेदभाव जो हो रहे हैं उनके साथ स्कूल में वो नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल ठीक बात है। आप बचपन से ही बच्चों के बीच में जो आप माहौल क्रिएट करेंगे तो उसका ही प्रभाव आगे चल के आपको देखने को मिलता है।
1: सर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि शो में समाज बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है?
0: देखिए, समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। अगर कहीं भी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको लेके उसको शिकायत करनी चाहिए और बच्चे को सही मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि भाई मेरा बच्चा नहीं है तो मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। अगर कहीं भी आप किसी भी बच्चे के साथ अन्याय होता देखें तो आप तुरंत उसको हेल्प करें, लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, लोकल जो लेबर डिपार्टमेंट है वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, मैंने एक आपको अभी नंबर बताया था 1098 हेल्पलाइन नंबर, तुरंत आप मिलाएंगे तो वहां से आपको तो हेल्प मिलेगी और निश्चित तौर पे जो है आप किसी का भविष्य बचा सकते हैं।
1: करेक्ट करेक्ट, वो ये ना कि भेदभाव ना रखे, चाहे बच्चे कैसा भी हो, किसी का भी हो, बच्चे भगवान का ही रूप
0: होते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो आपको ये सोचना है कि भगवान का रूप है, हमें इसकी हेल्प करनी है।
1: करेक्ट करेक्ट। सो सर, हम यहाँ पे एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। श्रोताओ, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो आप हमारे साथ मैसेज कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534। जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: तो सर हम आगे बढ़ते अपने शो में, और मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज के टाइम अगर देखा जाए तो पेरेंट्स यानी कि बच्चों के पढ़ाई के ऊपर लेकर ना इतना हार्म हो कि उनको सुबह से लेकर शाम तक बुक पढ़ते रहो, मतलब खेलने की एक्टिविटी की बात आती है तो यही रहता है कि पहले अपना होमवर्क कम्प्लीट करो। तो लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है।
1: देखिए बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो लोड डाला जा रहा है आज की डेट में, जो ट्रेंड चल पड़ा है कि एक पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन लेवल, एक पैरामीटर उन्होंने बना लिया है कि वही पड़ोसी का बच्चा अगर टॉप कर रहा है तो हमारा बच्चा कम नहीं आना चाहिए, उसे ज्यादा मार्क्स लाना चाहिए।
0: हाँ हाँ।
1: तो ये ना कहीं बच्चों के बीच में कॉम्प्लेक्शन क्रिएट कर देगा, और जो है ये जो कॉम्प्लेक्शन है ना ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है।
0: करेक्ट।
1: तो आप उसको हर समय अगर एक प्रेशर करो कि भाई बुक्स लेके पढ़ाई करो और तुम जो

0: वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील आती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरी फील्ड में, तो आप उस फील्ड में वर्क करिए, उसको जानने की कोशिश करिए कि हो सकता है भाई हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता।
1: नहीं बन सकता, करेक्ट सर, मैं यही पूछने वाली थी आपसे।
0: हर बच्चा एडवोकेट भी नहीं बन सकता।
1: करेक्ट।
0: तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, आप उसको उस फील्ड में डालिए।
1: बिल्कुल।
0: आप एक एक्सपेक्टेशन, एक पैरामीटर जो आपके माइंड सेट में है, वो उसके ऊपर ना थोपिए, अपनी मर्जी ना थोपिए, तो उसको उसका डायरेक्शन खुद चूज करने दीजिए कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना है।
1: करेक्ट।
0: हाँ, उसको एक डायरेक्शन दीजिए जरूर, लेकिन उसको बाउंड मत करिए कि नहीं यही तेरे लिए सही डायरेक्शन है, वो उसको चूज करने दीजिए।
1: करेक्ट। और सही गलत का देखिए पेरेंट्स तो समझाते लेकिन हमें कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में भी उनकी राय भी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, पढ़ना ही है चाहे कैसे भी करो, और बाद में ये होता है कि बच्चे पूरी जिंदगी कोसते रह जाए कि मैं करना क्या चाह रहा था, कर क्या रहा हूँ, उसको वो अच्छे से नहीं कर पाते।
0: कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से बच्चों का हमने देखा है कि उनको जो है फील्ड उन्होंने करा बीटेक है और जॉब कर रहे हैं वो बैंक में मार्केटिंग की। बीटेक का आप रिलेशन आप सोचिए कि उसको मार्केटिंग की जॉब से आपने उसको कनेक्ट कर दिया। हो सकता है अगर आप उसे मार्केटिंग में एमबीए की होता तो हो सकता है वो उसको और अच्छा कैरियर में ग्रोथ मिलता।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप बच्चे को उसका इंटरेस्ट समझिए। कई कई एग्जांपल्स हैं, सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स आ रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि कम से कम बच्चे को फ्री छोड़े, उसको सही डायरेक्शन खुद चूज करने दो, उसके ऊपर कम से कम बाउंडेशन ना लगाएं। हाँ, उसको ध्यान जरूर रखिए, उसको डायरेक्शन जरूर दिखाएं आप।
1: करेक्ट।
0: लेकिन डायरेक्शन दिखाने के बावजूद उसका अगर इंटरेस्ट आपको लगता है दूसरी फील्ड में, तो आपको उसी फील्ड में उसको थोड़ा सा पुश अप करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर। सो हम आगे बढ़ते सर, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे कई बार ना सर बाहर जाते हैं या फिर घर किसी के घर भी जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी देखते हैं और उनको वो उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और कभी कभी वो घर पर भी बताते हैं तो पेरेंट्स भी नहीं बताते कि नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम नहीं बताएंगे, उस चीज को दबा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस चीज आगे बढ़ा रहे, उनको फोर्स कर रहे कि तुम जब बच्चों को डांट नहीं रहे हो तो इसका मतलब बच्चे आगे ही जाएगा, उसको यही लत लग जाएगी चाहिए तो अच्छी बात है, जब हमारे घर वाले ही कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ और ही होगा ये। तो सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, ये बहुत गलत हैबिट है। अगर आप बच्चे आपके बच्चे के अंदर ये आदत है कि वो किसी भी चीज को उठा लेता है, बिना पूछे आपसे ले लेता है ना, दुबका देता है कहीं, तो अभी तो देखिए बचपन में आपको लगेगा कि बच्चा है, बचपन की बातें हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के यही जो छोटी छोटी बातें होती हैं बड़ा रूप ले लेती हैं। हो सकता है कल को उसके अंदर ये जो हैबिट्स है इतनी ज्यादा पनप जाए कि कोई बड़ा क्राइम कर दे।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: और जब बड़ा क्राइम करेगा तो निश्चित तौर पे उसको कैरियर पे भी उसके टैग लगेगा और आपकी भी उसमें इंसल्ट होगी। तो मैं तो पेरेंट्स से यही कहूंगा कि अगर बच्चे के अंदर ऐसी कोई आदत है या कोई चीजों को छुपाने की आदत है, तो सबसे पहली चीज तो ये उससे फ्रेंडली अप्रोच रखिए बच्चे
1: Correct.
0: से। मैंने पहले भी अपने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि बच्चे से हमें फ्रेंडली अप्रोच रखनी है, उसको डांटे मारे नहीं, और काउंसलिंग सेशंस, एजुकेशन सेशंस उसके लिए अरेंज करें, उसको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। आप किसी दूसरे के घर पे अगर जा रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए।
1: करेक्ट।
0: तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों को आपको बचपन से ही उसको थोड़ा सा एक डिसिप्लिन, एक मैनर्स, उसको एटिकेट्स सिखाने पड़ेंगे। अगर उस चीज को आप बचपन में सोच के टाल देते हैं तो आगे चल के यही जो बचपन की बातें हैं बड़ी हो जाती हैं, और बड़ा जब कोई क्राइम होता है तो उसका कुछ आंसर नहीं होता,
1: उसका सॉल्यूशन फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है,
0: बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों को हमें अभी से ही ध्यान
1: रखना चाहिए। और सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, पहले के टाइम में क्या होता था ना कि बच्चे अगर टीचर उनको मार भी रहा है तो अच्छे चीज के लिए मारते थे, लेकिन उसके टाइम में अगर मार देते हैं बच्चों के ऊपर तो पेरेंट्स सर पर चढ़ जाते हैं कि मेरे बच्चों को हाथ कैसे लगा दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ, बच्चों के ही मतलब साथ दे रहे हैं कि गलत चीजों को साथ दे रहे हैं, तो क्या सर ये सही है?
0: देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: मैं इसमें ये नहीं कहता कि टीचर जो मारते थे वो ठीक करते थे, और ये भी नहीं बोलूंगा कि टीचर नहीं मारते तो ठीक करते।
1: हाँ, हाँ।
0: जब हम अपने टाइम की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन, अपनी प्राइमरी एजुकेशन ले रहे थे, हम स्कूलिंग करते, तो हमें टीचर्स डांटते भी थे, डपटते भी थे, पनिशमेंट भी देते थे, लेकिन उस पनिशमेंट का लेवल इतना नहीं होना चाहिए कि आपको कोई हर्ट हो।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: आपके मन पे आपके दिमाग में वो चीज इतनी बुरी तरह छप जाए कि आप उसको भूल ना पाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो पनिशमेंट भी थोड़ा जरूरी है, लेकिन उस लेवल तक कि बच्चे को एटलीस्ट लगना चाहिए हाँ भी ये गलत काम है, इसलिए मुझे

0: अचीवमेंट मिला है, मैं अच्छा करूंगा तो उसका आपको एप्रिसिएशन भी दीजिए बच्चे को,
1: बिल्कुल
0: अच्छा करे तो एप्रिसिएशन भी दीजिए उसको, तो उसको कम से कम बच्चे को फील नहीं होगा नहीं हर बार मुझे डांटा जाता है। और देखिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, कुछ केसेस ऐसे भी आए कि टीचर ने अगर किसी बच्चे को पनिशमेंट दिया या हार्ट किया तो उसमें बच्चे की जान तक पे बनाई है,
1: करेक्ट ये सर,
0: तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज हमारी बना रखी हैं कि आप बच्चे को हार्ट नहीं कर सकते। तो ये तो देखिए अपने बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है कि हमें बच्चे को कैसे समझाना चाहिए,
1: कैसे
0: टेक ओवर करना चाहिए उसको। और जो है हर चीज का सॉल्यूशन पनिशमेंट भी नहीं होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बेटर तो यही रहेगा कि उसको समझाएं, उसकी काउंसलिंग करें, एजुकेशन से समझाएं। और थोड़ी बहुत डांट डपट भी बच्चों के लिए मैं मानता हूँ ठीक भी होती है, लेकिन बस इतनी बाउंड्रीज में होनी चाहिए कि उसके मन, उसके मस्तिष्क पे उसका ज्यादा
1: कोई भी हार्म ना हो चीज, ताकि उस चीज को, उस चीज से वो निकल ही ना सके, आगे बढ़ ही ना सके,
0: उसको सोच के बैठ जाए
1: कि हाँ उसको आगे कहीं आगे भी बढ़ रहा है तो सोचेगा नहीं मेरे साथ तो ये हो चुका है तो मैं शायद ये चीज को, इस कदम को नहीं उठाऊंगा, क्या पता वो सर सही भी हो।
0: डेफिनेटली वो मैंने बताया ना आपको कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही एक इस चीज को हम कह सकते हैं, हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सर। तो श्रोताओं मिलते हैं आप सभी से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: नमस्ते आदाब। रेडियो एफएम मुरादाबाद से मैं हूं आपकी दोस्त छाया। वेलकम करती हूं आप सना है, जिससे कि लोगों को इस बीमारी की पहचान हो सके और समय रहते वो अपना इलाज करा सके। वैसे तो
1: मुरादाबाद में साई हॉस्पिटल में रहा हूं और अब मैं बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। मेरी रुचि अगर ऑपरेशन में देखा जाए, ब्रेन में देखा जाए, तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी या फिर स्पाइन सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी, एनोरिज्म सर्जरी इनमें है। और अमूमन देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर्स अब दिनों रात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
0: जी जी, तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर क्या है?
1: ट्यूमर, जब भी हम ट्यूमर की बात करते हैं, इसका मतलब है अनियंत्रित ग्रोथ होना, वही ट्यूमर होता है। ऐसे ही ब्रेन में है, जब ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो अनियंत्रित कंट्रोल्ड होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्योंकि ब्रेन हमारा स्कल में, मतलब हड्डी के अंदर बंद है, एक बंद डिब्बे में है, तो जब उसमें चीज बढ़ती है तो प्रेशर डालती है, जिसके वजह से हमारे कुछ कार्य कम होने शुरू हो जाते हैं हमारे, और हमारी याददाश्त कंट्रोल होना, सब चीजें बहुत कम हो जाती हैं। तो एक प्रेशर इफेक्ट होता है और ब्रेन का हर हिस्सा एक काम करता है अपना। अगर उसने उस काम को छोड़ दिया तो फिर हमें वो चीज सामने दिखाई देती है, जो उसे सिम्टम्स की तरह हमें सामने आता है। तो इसीलिए ब्रेन ट्यूमर अपरामयक बहुत घातक है, क्योंकि वो तेजी से बढ़ता है और हमें मानसिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाता है।
0: ओके, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर होने की कोई निर्धारित उम्र है या किसी भी उम्र में हो जाता है?
1: ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, ये किसी उम्र में हो जाता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक समय पाया जाता है। हर उम्र में इसके अलग अलग टाइप्स हैं जो चीज पाई जाती है। बच्चों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बड़ों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं।
0: अच्छा, सर इसका कोई विशेष कारण?
1: अमूमन तो इसको जीन्स में बदलाव या म्यूटेशन ही देखा गया है, मोस्ट कॉमन कारण वही है। लेकिन अब हम कुछ टाइम से देखते हैं कि रेडिएशंस, ये एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी मरीज के बहुत ज्यादा सीटी स्कैन हो, एक्सरेज हो, या वो रेडिएशंस के आसपास रहता हो, जैसे आजकल मोबाइल यूज करना, ये अपने आप में देखा गया है कि एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है ब्रेन ट्यूमर होने का। ये पाया गया है कि जहाँ टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल के, वहाँ के आसपास के लोगों में इसकी संख्या बड़ी है। कुछ सालों में इस चीज को पाया गया है। तो मुझे लगता है कि रेडिएशन से बच के रहना बहुत जरूरी है और व्यायाम करना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी रोकथाम कर सकें।
0: जी, तो आज जैसा कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, और इस पर हम आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ब्रेन ट्यूमर कितने प्रतिशत लोगों में पाई जाती है?
1: अगर हम पूरे विश्व की, वर्ल्ड की बात करें, तो अमूमन ये देखा गया है कि ये अमूमन 1 लाख में से 11 लोग जो हैं वो इस बीमारी से प्रभावित हैं, जो अपने में बहुत बड़ी संख्या है। और इंडिया में इसे पाया गया है कि करीब अमूमन 28,000 लोग इस बीमारी से हर वर्ष ग्रसित होते हैं और जिनमें 24,000 लोगों की डेथ होती है। ब्रेन ट्यूमर सबसे खतरनाक ट्यूमर में से है। आप समझते हैं कि पूरा हमारा शरीर जो है, वो हमारा हर चीज जो है हमारे ब्रेन से काम करती है। अगर वहीं का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, तेजी से ग्रो कर रहा है, तो खतरनाक है। इवन अब इसे कई जगह तो स्किन के ट्यूमर से भी ऊपर पाया गया है। इंडिया में सबसे कॉमन जो हम मानते हैं माउथ का कैंसर मानते हैं, अब उसके बाद इसका नंबर आना शुरू हो गया है।
0: तो संख्या बहुत बड़ी है जैसा कि आप बता रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके, बस ऐसी हमारी कोशिश है। पर आप लोगों की कोशिशें तो लगातार जारी हैं। अगला सवाल ये है कि महिला या पुरुष कौन सी कैटेगरी में ब्रेन ट्यूमर ज्यादातर शिकायतें पाई जाती हैं?
1: इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि ये चीज महिला में या पुरुष में ज्यादा पाई जाती है। अमूमन बर्तल, हाँ, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे मेनिन्जियोमास टाइप ट्यूमर है जो कि फीमेल्स में या महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, और ग्लायोमास हैं जो पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कह सकते कि ये ट्यूमर है ये महिलाओं में ज्यादा रहेगा या पुरुषों में ज्यादा रहेगा या बच्चों में ज्यादा रहेगा, ये अलग अलग है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज।
0: अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी कि ब्रेन ट्यूमर के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, तो कुछ नाम बता दीजिए।
1: जैसे मैंने बताया, मेनिन्जियोमास हैं, ग्लायोमास हैं, न्यूरोमास हैं, शोनोमास हैं, मेटास्टेसिस हैं, इस तरह से अत्यंत हेमेंजियोमास हैं, हेमेंजियोब्लास्टोमास हैं, रिनोफेरेंजियोमास हैं, इस तरह के कई ट्यूमर्स हैं। शायद इसका हमारे श्रोताओं को इतना ज्ञान की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज बढ़ती जा रही है और जिसका रोकथाम हो या जैसी पता चले उसका तुरंत इलाज हो।
0: जी, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही पता चले इसका तुरंत इलाज हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या है, लोग पहचाने कैसे?
1: देखिए इसके लक्षण बहुत आम लक्षणों में से है, आपको सर दर्द होता है, रोज होता है लोगों को सर दर्द, तो इसका एक बहुत बड़ा लक्षण सर दर्द है। उल्टी आना है, घबराहट होना है, चक्कर आना है, और याददाश्त कम होना है, हाथ पैरों का कम मूवमेंट होना है, कम दिखाई देना है, बोलने में दिक्कत आना है, मूड का टेढ़ा होना है। इस तरह के कई लक्षण हैं जो हम ब्रेन ट्यूमर्स में देखते हैं, और ये हमें कई और बीमारियों में दिखते हैं। ये एक डॉक्टर ही आपको, एक न्यूरोसर्जन ही आपको अच्छी तरह बता पाएगा कि ये चीज किस सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हैं, ये ब्रेन ट्यूमर कैटेगरी में बैठते हैं या नहीं बैठते। पर जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखाई दे, आपको मेनली उल्टियां, अगर सर में दर्द तो उल्टियां बहुत हो रही हैं, तो आप तुरंत किसी न्यूरोसर्जन को दिखाएं, क्योंकि एक चांस है कि ब्रेन ट्यूमर ना हो।
0: जी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और लक्षण तो आपने बताए, हम उम्मीद करते हैं श्रोताओं को समझ में आई होगी, और अगली बार से अगर ऐसे लक्षण उनको दिखाई देंगे तो जरूर वो जांच कराएंगे जाके हॉस्पिटल में। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जैसा कि बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
1: देखिए, ब्रेन ट्यूमर से बचना, क्योंकि ये मेनली जीन्स म्यूटेशन की वजह से ज्यादा होता है, तो इसलिए बचना तो मैं कहूंगा कि इतना नहीं है, क्योंकि ये तो जेनेटिक ही होना है चीज। लेकिन अभी भी मोबाइल का यूज कम करें, पहली चीज। रेडिएशन से दूर रहें, फिर अल्कोहल का या स्मोकिंग का सेवन कम करें, क्योंकि अगर कुछ होता भी है तो हमारी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो उसे फाइट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप रहती है। जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप कम हो जाती है तो ये सब चीजें, बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, और कोशिश करें कि मोबाइल का यूज कम करें और रेडिएशन से थोड़ा दूर रहें, सही नींद लें और व्यायाम करते रहें, वो बहुत जरूरी है इसके अंदर।
0: क्या बात है, तो उम्मीद है दोस्त इस चीज का पालन जरूर करेंगे जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। अगला सवाल ये बता दीजिए, इस बीमारी का उपचार क्या है?
1: देखिए, सबसे पहला तो हमें इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जो पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो न्यूरोसर्जन कर सकता है आपका, और उसके बाद सीटी स्कैन जो सबसे पहले डायग्नोसिस होती है, फिर एमआरआई जो हमें और अच्छी तरह बता पाती है, फिर एंजियोग्राफी है, पेट सीटी स्कैन है, कई तरह के और हमें जांचें हैं जो हम करके पता लगाएं कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कितना नुकसान पहुंचा रखा है, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब इनका पता चलेगा तभी इसका प्रॉब्लम इलाज कर पाएंगे। अब हम इलाज की बात करते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा इलाज, सबसे अच्छा इलाज तो सर्जरी ही है, पर अब कुछ नई पद्धति भी आई है। जैसे हम गामा नाइफ कर सकते हैं, मतलब हम रेडिएशन को, किरणों को एक तीव्र गति से एक पॉइंट पर भेजें, तो उस एरिया को वहाँ पे छोटा कह सकता है, जला जा सकता है, सो उससे हम रोकथाम कर सकते हैं। इसी में आगे डेवलप हुआ है साइबर नाइफ जो कर सकते हैं, जो कि ज्यादा एडवांस है गामा नाइफ से भी। नाइफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक से कट कर रहे हैं उसको, इसीलिए हम उसे नाइफ वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। और अगर हम ये करते हैं तो हम उस ट्यूमर की रोकथाम कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं उसकी। अब रोबोटिक सर्जरी का भी इसके अंदर धीरे धीरे रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
0: जी जी जी, तो बहुत सारे आपने उपचार बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं अभी, तो यही जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर को लेके वहाँ पे पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं?
1: वहाँ बहुत उत्तम फैसिलिटीज हैं, हम काफी ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट करते हैं, हमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक हॉस्पिटल में चाहिए होती हैं, एक एडवांस सेंटर में चाहिए होती हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, और पेशेंट्स के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं हमारे। और इस चीज है कि जो भी फैसिलिटीज आपको चाहिए वो सारी हैं, आईसीयूज, ओटी, ट्रेंड स्टाफ, सब कुछ वहाँ मौजूद है, सब इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, तो वहाँ आपको किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
0: सर, इस बीमारी को लेके एक छोटा सा मैसेज जो हमारे पब्लिक को देना चाहते हैं आप?
1: मैं अपनी जनता को कहना चाहूंगा कि जब भी उनको सर में दर्द हो, उल्टी लगे, या उनमें जरा भी घबराहट हो और उनको लगे कि कुछ अमूमन अलग चीज हो रही है, उनसे जो रूटीन करते हैं उससे कुछ अलग हो रहा है, हाथ पर काम कम कर रहे हैं या आंखों से दिखा कुछ काम हुआ है, तो तुरंत उसको कभी भी देर ना करें, उसे फर्स्ट वार्निंग साइन समझें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अमूमन कहते हैं कि एक सर में दर्द हुआ, हमने गोली खा ली, दर्द की गोली खा ली, दर्द निवारक दवा ले ली, दर्द ठीक हो गया, उल्टी गोली खा ली, ठीक हो गया वो चीज, पर अंदर अंदर वो पनप रहा होता है, और आप समझिए बहुत खतरनाक बीमारी है। जब 28,000 लोग साल के इससे ग्रसित होते हैं और 24,000 मर जाते हैं, तब समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है, और इसे जितनी जल्दी रोकेंगे उतनी जल्दी फायदा होगा मरीज को, सर्जन को भी ऑपरेशन करने में आसानी है और ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लेट करेंगे तो ऑपरेट के बाद ही ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है इसका, और ऐसी बीमारी और कई ट्यूमर्स तो जो बेनाइन होते हैं, अगर हमने निकाल दिया पूरा तो आपकी लाइफ नॉर्मल है, तो जितनी जल्दी उसे करेंगे उतना अच्छा है। तो मेरा मानना है कि जरा भी आपको सिम्टम लगे या एक साइन दिखे, आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, जिससे कि आपकी जिंदगी बचाई जा सके।
0: ये थे हमारे साथ बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनित अग्रवाल जी। बहुत ही कीमती वक्त निकाला इन्होंने हमारे पब्लिक को, ये एक छोटा मैसेज दिया जिससे लोग जागरूक हो सके और समय रहते अपना इलाज करा सके। एफएम मुरादाबाद की टीम आपका दिल से अभिवादन करती है कि आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के दिन आपने अपना इतना कीमती समय हमारे स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।

नमस्कार, मैं विपुल अग्रवाल हूँ मुरादाबाद से, और आज यहाँ मुझे FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर आने का मौका मिला। कुछ गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अपनी आवाज में आपको मुझे लगता है पसंद आएंगी। तो लीजिए सुनिए गजल जगजीत सिंह की विपुल अग्रवाल की आवाज में। हर

मिट्टी का सफर सदियों से वक्त के साथ है, मिट्टी का सफर

0: लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बेली पार्क क्षेत्र स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
3: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम, और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में बीसीसीआई की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
3: आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
2: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया है। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें इंडोर खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेडियम कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर कल प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा बचत की अपील के मद्देनजर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का परिचायक होगी, बल्कि आर्थिक अनुशासन और ऊर्जा बचत के दृष्टिगत समाज में

0: सकारात्मक संदेश भी देगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सपा नेता मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में आज रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
1: बहुत पुराना कॉलेज है, आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ। तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इस पे मेरा प्रयास रहेगा।
0: चित्रकूट नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि चित्रकूट में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे।
2: उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए आज चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: वट सावित्री का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग और पति के दीर्घ स्वस्थ जीवन के लिए वट सावित्री निर्जला व्रत रखा है। व्रती महिलाओं ने विधि विधान से सावित्री माता की पूजा के बाद बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर अटल सौभाग्य की कामना की। प्रयागराज में व्रती महिलाओं ने आज सुबह संगम में पवित्र स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मॉनसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। सिंचाई और जल संसाधन की ओर से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए यह कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इनके जरिए जलस्तर की रियल टाइम निगरानी और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ सुरक्षा समितियां तैयार की जा रही हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, ग्राम प्रधान और लेखपाल सहित स्थानीय लोगों को जोड़ा जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
5: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
7: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
5: अरे वाह।
7: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
5: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: और आम यात्रियों को भी सस्ती हवाई यात्रा का फायदा मिल सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज डिस्ट्रिक्ट पार्क पश्चिम विहार से जल संचय अभियान की शुरुआत की। ये कार्यक्रम दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य 30 अगस्त तक राजधानी में 101 महत्वपूर्ण जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: इस पहल के पहले चरण में लगभग 383 एकड़ के क्षेत्र में फैले 101 चिन्हित जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इनमें द्वारका जोन के 22, दक्षिण जोन के 13, रोहिणी जोन के 17 और नरेला जोन के 6 जल निकाय शामिल हैं। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने शहर में दीर्घकालिक जल सुरक्षा, भूजल पुनर्भरण और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये पहल केवल सौंदर्यीकरण का एक प्रयास मात्र नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक बहाली और सतत शहरी विकास की दिशा में केंद्रित प्रयास है। साथ ही उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय सीमाओं का कड़ाई से पालन करें और सभी जीर्णोद्धार स्थलों पर कार्य निष्पादन के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। श्री संधू ने लोगों से जन भागीदारी के माध्यम से इस अभियान में शामिल होने और अधिक हरित तथा जल सुरक्षा

0: चित विकसित दिल्ली के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली लगभग 500 मेधावी छात्राओं को साइकिलें वितरित की। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये बेटियां अपने परिवार पूरे राष्ट्र के सपनों और संकल्पों की वाहक है। उन्होंने कहा कि ये पहल छात्राओं को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी तथा अभिभावकों की चिंताओं को भी कम करेगी, जिससे उनकी बेटियां बिना किसी बाधा के अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी से ईंधन बचाने की अपील की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपील की है ईंधन की बचत करें। उसके बहुत सारे तरीके हैं। मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में जो आज इन बेटियों को साइकिल दी गई है, ये भी उस पूरे परिवार के काम आने वाला साधन है, जिससे ईंधन की बचत भी होगी और एक बहुत ही स्वायत्तता उस बेटी को मिलेगी जो अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी, वो अपनी साइकिल के साथ खुद आगे बढ़ेगी।
1: राजधानी के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। उत्तर रेलवे ने कहा कि इस आधुनिकीकरण के अंतर्गत नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आधारित सिग्नलिंग प्रणाली लागू की गई है। एक रिपोर्ट।
3: रेलवे ने बताया है कि इस स्वचालित प्रणाली से ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित, तेज और सुगम हो गई है, जिससे भविष्य में रूट की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इनमें आधुनिक सिग्नल तकनीक, स्वचालित असफल सुरक्षित सुविधाएं और AI आधारित उन्नत निगरानी व्यवस्था शामिल है, जो दुर्घटनाओं की आशंकाओं को कम करती है। ये पहल दिल्ली मंडल में सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यात्रियों और मालगाड़ियों दोनों के लिए सुरक्षित तथा अधिक कुशल ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने की भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज अपनी विधानसभा के सेक्टर 9 स्थित लेक व्यू अपार्टमेंट्स में RMC सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही विश्वा अपार्टमेंट और स्टार अपार्टमेंट में वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा श्री गुप्ता ने अपने आवास में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज नरेला भवाना मार्ग पर 9.5 किलोमीटर की सड़क पर 55 करोड़ की लागत से बनने वाले प्री कास्ट RCC नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये परियोजना आधुनिक प्री कास्ट तकनीक पर आधारित है, जिससे निर्माण कार्य तेजी से पूरा होगा और गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग मंत्री ने नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय विधायक मनोज शौकीन और क्षेत्रवासियों द्वारा बताई गई समस्याओं को श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक कार्य जल्द शुरू कर जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वस्तु और सेवा कर GST धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त आयुक्त रवि कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी फर्जी कंपनियां चलाकर GST रिटर्न, नकली बिलिंग और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 128 करोड़ रुपए के नकली GST लेनदेन किए गए। जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 51 लाख करोड़ रुपए नकद, 15 मोबाइल फोन, 2 कारें, फर्जी बिल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज NEET UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली का उपयोग किया है। नोटिस में CBSE ने कहा है कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वे दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज 11 कुलपतियों और लगभग 96 स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक संवाद कर मेरा भारत मेरा योगदान अभियान को लेकर चर्चा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य केवल नियुक्तियों पर चर्चा नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों और युवाओं को इस जन अभियान का सहभागी बनाना है, जिससे छोटे छोटे प्रयास भी देश हित में बड़े बदलाव का माध्यम बन सके। उन्होंने इस दौरान विद्यालयों के बुनियादी ढांचे, आधुनिक कक्षाएं, छात्र सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा और बेहतर शिक्षा के वातावरण को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी ने सभी विभागों को सरकारी वाहनों का सीमित उपयोग सुनिश्चित करने और ईंधन बचत उपायों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। ये निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान के बाद आया है। राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने अपने निजी काफिले से पायलट वाहन को हटा दिया है। लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से 9 वाहन और लोक निर्माण विभाग भवन और सड़क शाखा से 8 वाहन तत्काल वापस लेने के आदेश जारी किए गए। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है।
5: यह दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसमें रुके हुए पानी को हटाना और जल भंडारण टैंकों का उचित रखरखाव शामिल है। डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए मई के महीने को मॉनसून से पहले जागरूकता गतिविधियों का मुख्य महीना घोषित किया गया है। मंत्रालय जुलाई माह को डेंगू विरोधी माह के रूप में मनाता है, जिसके दौरान देशव्यापी स्तर पर निरंतर जागरूकता और रोकथाम अभियान चलाए जाते हैं। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर हमें इस बीमारी को हराने के अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करना होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि घर के आसपास पानी जमा न होने पाए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने नागरिकों को कहा कि डेंगू के लक्षणों, बचाव और समय पर उपचार के प्रति जागरूक बने और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी इसके प्रति सचेत करें। साथ ही अपने घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखें, कहीं भी पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाएं। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली सरकार कल घिटोनी गांव में नवनिर्मित तरला मोहल्ला चौपाल और बाल्मीकि बस्ती चौपाल का लोकार्पण करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि ये आयोजन गांव के विकास और जन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। दक्षिणी दिल्ली के नेहरू प्लेस डाकघर में सोमवार को 11 बजे से एक दिवसीय डाक चौपाल का आयोजन किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिदोड़ी ने कहा कि इस डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि अब डाकघर में पोस्टल बैंकिंग, बचत खाता और बीमा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अरुण जेटली स्टेडियम में कल आयोजित होने वाले आईपीएल क्रिकेट मैच के मद्देनजर सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ा दिया है, जिससे मैच के बाद वापसी में यात्रियों को सुगम यातायात मिल सके।
6: मेट्रो में सफर करने वाले यात्री डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर समय बदलाव की जानकारी ले सकते हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने भी यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि बहादुर शाह जफर मार्ग और जेएलएन मार्ग पर शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। इसके साथ ही दरियागंज से दिल्ली गेट चौक से गुरु नानक चौक और आईटीओ से दिल्ली गेट चौक पर किसी भी भारी तथा व्यावसायिक वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी। आदित्य की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेज दिया। राजधानी में आज दिन भर मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट दर को 25% से घटाकर 7% किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 101 जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए जल संचय अभियान की शुरुआत की। राजधानी के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। दिल्ली पुलिस ने जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और आईपीएल क्रिकेट मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने कल सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। हां जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोताओं? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो यूजर ID, पासवर्ड और OTP डाल दिया। सुनील: अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, ₹20,000 डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है? दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है, बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, OTP या पासवर्ड मांगना। याद रखिए, कोई भी बैंक या कंपनी OTP और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। OTP, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें। ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें। फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूंगा। दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं, तो देर ना, तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शिकायत, ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम: लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, OTP और पासवर्ड कभी ना बताएं, डराने वाले मैसेज से सावधान रहें, खुद बैंक से संपर्क करें, जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओं, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का, तो चेक करें खुद अपने आप। गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहाँ पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें, और हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया, एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।

0: कोमल है तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हेलो भाई, मेरा नाम आनंद है, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। और आज की जो स्टूडियो की वाइफ है ना, बहुत अलग है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टेशन में एक ऐसी महिला मौजूद है, एक ऐसी नारी शक्ति मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में है, जिनके बारे में मैं जितनी बातें बोलूंगा ना, शायद मेरा समय कम पड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहीं रहा है। जब एक महिला कुछ करने की ठान ले तो वो सब कुछ कर लेती है। और वैसे ही आज सेशन में, इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस इंटरव्यू में हमारे रेडियो का हिस्सा बनी है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी, जो हमारे शहर के अंदर ऑटो चलाती हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने बहुत बड़ी पुरुषों को ऑटो चलाते हुए देखा है ना, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हम ऑटो में अक्सर मेल्स को देखते हैं, लेकिन मैंने पहली फीमेल मुरादाबाद के अंदर देखी है। और आज वही फीमेल को हम स्टूडियो लेकर आए, उसी नारी शक्ति को। हेलो मैम, कैसे हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मैडम रामवती शर्मा।
0: रामवती शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जोरदार तालियां। रामवती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसी है पहले ये बताइए मैम?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा, आपने सोचा था कभी अच्छा कि आप ऐसी जगह आएंगी?
1: नहीं नहीं, वैसे आपसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
0: अरे थैंक यू सो मच आंटी। तो आंटी बोलूं या मैम बोलता हूँ मैं?
1: आप
0: तो आपको
1: जो चाहो वो बोल सकते।
0: अच्छा, क्या नाम बताया आपने?
1: रामवती
0: शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। रामवती जी, थोड़ा अपने हमारे जो सुनने वाले हैं, आप उनको थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए।
1: अरे मैं बहुत परेशान थी पहले, बहुत अपने मतलब शादी जब हुई थी तो मैं बहुत दुखी थी, मेरे बच्चे मतलब ये था भूखे मरने लगे।
0: ओहो, अच्छा, तो मतलब आपकी शादी यही हुई है मुरादाबाद?
1: नहीं नहीं, मेरी शादी बिलारी में हुई थी।
0: अच्छा, बिलारी। तो मुरादाबाद कैसे आना हुआ?
1: मुरादाबाद जब मेरे बच्चे मतलब हमारे मेरे हस्बैंड का काम नहीं चला, वो है साइकिल टायर पंचर थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो उनका काम नहीं चला तो देखो बच्चे हम बहुत परेशान रहने लगे थे। हाँ। तो मैं अपने एक जने मुझे लेके आई थी यहाँ पर। हाँ। काम पे लगवाने के लिए। हाँ। तो मैंने उनके साथ मतलब पहले फैक्ट्री में जॉब करी।
0: अच्छा,
1: पैकिंग हॉल में।
0: अच्छा,
1: उसके बाद करते करते मैं चेकर बनी।
0: अच्छा, अरे वाह। फिर
1: चेकर बनने के बाद फिर मैंने लड़के की शादी करी तो मेरी बहू खत्म होगी किसी मतलब दिक्कत में आके।
0: ओके ओके।
1: उसके बाद मेरा एक छोटा सा पोता, आपने देखा भी होगा
0: साथ। हाँ हाँ, मैंने देखा है आपके साथ।
1: तो मैंने उसकी वजह से ये रिक्शा लिया है।
0: अच्छा, तो उसकी वजह से रिक्शा चला रहे हैं?
1: उसे पाल रही हूँ। हाँ। और अपना पेट भी पाल रही हूँ।
0: अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आंटी आपके?
1: मेरे एक लड़की।

0: लड़का है,
1: एक लड़की और लड़की की शादी हो गई,
0: शादी दोनों बच्चों की हो गई।
1: अच्छा, दोनों बच्चों की हो गई, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो ऑटो चलाने का ख्याल कैसे आपके आया दिमाग में?
0: ऐसे आया जब फैक्ट्री में काम करने लगी तो मैंने सोचा फिर कहीं ऐसा ना हो कि पहले इतना मैं फिर मुसीबत उठाने लगूं।
1: हाँ।
0: तो मैं मेरे दिमाग में आया कि मैं ऑटो चला के देखती हूँ, तो मैंने एक पहले पुराना ऑटो लिया था।
1: अच्छा,
0: उससे मैं सीखी।
1: अरे वाह,
0: उससे सीखने के बाद
1: पहले ट्रेनिंग ली आपने? अच्छा,
0: सीखी अपना भी थी।
1: अच्छा,
0: किसी ने सिखाया नहीं।
1: अच्छा अच्छा,
0: उसके बाद मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा मैंने मेरे मन है ऑटो चलाने के लिए।
1: तो क्या कहा सर ने, मतलब परमिशन दी पति देव ने?
0: तो उन्होंने क्या बोले, ठीक है ले लो।
1: अच्छा,
0: फिर मैंने ऑटो ले लिया।
1: तो मतलब पति की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी?
0: नहीं।
1: परिवार की तरफ से कोई रोक टोक?
0: रोक टोक।
1: अच्छा अच्छा, तो मतलब पहले ट्रायल लिया, पहले ट्रेनिंग ली, उसके बाद जब आपको लगा मैं मजबूती के साथ चल सकती हूँ, चला सकती हूँ, तब आप सड़क पे उतरे। तो कितने समय से आप ऑटो चला रही
0: हैं? मुझे अब एक साल लगातार हो गया।
1: एक साल हो गया,
0: मार्च में हो गया।
1: अच्छा अच्छा, एक साल से आप ऑटो चला रही हैं मार्च में? अरे वाह बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइएगा मैम, जब आप ऑटो पहली बार सड़क पे लेके निकली थी तो आपको कैसा लगा? मतलब थोड़ा अजीब लगा,
0: अजीब सा लगा। हाँ, क्योंकि लोग ये देख लगता रहे हैं कि मैं चलाती रहूं।
1: अच्छा अच्छा, अभी ये लगता है कि चलाती रहूं।
0: हाँ।
1: ओके, तो मतलब जब आपके ऑटो में लोग बैठते हैं, लेडीज बैठती हैं, जेंट्स बैठते हैं, तो कुछ कभी कोई सवाल जवाब करते हैं कि आप कैसे क्यों चलाती हैं?
0: पूछते हैं।
1: हाँ।
0: पूछने वाले तो क्या बताया, किसी को क्या बताया,
1: क्या बताया,
0: बताई जाती है, कहते हैं हमारी मर्जी, हम चला रहे हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्हें आप सुन रहे हैं, ये मुरादाबाद की नहीं है रहने वाली, लेकिन अभी हम कह सकते हैं मुरादाबाद ही है ये। कितने समय से मुरादाबाद में आप रह रही
0: हैं? हमें 25 साल हो गए।
1: 25 साल से जो रह रही है तो वो मुरादाबाद ही होगी गाइस। तो मतलब आपका जो मतलब घर था वो चंदौसी, आपने बताया?
0: नहीं, बिलारी,
1: बिलारी, बिलारी, बिलारी से आप थी। तो मुरादाबाद आके फिर आपने शुरू किया अपना कारोबार और ये काम का सिलसिला?
0: पहले हम किराए पे रहे, फिर हमारा अपना हो गया।
1: अरे वाह क्या बात है,
0: अभी हमारा अपना ही है।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया। तो आंटी मुझे ये बताइएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई?
0: हाई स्कूल पास।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया, हाई स्कूल पास है। हाई स्कूल पास थी आप, उसके बाद आपने कंपनियों में काम किया नॉर्मली, जो आप बता रही पैकिंग वगैरह में, फिर आपने क्यों सोचा कि मुझे ऑटो ही चलाना चाहिए?
0: ये मैंने सोचा, फैक्ट्री लेके बच्चे उजा नहीं सकते।
1: हाँ।
0: बच्चा बिना माँ के रह नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब मैं उसे पालने वाली हूँ, मैं उसे रखने वाली हूँ, तो मैंने सोची तो फिर मैंने काम छोड़ दिया बच्चे के खातिर, उसके वजह अगर फिर मैंने सोचा मैंने फिर मुसीबत ना आ जाए मेरे बच्चों पे।
1: जी,
0: इसीलिए मैंने सोचा ऑटो भी चलता रहेगा और मेरा बच्चा भी पलता रहेगा,
1: और साथ ही साथ अपने मन की मालिक हो।
0: हाँ।
1: जब मर्जी ऑटो चलाओ, जब मर्जी अपना नहीं जाओ, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको जाना ही जाना है,
0: कोई जबरदस्ती नहीं
1: है, ना जबरदस्ती नहीं है। तो कौन कौन सी रोड से आप ऑटो लेके निकलती हैं?
0: वैसे मैं सब रोड चला लेती हूँ।
1: सब रोड पे चलाती?
0: गुलाब बाड़ी, अभी तो मैं गुलाब बाड़ी से आई।
1: अच्छा, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइएगा मैम, मतलब आपने जब ये ऑटो का सिलसिला शुरू किया, जब आपका पहला दिन था, तो घर पर जब आप पहली कमाई लेकर गई तो कैसा लगा? घर वालों को?
0: अच्छा,
1: घर वालों को दिखाया आपने?
0: सब, और क्या ना, अभी मैं अपने घर वालों के हाथ में देती हूँ।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया। तो मतलब पति देव क्या करते हैं वैसे?
0: वो टायर पंचर का काम करते हैं।
1: टायर पंचर का काम करते हैं, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक अलग ही खुशी होती है जब आप ये मेहनत से पैसे लेकर जाती हैं।
0: ये लगता है कि हाँ देख, पैसे, पहली बात तो पैसा देते हो आप लोग, दूसरी बात मैं आपकी सेवा भी करती हूँ।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बहुत सही कहा। सो दोस्तों, वो कहते हैं ना, जहाँ पर इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा होती है, जब आपके हौसले बुलंद होते हैं, तो आप वो सब कुछ कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। और कहते हैं ना, एक नारी जिसे हम शक्ति नारी बोलते हैं, वो सब कुछ कर सकती है। तभी तो कहा जाता है, कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और ऐसे ही आज नारी शक्ति, एक सशक्त नारी, आज के जमाने की नारी मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में इस वक्त, जिनको आप सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप वैसे कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में?
0: खदाना गांव में।
1: खदाना गांव में, तो ये मुरादाबाद में पड़ता है? अच्छा, अरे वाह। तो वहाँ से डेली आप सफर करते हैं, कितने बजे सुबह आपकी शुरुआत हो जाती है?
0: सुबह तो देखो, दो बच्चे हैं, दो लेडीज हैं मेरे पास, लगी बनी है वो तो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: तो मैं 7 बजे अपने घर से निकल कर जाती हूँ, खाना वाना बना के सारे काम घर के,
1: मतलब खुद करती है सारा काम।
0: हाँ जी। और
1: तो सुबह कितने बजे निकलती हैं आप?
0: सुबह मैं 7 बजे निकल,
1: 7 बजे निकल जाती हूँ। और शाम को कितने बजे घर लौटती
0: हैं? शाम को 6 बजे घर पहुँच जाती हूँ।
1: 6 बजे आप घर लौटती हैं। ओके, रामपति शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मुरादाबाद की सड़कों पर ऑटो चलाती है, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं, और ये काम बहुत आसान नहीं होता, स्पेशली एक महिला के लिए जब वो घर से बाहर निकलती है। लाइफ में बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, लाइफ इतनी आसान जितनी मुझे और आपको लगती है ना सामने वाले की, उतनी एक्चुअली होती नहीं है। परेशानियां सबकी जिंदगी में आती है रामपति जी, आपकी जिंदगी में थोड़ी मोड़ी परेशानियां आती होंगी,
0: तो
1: कैसे डील कर लेती हैं आप?
0: ये तो होता ही रहता है घर गृहस्थी,
1: मतलब एक तो आप इतनी प्यारी हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी सुंदर मुस्कान के साथ मैम बात कर रही हैं, इतनी पोलाइटनेस के साथ, मतलब कैसे आप इतना कर लेती हैं?
0: घर गृहस्थी में सब हो जाता है,
1: सब हो जाता है, मतलब आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही मुस्कुराते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको हमारे ऑफिस में आके अभी कैसा लगा?
0: बहुत अच्छा।
1: बातचीत करके कैसा लगा?
0: बहुत अच्छा लगा।
1: अच्छा, मतलब कुछ डर तो नहीं लगा?
0: नहीं, ऐसा लगा मैं अपने घर में बैठी हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बस हमें यही चाहिए। थैंक यू सो मच। ये रामवती शर्मा जी है जिनके बारे में हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं जो आपकी तरह काम करना चाहती, पेट पालना चाहती, अपने बच्चों को पालना चाहती है, क्योंकि एक सही काम करके अगर आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है मैम। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो आपकी आवाज सुन रही है, जो करना चाहती है लेकिन घर की तरफ से रोक दिया जाता है?
0: वो भी हिम्मत रखे।
1: हाँ।
0: हिम्मत नहीं हारना चाहिए किसी को भी, मैं हूँ चाहे कोई सी भी लेडीज हो
1: जी,
0: उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत हार जाता है तो इंसान समझ लो गया
1: गया। बिल्कुल, अगर आपके बिल्कुल
0: दिल बुलंद होना चाहिए, अपनी हिम्मत बुलंद होनी चाहिए।
1: क्या बात है, और आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर आप सही है तो सब सही है ना। देखिए बहुत अच्छी बात बोली रामवती शर्मा जी ने, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जज्बा है, कुछ करने की आप ताकत रखती हैं, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। बहुत अच्छी और मजबूती तरीके से जो है जवाब दे रही हैं। और मुझे बड़ी मजे की बात यह है कि देखिए हम बहुत लोगों से मिलते हैं लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से बातचीत पा रही हैं, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। और मैम बिल्कुल, मतलब जो है ना, एक होता है कि थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा अनकॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर रही हैं रामवती जी, मतलब बहुत ही बढ़िया। पहले कभी बोला है आपने ऐसे? तो इतनी मतलब ऐसे कैसे आप बोल पा रही हैं?
0: जैसा इंसान मिल जाता है ना, मुझे उसी में रमना पड़ जाता है।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। तो दोस्तों ये होता है एक असली कॉन्फिडेंस, एक असली जज्बा, और ऐसे जज्बों की कहानियां और ऐसे ही बुलंद कहानियां हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां आप सुनते हैं तमाम वो बातें जो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलती हैं। रामवती शर्मा जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम आपसे जानना चाहूंगा मैं थोड़ा सा आपके संघर्ष के बारे में, थोड़ा सा जैसे बहुत सारी महिलाएं जैसे मैंने कहा करना चाहती हैं पर वो नहीं कर पाती, उन्हें लगता है परिवार रोक रहा है, बच्चे रोक रहे हैं, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है, तो आपके साथ आपके बच्चे सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ की मम्मी क्यों चला रहे हो जब हम हैं? तो
0: किसी ने नहीं कहा, मैंने सबकी मर्जी से काम।
1: अच्छा, सबने आपको परमिशन दे दी? तो अभी मुरादाबाद सड़कों पे आप इकलौती महिला ऑटो चलाती हैं या और भी हैं?
0: मैंने तब तक कोई देखा नहीं है।
1: आप ही चलाती हैं ना? तो गाइज अगर आपको अगली बार कोई महिला दिखती है पीली कोठी की तरफ, कहाँ कहाँ से आप गुजरती हैं?
0: मैं सब तरफ दिख जाती हूँ।
1: सब तरफ जाती हैं? हाँ। तो अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो एक बार नाम पूछ लीजिएगा, कहीं आप वही रामवती तो नहीं जो रेडियो पे बात कर रही थी? तो आपको लोग पहचानेंगे तो आप भी पहचान जाइएगा, ठीक है मैम? हाँ। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहती है? बहुत लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं रेडियो पे, कोई मैसेज देना चाहे, कोई संदेश महिलाएं जो लेडीज?
0: मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं हिम्मत रखती हूँ वैसे सारी महिलाएं हिम्मत रखें। देखो घर परिवार चलाना है तो हिम्मत अपने अंदर रखनी चाहिए।
1: अब मैम आपकी कितनी उम्र होगी अभी?
0: मेरी 45।
1: देखिए 45 की उम्र में भी सड़कों पर ऑटो चलाती हैं, और जिसे कह सकते हैं कि अपना भरण पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो एक सही डायरेक्शन में काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है मैम, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमारी तमाम महिलाओं को एक इंस्पिरेशन दी है, जो यहाँ पर आपने बातें रखी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। आपको यहाँ आके अच्छा लगा?
0: बहुत अच्छा।
1: आगे भी आना चाहोगे?
0: बिल्कुल, जब आप बुलाओगे मैं पक्का हाजिर हो जाऊंगी।
1: चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइज आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानी के साथ, किसी और नई लेडीज के साथ, कुछ और नई संघर्ष की कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
7: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
8: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
7: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है, पहली रैपिड रेल यहीं चली है, पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है,
8: सबसे ज्यादा

0: एक्सप्रेसवे वाला राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: नमस्कार, मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ मुरादाबाद और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अखिल और मेरे साथ है प्राची। प्राची, कैसे हो आप?
3: मैं तो एकदम बढ़िया हूं और उम्मीद करती हूं कि हमारे लिसनर्स भी बढ़िया होंगे।
2: आज ये शो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर डायरेक्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है।
3: हाँ अखिल, जैसे कुछ लोग जिम ज्वाइन तो करते हैं पर सिर्फ सेल्फी के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं।
2: बिल्कुल सही बात। और कुछ लोग करियर चूज करते हैं सिर्फ चाचा जी के कहने पर अपने।
3: तो फिर आज का हमारा टॉपिक है करियर कंफ्यूजन से करियर क्लैरिटी तक।
2: मुरादाबाद के दोस्तों, याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं।
3: अखिल, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, तो आप ये कहना चाहेंगे?
2: मेरे हिसाब से सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ तीन चीजों को लिखो अपने पास, मुझे क्या करना पसंद है, दूसरा मैं किस चीज में अच्छा हूँ और तीसरा मार्केट में किस चीज की डिमांड है।
3: और अखिल, मुझे लगता है कि एक चीज और ऐड हो गई है आजकल की लाइफ में, करियर प्रेशर से ज्यादा डेंजरस आजकल कंपैरिजन प्रेशर बन गया है। लोगों बच्चों में कंपैरिजन और कि मम्मी पापा की कंपैरिजन रहती है, बच्चों को वो कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों से, तो इससे बच्चों के लिए जो पूरा एटमॉस्फेयर बन गया है बहुत ज्यादा मुश्किल बन गया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
2: बिल्कुल सही बात कही। मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, शर्मा जी का भाई हमारे पड़ोस में, वो IIT में है।
3: अच्छा।
2: पर जो एक और पड़ोसी है मिश्रा जी, उनका जो बेटा है उसका टैलेंट थोड़ा सा यूट्यूब में, मतलब वो इस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और कई चीजों पे, जैसे आजकल फूड ब्लॉगिंग है, कभी बिजनेस को लेके किसी कोई मोटिवेशनल ब्लॉगिंग है, तो वो इज लाइक अ गुड स्पीकर। वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे आके अपने आप को दिखाऊं, मगर क्या है, बगल में शर्मा जी का बेटा जो है वो IIT में लगा हुआ है, तो ये बात रहती है, सुबह सुबह यही चर्चा रहती है कि भाई मेरा बेटा तो IIT के उसमें है और तुम्हारा बेटा देखो ये फालतू की चीजें कर रहा है, तो यहाँ पे लोग कंपैरिजंस में आ जाते हैं।
3: हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और पेरेंट्स का तो ये फेवरेट डायलॉग बन चुका है कि पहले गवर्नमेंट जॉब ले लो फिर अपना पैशन फॉलो कर लेना, जैसे पैशन कोई वीकेंड पिकनिक हो।
2: बिल्कुल सही कह रही है प्राची जी। चलिए, हम तो इस बात पे बात करते ही रहेंगे, अभी सुनते हैं बढ़िया सा गाना।

0: चलिए मान लीजिए एक स्टूडेंट कॉल करता है, नाम है राहुल।
1: मैं बीकॉम कर रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा फ्यूचर क्या है।
0: राहुल पहले ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है।
1: मुझे पसंद है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया भी पसंद है। अच्छा राहुल, तो तुम डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करो।
0: आजकल ऑप्शन सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक लिमिटेड नहीं रह गया है।
1: डेटा एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, रेडियो जॉकी।
0: पर हाँ, अगर रेडियो जॉकी करना है तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा।
1: सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने अखिल। वो लिसनर्स, आप हमें बताइए कि आप किस करियर फील्ड को चूज करना चाहेंगे। आप हमसे बातें कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर 9837896896। तो सुनते रहिए हम अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज। हमारे इस कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है।
1: तो आज अखिल आप क्या लेकर आए हमारे लिसनर्स के लिए?
0: मुरादाबाद ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ टैलेंट सिर्फ ब्रास तक लिमिटेड नहीं है।
1: वैसे ये तो सही कहा, क्योंकि हमारे मुरादाबाद के लोग बहुत सारे फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं।
0: यहाँ के यूथ ना स्टार्टअप तो शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी, फूड आउटलेट्स भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चालू कर रहे हैं।
1: अगर आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं तो 2026 के लिए कुछ आइडियाज मैं आपको दे रही हूँ। होम बेकरी, डिजिटल सर्विस एजेंसी, ट्यूशन सेंटर, फूड कार्ट विद हाइजीन कॉन्सेप्ट।
0: लेकिन प्लीज हर गली में ना मोमोज मत खोल देना यार। जहाँ भी जाओ ना, जिस गली में जाओ, मैं अभी चला जाता हूँ बुद्धि विहार में, तो कहीं ना, मतलब वो जो अपना परशुराम चौक है और उससे थोड़ा आगे चलते हैं जब अपना हनुमान उसकी तरफ, जो हनुमान जी का पार्क है अपना, तो वहाँ पे भी भाई मोड़ पे भी वहाँ पे ही मोमोज वाला मिल जाता है। थोड़ा और आगे चला तो वहाँ पे भी एक शॉप पे मोमोज वाला है। तो प्लीज प्लीज प्लीज हर गली में हर जगह ना मोमोज नहीं होना चाहिए।
1: बस प्लीज आप ज्यादा मोमोज की बात मत करिए, बस मेरा बहुत मन कर रहा है मोमोज खाने का।
0: तभी ये इसलिए कह रहा था मैं हर जगह मोमोज नहीं होने चाहिए। कम्युनिटी को ना सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोकल से खरीदो और लोकल को बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है आजकल के समय।
1: तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि लोकल से मोमोज खरीदो और लोकल को बहुत बढ़ाओ। फिलहाल दोस्तों मैं मजाक कर रही हूँ। बस दोस्तों आपको ऐसे आइडियाज मिलते रहेंगे एफएम मुरादाबाद पर, और आप भी हमें भेज सकते हैं हमारी मैजिकल नंबर 9837896896 पर। और रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके अपने ही कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं और प्राची लेकर आए हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी।
1: तो चलिए शुरू करिए आप।
0: एक छोटे से गांव का लड़का 3 बार एग्जाम में फेल हुआ।
1: लोग हंसते थे, कहते थे तुमसे नहीं होगा,
0: लेकिन उसने हर फेलियर का फीडबैक बनाया और आज वो अपना बिजनेस चला रहा है।
1: दोस्तों, फेलियर का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग।
0: लाइफ में गिरना अलाउड है, मगर रुकना अलाउड नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा अखिल आपने। तो दोस्तों, लाइफ में आप रुकिए मत, चलते जाइए, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल को पा ही लेंगे।
0: मगर वहाँ रुक जाना जहाँ पे आगे गाड़ी रुकी हुई हो, क्योंकि MDA में ना इस समय अच्छा खासा जाम मिलता है PAC से लेके किले तक। तो बहुत आराम आराम से गाड़ी चलाना भाई साहब, सीट बेल्ट जरूर पहनना।
1: पर दोस्तों टेंशन मत लेना, ये जाम शाम छट ही जाएगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हो प्राची। प्राची को तो जैसी शाम होती है ना, या प्राची का जहाँ भी कोई गोलगप्पे वाला स्टॉल दिख जाता है, प्राची की तो गाड़ी अपना आप ही वहाँ रुक जाती है।
1: फिलहाल बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। और अगर आपके पास भी है कोई मोटिवेशनल कहानी, आपकी दोस्तों की, आपकी अपनी जिंदगी की कहानी, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर जो है 9837896896।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है, हो चुके हैं, यानी कि भाई 9:09, यानी कि ये लकी नंबर होता है हमारे लाइफ में। और आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप ट्रैफिक में कहीं भी हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896। आप अपना वॉइस मैसेज भी हमें भेज सकते हैं और आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपके दिल में भी है ख्याल, है कोई शायरी, तो आरजे रीना तक पहुंचाइए और अपने दिल की बातें, जिससे भी आप कहना चाहते हैं, आपके दिल की बातें ज़रूर पहुंचेगी, वो भी किसके थ्रू, यानी कि पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आरजे रीना आप सभी के साथ यानी कि एक घंटे के लिए कनेक्ट हुई हैं, तो आप फटाफट मैसेज करिए गाइज, आपके दिल में ख्याल क्या है और आज के डेज क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आज हम 5 बजे तो नहीं आ पाए थे ना सैटरडे है, सो अब हम बात करेंगे, ढेर सारी बातें करने वाले। फिलहाल एक आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, बेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अगला गाना है ना, सच में बहुत बहुत बहुत प्यारा है, सुकून भरा गाना है। सो इस गाने को एंजॉय करिए और हमें मैसेज करते रहिए। चलिए जी।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 9:19 हो चुके हैं और आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज शनि जयंती भी है। आई होप कि आज आप सभी मंदिर गए होंगे क्योंकि मंदिर की जो रौनक होती है ना, सच में बड़ा सुकून देती है। और वैसे ही हमारा कम्युनिटी रेडियो जो जिसे आप इतना प्यार देते हैं, भर भर के प्यार देते हैं, और भी ज़्यादा सुकून मिलता है जब आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। आप घर पर हो, किचन में हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं भी हैं आप और रेडियो को इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। और आज यानी कि मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, यानी कि जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ये दिन बहुत खास है और इस दिन को हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि प्रकाश सिर्फ एक उजाला नहीं होता, बल्कि विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। सूरज की रोशनी हमें उजाला मिलती है, सूरज की रोशनी से हमें उजाला मिलती है, बिजली की रोशनी से हमारा जीवन आसान बनता है, और लेजर तथा फाइबर टेक्नोलॉजी आज इंटरनेशनल और मेडिकल क्षेत्र तक चमत्कार फैला रही है। तो श्रोताओं, आज लाइट्स डे है, इंटरनेशनल प्रकाश दिवस, तो मुझे लगता है कि हमें किसी की जिंदगी में रोशनी फैलाने को वो प्रकाश नहीं बोलते हैं, बल्कि अंधविश्वास को हटाना, वो होता है प्रकाश। तो आइए आज के दिन हम ये संकल्प लेते हैं कि ज्ञान रोशनी फैलाइए, अंधविश्वास को, अज्ञानता के अंधेरे को दूर करिए। क्योंकि जब आप अंधविश्वास, अज्ञानता को दूर करते हैं, उनसे परे जाते हैं आप, तो आपकी जिंदगी बहुत सुकून भरी मिलती है, बहुत सुकून भरी होती है। एक तो आप अज्ञानता से दूर हैं और आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो आपको भी पता है कि कल को कुछ होता है तो आप बिल्कुल सुकून भरे रहेंगे, आपके तरफ कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई के मार्ग पर हैं। तो श्रोताओं, सुनते रहिए अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 आर्जेरीना के साथ, जहां रोशनी होती है वहां उम्मीद और तरक्की अपने आप आ जाती है। सो आज मेरा आप सभी से शाम के समय क्वेश्चन है कि आपके जिंदगी में कौन है जो सबसे ज्यादा प्रकाश फैलाता है? है आपके जिंदगी में कोई ऐसा? तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर आप हमें मैसेज करिए और बताइए कि आपके जिंदगी में कौन है ऐसा जो प्रकाश फैलाता है। और अगला गाना भी आप सभी को डेडिकेट है मेरी तरफ से। जो भी जहाँ भी आप रेडियो सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए गाना, बहुत प्यारा गाना, माइंड ब्लोइंग गाना है। सो इस गाने को एंजॉय करिए।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 9:25 हो चुके हैं श्रोताओं, और आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, यानी कि अपने बचपन की बात करूं, हम सभी के बचपन की बात करते हैं। खैर, आजकल के जो बच्चे हैं वो तो लाइट्स से देखते हैं, लाइट्स चली जाती है तो आ जाते हैं, लेकिन पहले के समय में क्या होता था ना, बचपन में जब घर की लाइट चली जाती थी तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता था, और फिर जैसे ही कोई मोमबत्ती या दिया जलाता था तो वही छोटी सी लैंप पूरे कमरे को रोशन कर देती थी। बस यही तो रोशनी की ताकत है, छोटी सी होते हुए भी अंधेरे को हरा देती है। वैसे ही हमारी जिंदगी है कि सोचिए, जब बचपन में लाइट चली जाती थी तो एक दिए की झोंक जो पूरे घर को रोशन करती है, वैसे ही हम होते हैं, और हमारे जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से पूरे घर में रोशनी फैलती है, वो है हमारे पिता। एक पिता की वजह से हर घर में रोशनी फैली होती है, हर माता पिता के कारण हमारे घर में, हमारी जिंदगी में रोशनी बनी होती है। सो आज मैंने आप सभी से यही क्वेश्चन पूछा है कि आपके जिंदगी में ऐसा कौन है जो रोशनी प्रकाश फैलाता है। तो चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, किनका हमारे पास क्या मैसेज आता है। अगर मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं

मेरे मम्मी पापा, क्योंकि जो बोल सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जो बच्चों के लिए कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता है। बिल्कुल जी सही कहा इन्होंने कि मेरे जिंदगी में, इनके जिंदगी में मम्मी पापा है। और सच में जो मम्मी पापा आपके लिए कर सकते हैं ना, कोई और दुनिया में नहीं कर सकता है। ये टीना फ्रॉम कुंदनपुर लाइन पर मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं। और सही कहा इन्होंने कि एक माँ बाप है जो हमारे जिंदगी में रोशनी बनते हैं, और उनके अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि निस्वार्थ प्यार करते हैं वो। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये मोंटी वर्मा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि मेरे जिंदगी में प्रकाश देने वाले मेरे माता पिता है। क्या बात है जी, वेल डन, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि माता पिता ही हैं हमारे जिंदगी में प्रकाश रोशनी फैलाने वाले। अगर आपके जिंदगी में भी है कोई तो आप मैसेज करिए, चाहे वॉइस मैसेज भेजिए हमें, नंबर है 9823789689 पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। फिलहाल अगला गाना भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। सो आप सभी के लिए आज की शाम, आप सभी के लिए ये गाना आप सभी को डेडिकेट है। आप सुने अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: असंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे सुनो वो पड़ोस का लड़का है ना उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूं तो 9:40 हो चुके हैं और आप सभी को पता है कि आज है डेंगू डे मनाया जाता है। डेंगू डे मनाने का ना बहुत प्यारा रीज़न है। रीज़न ये है कि देखिए बरसात के मौसम में गर्मी के मौसम में ना यानी कि मच्छर जो पनपने लगते हैं, आई नो कि मच्छर तो रात को मोस्टली काटते ही हैं, तो आप ये सोचते होंगे ना कि मच्छर तो जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो रात को ही काटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डेंगू के मच्छर होते हैं ना वो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी होती है, पावर होता है कि अगर वो आपको काट ले तो आप बीमार हो सकते हैं। और ये जब फीवर होता है ना, सच बताओ बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होता है ना कि समझो किसी ने ऐसा लगता है कि लठ से ना अच्छे से कूट रखा हो, यानी कि अच्छे से पिटाई कर रखी हो। तो जो डेंगू के काटने से जो बीमारियां फैलती हैं, सिम्टम्स आपको दिखने लग जाते हैं, बुखार आपको तेज़, यानी कि इसमें बुखार 101-2 से कम कभी होता ही नहीं है, और बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है, ऊपर से गले में खराश, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आपने लापरवाही बिल्कुल नहीं करती है। यानी कि ये जो डेज हैं वो अवेयरनेस फैलाने के लिए ही डेज मनाए जाते हैं ताकि हम इन चीज़ों का ख्याल रख सके। शाम का वक्त है, आपको भी पता है कि इस टाइम अगर आप बाहर चले जाए थोड़ा सा, अगर नाले वाले हो पास में तो वहां पर ना बहुत ज्यादा आपको मच्छर दिखेंगे, और छत पर चले जाए इस टाइम मच्छर आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे। और बाहर भी जा रहे हैं तो फुल स्लीव के कपड़े पहनिए, और अपने घर में अगर रात को सो रहे हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर करें ताकि आप मच्छर से बच सके। और जो ये बीमारी डेंगू का होता है ना, हम इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हमें हल्के में कोई भी बीमारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी हो हम यही सोचते हैं कि हाँ यार ठीक है ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इसको हल्के में नहीं लेना है, बल्कि डॉक्टर से सही जानकारी सही इलाज ही आपको बेहतर ठीक कर सकता है। और बस अर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट रहेंगे तो ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आज मेरा करक सवाल यही है कि आज आपको भी पता है कि इंटरनेशनल लाइट डे है, तो आपके ज़िंदगी में कौन है ऐसा जो आपके ज़िंदगी में प्रकाश फैलाता है। सो हमारे पास मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, ये हमारे साथ जो कनेक्ट होते हैं बहुत ही प्यारा नाम है खुशबू। इनका कहना है कि मेरे ज़िंदगी में ना शादी से पहले मेरे मम्मी पापा थे, और वो मतलब मेरे ख्याल बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन शादी के बाद जो मेरी ज़िंदगी में असली रोशनी असली प्रकाश जो फैलाते हैं वो है मेरे पति देव। सो मैं क्रेडिट अपने मम्मी पापा के बाद इन्हीं को देना चाहूँगी कि सच में मैम मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बहुत बोलते कि शादी के बाद ना ज़िंदगी थोड़ी डगमगा जाती है, लेकिन सच बताऊँ तो मेरी ज़िंदगी शादी के बाद ना और भी प्यारा हो गया है। ऐसा लगता है कि मुझे भगवान से मैं एक ही प्रार्थना करूँगी कि जब भी मैं भगवान मुझे लड़की बनाए तो मुझे मेरे पति ही मिले हर जन्म में मुझे। क्या बात है जी, सातों जन्म में मुझे ऐसा ही पति चाहिए। मैं इसलिए इनके बारे में ऐसा कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं। मतलब आज तक मेरी शादी को 5 हो जाएंगे, लेकिन मैंने आज तक इनसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन जो मैं सोचती हूँ ये ला देते हैं। समझ नहीं आता कि इनको पता कैसे चल जाता है। अरे मैम इसी को तो बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर, यानी कि जिस जैसे वो आपको उसी सिचुएशन में आपको समझे, बिना कहे आपको प्यार करे, और जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है। तो ऐसे प्यार मैं तो कहती हूँ आपके जो पति हैं ऐसे हर लड़की को

ऐसे ही रहे हमेशा हमेशा के लिए। और यूं ही हमारा कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो सुनते रहे, गुनगुनाते रहे जी। मुझे उम्मीद नहीं थी श्रोताओं कि इस टाइम भी मैसेज आ जाएंगे मेरे पास, लेकिन अभी भर भर के मैसेज आने लगे हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ रोहित जी कनेक्ट होते हैं एमडीए मुरादाबाद से, और इनका कहने कि मेरे मम्मी पापा हैं मैम जो मेरी ज़िंदगी में रोशनी फैलाते हैं, यानी कि बचपन से लेकर अब तक वो मेरी देखभाल करते हैं। और इनफैक्ट मैं भी उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो मेरे साथ रेडियो सुन रहे हैं और कि मैं कभी भी उनको ना कभी परेशान नहीं करूँगा, जो कि बचपन में मैंने की भी है तो अब मुझे उसका रिग्रेट भी है, बट आगे से मैं नहीं करूँगा ऐसे। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है रोहित जी कि आप ऐसा नहीं करेंगे। अगले मैसेज की बात करूँ तो ये अगले हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, नेहा जी कनेक्ट होती हैं और ये बुद्धि बिहार मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं, और इनका कहने कि मेरी क्रेडिट है, मतलब मेरे मम्मी पापा तो है फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन मेरी बहन भी है, मतलब कुछ भी मैं गलती करती हूँ वो हमेशा मुझे बचा लेती है। अरे अरे क्या बात है जी, बड़ी बहन होती ऐसी है जो कुछ भी गलती करो लेकिन वो आपको बचा ज़रूर लेती है। चलिए फिलहाल एक गाना है तो मुझे लगा कि शाम के टाइम एक गाना प्ले कर देना चाहिए आपके लिए, बहुत अच्छा गाना है, सो इस गाने को इन्जॉय करिए जी।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

क्या बात है जी, ओल्ड इज गोल्ड गाने सच में बहुत प्यारे होते हैं। आरजे रीना के साथ कनेक्ट है आप अपने शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, जाते रहे गुनगुनाते रहे जी। सो चलिए मैसेज शामिल करते हैं और यहाँ से लेते हैं जाने की इजाजत, क्योंकि हम आपको मिलने वाले सीधा मंडे को मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। मैसेज की बात करूँ तो हमारे साथ पुष्पा कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनके कहने कि मेरी ज़िंदगी में रोशनी फैलाने वाले सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी पापा हैं और उनको मैं ढेर बहुत प्यार करती हूँ। और मम्मी पापा तो करते ही हैं, बिल्कुल जी सही कहा आपने, निस्वार्थ प्यार बोलते हैं इसको। अगले मैसेज की बात करूँ तो दीपक जी कनेक्ट होते हैं लाइन पार से, और इनका कहना कि हम आपके पास ही है मैडम। मेरे पास तो सर अभी फ़िलहाल चेयर है और मैं स्टूडियो में अकेली हूँ, अब मेरे पास तो मुझे दिख ही नहीं रहे, आइए कभी स्टूडियो में। तो इनके कहने कि मेरी ज़िंदगी में जो रोशनी फैलाने वाले हैं वो मेरे मम्मी पापा हैं, बिल्कुल जी सही कहा। और अगले मैसेज की बात करें तो ये हमारे साथ यानी कि प्रदीप जी कनेक्ट होते हैं और ये क्रेडिट अपनी वाइफ को देते हैं, कहते हैं कि वो घर नहीं रहती है ना तो घर घर जैसा नहीं लगता है, और जब वो घर रहती है तो घर जन्नत जैसा लग जाता है। एक दिन के लिए भी अपने मायके जाती है ना, सच बताऊँ मैं, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, मैं भी दूसरे दिन पहुँच जाता हूँ उनको बुलाने के लिए, तो वो यही बोलती हैं कि ठीक है बाबा मैं जाऊँगी नहीं, मैं यहीं रहूँगी। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ पीहू कनेक्ट होती हैं मुरादाबाद से, और ये कहती है कि मैं 5 साल की हूँ। ओके, पीहू का कहना है कि मैं अपना क्रेडिट पापा को देती हूँ। ओह क्या बात है जी, पापा की परिया होती है ना बिटिया, इसीलिए ये पापा को क्रेडिट देती है। और इनका कहना है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। आय हाय क्या बात है जी, हाँ जी पापा दुनिया के बेस्ट पापा होते हैं। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास यानी कि मीना जी कनेक्ट होती हैं और ये क्रेडिट अपने पति को देती है। क्या बात है जी, और इनका कहना है कि मैम आज भी मैं नाइट आउट पर हूँ इनके साथ और आपका रेडियो सुन रही हूँ, मतलब इनफैक्ट यानी कि यहाँ दूर तक तो नहीं आ पा रही है इसकी आवाज़, मतलब मैं अभी बात करूँ तो मैं नैनीताल हूँ, अरे बाप रे नैनीताल है जी। और कह रही है कि मैंने ना ब्लूटूथ से यानी कि अपने फ़ोन में चला रखा है और कनेक्ट करके रेडियो में, और आपका रेडियो सुन रही हूँ, यानी कि कार में इन्होंने कनेक्ट कर रखा है। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है कि आप नैनीताल से भी हमारा रेडियो सुन रही हैं, और ये है दिल्ली की, क्या बात है जी। सो मैं घूम रही हूँ अभी भी और आपका शो सुन रही हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपके रेडियो पर यानी कि बातें तो अच्छी अच्छी होती है, साथ ही साथ जो गाने होते हैं ना लाजवाब गाना है, और इन्होंने एक गाना बताया है, सो उस गाने को मैं ज़रूर प्ले करूँगी। और ये गाना है लिखने वाले लिख डाले, आगे गाइज मुझे नहीं आता है लेकिन ये गाना वाकई में मुझे भी बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपने ये गाना मीना जी ने प्ले करवाया है, सो ये गाना इन्जॉय करिए। और इसी के साथ में लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर्स
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: वेलकम बैक टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आप है प्राची और अखिल के साथ, और दोस्तों आज हम खेलने जा रहे हैं रैपिड फायर। तो अखिल आप शुरू करिए।
1: अच्छा ये बताओ प्राची, सक्सेस या स्लीप?
0: सक्सेस, स्लीप बाद में।
1: चाय या कॉफी?
0: करियर टेंशन में थोड़ी बहुत चाय सही है।
1: अच्छा गवर्नमेंट जॉब या स्टार्टअप?
0: दोनों, बस मम्मी खुश रहनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही, चाहे कुछ भी कर लो बस मम्मी जरूर खुश रहनी चाहिए।
0: हाँ अगर मम्मी खुश है तो सब खुश है।
1: तो मम्मी को खुश करने के लिए चलिए कोई गाना बजाते हैं।

0: कैसा लगा मामा?
1: क्या
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
1: अरे सुना ही कहाँ दिया, ये नालायक विवेक बैटरी लाना ही भूल गया।
0: क्या यार विवेक?
2: अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो, आपको लाने को बोला था ना बैटरी।
0: कोई काम सब तो मैं ही करूंगा ना मामा, तू लाओ इधर। चलो मामा,

0: का डर।
1: तो दोस्तों ये जो गाना है ये सिर्फ आपकी मम्मी के लिए डेडिकेटेड है, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: तो श्रोताओं हम एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मुरादाबाद याद रखो, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते।
1: तो दोस्तों आज ही अपना गोल लिखिए और अब कल से एक्शन करना शुरू कर दीजिए।
2: अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो तो टेंशन मत लो, कंफ्यूजन को क्लियर करो और कुछ भी मन की बात हो ना हमें जरूर मैसेज करो।
1: तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर के साथ 9837896896। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को बताया कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नार्कोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ। राजेश कुमार, आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
1: क्या?
0: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है। आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
1: मैं क्या करूँ साहब?
0: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
1: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
0: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें। उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें। जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।
2: Le, le, le, le.

என்ன ஆயா இது?

0: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
1: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
0: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
1: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
1: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
0: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
1: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।

क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।